नमस्कार। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोतो, आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। हमारे स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:55 हो चुके हैं। अब कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारण आरंभ होते हैं। हमारे प्रसारण आपके लिए DRM के 909 किलोहर्ट्ज़, FM के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और

978 किलो हर्ट्ज मीडियम वेव 326.7 मीटर्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजे चाहते हैं अब समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे। समाचारों के बाद आप सुनेंगे भक्ति आराधना का टुकड़ा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन

0: हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। तीन दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबोला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his 2-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral

प्रोग्राम के सभी सुनने वालों को कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ की तरफ से इस प्रभात वेला पर मंगल कामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। मंगलवार का दिन परम पराक्रमी महावीर बजरंग बली को याद करें इस भक्ति रचना के माध्यम से।

कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात किसी भी जीवात्मा को मनुष्य शरीर मिलता है। कुछ मान्यताएं इस तरह की हैं जिनमें कहा गया है कि जो व्यक्ति आज मनुष्य है, अगले जन्म में फिर से वो मनुष्य बनेगा। कुछ ग्रंथों में कहा गया है, कुछ विद्वानों ने, जैसे तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बड़े ही भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। खैर, जो भी हो, कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ, एक मानव के रूप में इस धरती पर जब हमारा वजूद है, तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस शक्ति को, इस प्रकृति को, उस परमात्मा को सदैव याद रखें जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम इस धरती पर अपनी पहचान कायम कर सकें, कुछ अच्छे काम करके, अच्छे विचार लोगों तक पहुंचा करके। लेकिन मनुष्य अलग ही उधेड़बुन में लगा है। वो दाल दलिया कमाने के चक्कर में यह भूल जाता है कि उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। आजीविका अपनी जगह पर है, जीवन यापन अपनी जगह पर है, लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है, मकसद वही होना चाहिए, वह हमें ध्यान में रहना चाहिए, हमें उसे प्राप्त

दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय अपनी पूरी रफ्तार के साथ बीतता जा रहा है। यदि आप चाहें कि पीछे लौट कर कुछ पलों को वापस पा लें या बीते हुए समय में जाकर कुछ सुधार कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। हमारे पास वर्तमान है और इस वर्तमान के माध्यम से हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ये एक अवसर हमें कुदरत ने दिया है। जो बीत गया उस पर पश्चाताप करने के बजाय जो वर्तमान है उसमें अपनी भूलों को सुधार करते हुए सावधानी पूर्वक अपना कर्तव्य करें, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और ऐसा बने कि उसको लेकर के आपको पछताना न पड़े। क्योंकि भविष्य हमारे अपने हाथ में है, हम जैसा चाहें उसे वैसा बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारा वर्तमान है वो हमारे भूतकाल पर निर्भर करता है। यदि भूतकाल में हमने अच्छे काम किए होते, अपनी सोच को अच्छा रखा होता, तो हमारा वर्तमान निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन होता। और जैसा हम अब सोच रहे हैं, जिस तरह का वातावरण अपने इर्द गिर्द रखते हैं, उसी का परिणाम होगा जो हमारा भविष्य तय करेगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करें, क्योंकि उन्हीं संचित कर्मों का परिणाम आपको प्राप्त होगा। अन्यथा मन में यह पछतावा होता रहता है कि काश बीते समय में हमने ऐसा किया होता, या कभी मन में आता है कि काश यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ होता, काश इस व्यक्ति से मेरी मुलाकात पहले हुई होती, और ये बहुत सारे काश, ये इफ, ये बट, ये मनुष्य को परेशान करते हैं, उसे चैन से नहीं रहने देते। इनके बारे में ज्यादा न सोचें, वर्तमान हमारे पास है, इसको खुल कर जिए। समाज हित में काम करते हुए आनंद पूर्वक अपना व्यवहार रखें, खुद को प्रसन्न रखें, क्योंकि यदि आप खुद प्रसन्न होंगे तो आपके आसपास के लोग, आपके परिजन सब खुश होंगे। और यह खुशी ही जीवन का मूल मंत्र है। श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को, और कार्यक्रम का नाम है वंदना। भक्ति आराधना का यह प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 6:10 से 6:45 तक हमारे केंद्र से आप सुना करते हैं।

0: भक्ति आराधना का दैनिक कार्यक्रम वंदना आपने सुना आकाशवाणी के कॉर्न सिटी चैनल सूरतगढ़ से 988 किलोहर्ट्ज़ पर। ये समय है आध्यात्मिक दर्शन के दैनिक प्रोग्राम चिंतन का। आज के चिंतन का विषय है मन की प्रसन्नता। आलेख और वाचक स्वर यशपाल सिंह राठौड़ के हैं।
1: भगवान महावीर ने कहा है, अपने आप को सदा प्रसन्न रखो। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जहाँ कार्य क्षमता बढ़ती है, वहीं उसकी आयु

में भी वृद्धि होती है और बुद्धि विकसित होती है। प्रसन्नता का अर्थ मात्र सुख, हर्ष या खुशी नहीं है, वह सब पदार्थ सापेक्ष है। पदार्थ से जुड़े सुख, हर्ष आदि के साथ दुख और विषाद भी निश्चित होते हैं। प्रसन्नता वस्तु निरपेक्ष होती है, वह चित्त की पवित्रता या स्वच्छता का पर्याय है और उसका उदय होता है राग द्वेष मुक्त चेतना में। राग द्वेष और मोह चेतना जितनी क्षीण या मंद होती है, उतनी ही प्रखर होती है प्रसन्नता की अनुभूति। मानव मन की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रफुल्लता या उदासीनता। ये उदासीनता मध्यस्थता या समता से भिन्न है, यह है निराशा की संतति है। खिले हुए और मुरझाए हुए फूल में जितना अंतर होता है, उतना ही अंतर होता है प्रफुल्लता और उदासीनता में। प्रसन्नता चित्त का विस्तार है और उदासी चित्त की सिकुड़न। अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा है कि प्रसन्नतादायक परिस्थितियां हों, सुखद, अनुकूल और सफलता भरे अवसर हों, तभी प्रसन्न हम रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। पर यह पूरा सत्य नहीं है। यदि चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो अनेक समस्याओं से हम मुक्त रह सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, विवेकशील व्यक्ति सदा प्रसन्न ही रहते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की स्थिति से वे बहुत ऊपर रहते हैं। सही माने में इंसान वो है जो हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहे, हंसमुख रहे, प्रसन्न रहे। बहुत से लोग बस दुखों के गीत गाते हैं, कोई भी पर्व हो खुशियों का वो दुख ही मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। मनोविज्ञान का निष्कर्ष है, जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त और नम्र होते हैं, उनके हर काम में सफलता मिलती है। जिस तरह सागर की सतह पर उठने वाला हर बुलबुला उछलता हुआ दूर तक चला जाता है, वैसे ही मुस्कान का प्रभाव भी दूर तक चला जाता है। मुस्कुराहट मन आंगन, घर आंगन को प्रसन्नता से भर देती है, मित्रता के संसार को समृद्ध करती है। भौतिक प्रतिस्पर्धाओं के इस युग में जिंदगी के तनावों, दबावों को कम करने और आनंदित जीवन जीने का मंत्र है प्रसन्नता।

आध्यात्मिक दर्शन का दैनिक कार्यक्रम सुना आपने। चिंतन मन की प्रसन्नता विषय पर आधारित आज का आलेख और वाचक स्वर थे यशपाल सिंह राठौड़ के। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। ये समय है कि हम आपको जानकारी दे दें आज के प्रसारित किए जाने वाले बाकी कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों पश्चात संस्कृत, फिर हिंदी और तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन के बाद में 7:10 पर खेती रवास्ते कार्यक्रम होगा। मानस गाना आप सुना करते हैं प्रत्येक सुबह 7:20 पर। लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात होगा सुबह 7:30। प्रातः 8 बजे हिंदी में समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज 8:15 और उर्दू में खबरनामा सुबह 8:30 दिल्ली से लेके जाएंगे। सुगम संगीत होगा 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रातः 9 बजे जयपुर से अनुप्रसारित किए जाएंगे। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल सुबह 9:10

0: पर हम आपको सुनवाएंगे। कलाकार होंगी सुलोचना खमेर। फिल्मी गाने सुबह 9:30 बजे से लगातार दिन में साढ़े 12 बजे तक आप सुन पाएंगे। इस दौरान 9:30 बजे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गा मेरे मन गा दिन में 10 बजे, फिल्म संगीत 11 बजे और 12:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही शीर्षक से आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत होगा 12:30 पर, खेत खलिहान होगा दिन में 12:50 पर। दिन में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से रिले किए जाएंगे। घरांगन कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा आशा सहयोगिनी के कार्य, सब्जी अरबी के व्यंजन, पेट की तकलीफों के लिए योगासन, मिट्टी के बर्तन का उपयोग और इसी तरह के अन्य समसामयिक विषय कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। महिलाओं के मनोरंजन हेतु गीत संगीत भी इस कार्यक्रम में रहता है। दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज, दोपहर समाचार 2:15 पर दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दोपहर बाद 3 बजे से हमारी उर्दू सर्विस के प्रसारण दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। युवाणी कार्यक्रम में आज का इतिहास आप सुना ही करते हैं। इसके अलावा अंकिता सिहाग जानकारी देंगी आकाशवाणी का बदलता स्वरूप विषय पर। प्रसारण समय होगा 5:00। सराय की जुबान पर आधारित जोक माहिती हम आपको सुनवाएंगे 6:05 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:30 और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से लेके जाएंगे। चौपाल कार्यक्रम होगा 7:00। बाजार भाव व मौसम की जानकारी उपलब्ध होने पर दिए जाते हैं, साथ ही ग्रामीण श्रोताओं के लिए गीत और भजन भी इस कार्यक्रम में सुनवाए जाते हैं। फिल्मों से कुछ भक्ति गीत आप सुनिएगा 7:45 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक ही फिल्म से होगा 8:00। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स के समाचार 8:45 पर और न्यूज़ 8:09 रात्रि 9 बजे दिल्ली से लिए जाएंगे। राजस्थानी लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो गोरबंत रात्रि 9:15 पर आप सुन पाएंगे। ये आधारित होगा आपके अपनी टेलीफोन कॉल्स पर। गीत गंगा रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे। 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के पश्चात इस केंद्र के प्रसारण संपन्न होते हैं रात 11:10 पर। कार्यक्रम विवरण और स्थानीय सूचनाएं सुनने के लिए आप हमें ट्यून कर सकते हैं प्रत्येक सुबह 6:50 पर और प्रत्येक संध्या 6 बजे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है 918 kHz पर। 6:55 होने को है। अब समाचार दिल्ली से लिखे जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र 11 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग

0: आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

किसान भाइयों, मिनखा और पशुओं में जियां भोजन की आवश्यकता पड़े, बियाई पौधा ने भी विकास करने वास्ते खुराक की आवश्यकता पड़े। आप बात करा फसलों ने संतुलित भोजन किया उपलब्ध करावा। किसान भाइयों, बुंटो हवा पानी और धूप से भी आपको की भोजन तैयार कर लेवे, परंतु पौधों स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार देवे इन वास्ते आपने भी अलग शुमी के भोजन के और पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करा बा सारे पोषक तत्वों की जिका एक पौधे के जीवन चक्र ने पूरा करें। जीवन चक्र पूरा करने वास्ते कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, तांबा, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन कई पोषक तत्वों की जरूरत होवे। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो बिंगमा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पौधे ने किया पोषित करे बी वास्ते बतावा भी पौधा में जिको हरो रंग आवे वो नाइट्रोजन।

और पौधों तेजियों बढ़वार करें। इंगमा भी नाइट्रोजन को संयोग हो है। बुनटे में प्रोटीन विटामिन और कोशिका में रस बनाने वास्ते भी मदद करें। अब आपा किसान भाइयों नाइट्रोजन की कमी है इंगो पतो किया कर सका तो बी वास्ते आपा देखांगा कि पौधांगो जिको पत्तियां हैं बांगो रंग पीलो पड़ जाए पत्तियां छोटी रह जावे पौधा में बढ़वार को नहीं करें। नाइट्रोजन की कमी दूर करने वास्ते यूरिया बिजाई के समय देनी हुए बिंगे बाद पौधे की बढ़वार वास्ते एक दो बार और छिड़काव हुए। दूसरे पोषक तत्व की बात करा जी को जरूरी है बी वास्ते फास्फोरस जी हाँ फास्फोरस जड़ा ने मजबूत बनावे तने ने मजबूत बनावे फूल जल्दी निकाले फसल ने जल्दी पकावे बुनटे के माँ प्रोटीन और वसा बनावे। कमी को पतो किया चल है जी हाँ फसल है बिंगी पत्तियां जी की है वह छोटी रह जाएगी और पत्तियां के आसे पासे बैंगनी लाल रंगा धब्बा बन जावे बी आपा ने ठा पड़ जाएगो भी फास्फोरस की कमी है। कमी दूर करने वास्ते आपा ने फास्फोरस युक्त खाद जिया डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट को प्रयोग मिट्टी की जांच करा के करांगा। फसल बढ़वार के समय फास्फोरस काम को नहीं देवे इन वास्ते जिके समय आपा फसल की बिजाई करा बी समय ही फास्फोरस को उपयोग कर सका। अब बात करा आपा पोटास की। पोटास जी की है बा पत्तियां गे माँ जी को भोजन बने बिने पौधे के हर अंग तई जिया जड़ में तने में लिजाण वास्ते सहायक हुए। फसला में रोग ना लगे जिया पालो सुखो खराब ना करे बीहू भी आ रक्षा करे। तने ने मजबूत बनाने के सागे ही जिकी फसल है बिंगी गुणवत्ता ने कायम रखे। पोटैश की कमी को पतो आपा ने चल है पौधो कमजोर हो सी क्योंकि बिंगे माँ पानी की मात्रा कम हो है तनो कमजोर हो जाए और जिये तेज हवा चल है तो पौधो नीचे भी गिर जाए। पोटैश की कमी से फसल की गुणवत्ता को नहीं रवे। पोटास की कमी पूर्ति करण वास्ते आपा ने पोटास युक्त खाद जिया म्यूरेटो पोटास को प्रयोग मिट्टी जांच के बाद आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इनके अलावा भी छोटा छोटा कई पोषक तत्व है जका ने आपा फसल में देने की आवश्यकता हुआ है। बिंगमा जिया जस्तो है जिंक सल्फेट लो है फेरस सल्फेट मैग्नीज है मैग्नीज सल्फेट बोरोन वास्ते बोरेक्स तांबे वास्ते कॉपर सल्फेट। किसान भाइयों ध्यान में रखने की बात आ है कि जड़ों को विकास अधिक फुटाव वास्ते फास्फोरस और पोटास बुआई के टाइम पर ही देना आपा और नाइट्रोजन को की भाग बुआई के समय और बिंगे बाद जरूरत के हिसाब में दो या तीन बार आपा ने छिड़काव करना होसी। किसान भाइयों आपा पोषक तत्वों की बात करी तो आ पोषक तत्वों का उपयोग आपा सर्वप्रथम मिट्टी जांच करवा के ही करांगा बी आपा ने ठा पड़ जी सी भाई किसे पोषक तत्व की इंगमा कमी है। तो अब मैं चालू राम राम सा।

आपने भंवरलाल सोलंकी से राजस्थानी लोकगीत सुना? कुछ और लोक भजन, लोकगीत मरुमंगल कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:10 पर। समय मिला ले 7:20 और 30 सेकेंड्स। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस पर आधारित दैनिक कार्यक्रम मानस गान सुने। आज प्रस्तुत है भाग 276। इन दिनों आप सुन रहे हैं किष्किंधा कांड का सस्वर पाठ, और आज का पाठ अनूप जलोटा की आवाज में है।

सागर तट पर श्रीराम की सेना डेरा डाले हुए है। रीछराज जांबवान वानर सेना को उपदेश कथाएं सुना रहे हैं। समीप ही पर्वत कंदरा में भूखे बैठे जटायु के भाई वृद्ध संपाति हर्षित होते हैं

कि आज घर बैठे विधाता ने उनके लिए आहार भेज दिया। कंदरा से बाहर संपाति को देख वानर भयभीत होते हैं, किंतु अंगद को जटायु का स्मरण हो आता है जिन्होंने प्रभु सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपने छोटे भाई जटायु के प्राण विसर्जन की बात सुनकर संपाति को वास्तविकता का ज्ञान होता है। वे सागर तट पर भाई को तिलांजलि देकर युवावस्था की अपनी और जटायु की उस उड़ान की कथा सुनाते हैं जब दोनों भाई सूर्य के निकट पहुंच गए थे। जटायु तो थककर लौट आए थे, किंतु युवावस्था के उत्साह में स्वयं उन्होंने अपने पंख जला लिए थे। उनका उपचार करने वाले दयालु सन्यासी चंद्रमा ने उन्हें तब आश्वस्त किया था कि त्रेता युग में स्वयं परम ब्रह्म के दूतों से मिलकर तू पवित्र हो जाएगा। आज वही अवसर आ गया था। संपाति ने अपनी गीत की दूरदृष्टि का लाभ उठाया और उस स्थान का पता बताया जहां रावण ने सीता को छिपा रखा था।

रामचरितमानस पर आधारित दैनिक कार्यक्रम मानस गाना आपने सुना। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। प्रस्तुत है लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात।

ये गीत आप सबने सुना होगा। पार्श्वों में हम इसे चला देते हैं, आप सुने, आनंद लें इस गाने का। कितना मधुर ये गीत, वहां से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है, इस दौरान हम सोचते हैं बैठ करके कि हमने क्या किया, उपलब्धि के नाम पर हमारे पास क्या है, हमारे पास बैलेंस के नाम पर क्या है। तब हमें महसूस होता है कि हम खाली हाथ हैं, शून्य हैं। जो घमंड, जो दंभ, जो अहंकार आज से 10-5 साल 20 साल पहले हमारे अंदर मौजूद था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों ने उस स्थान को हथिया लिया है। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी समय के परिवर्तन के साथ आगे चलता रहता है। खैर, समय है, समय रहते चेत जाएं। धन्यवाद करें प्रकृति का, उस ईश्वर का, कि उन्होंने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया। और यह ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। कुछ इन्हीं भावों का एक गाना यशुदास ने गाया था सावन को आने दो फिल्म के लिए, आइए उसे सुनें।

दोस्तों, जब ये गीत अभी रेडियो पर प्रसारित हो रहा था, बज रहा था, हम सब इसे सुन रहे थे, तो यूं ही बैठे बैठे मन में एक बात आई कि हम अपने आप को किस तरह से श्रेष्ठ बना सकते हैं। उसके साथ ही एक विचार कौन था कि यदि हम अपने जीवन में अनुशासन को महत्व दें, डिसिप्लिन रहे, तो जीवन बहुत आसानी से सुंदर बन सकता है। अब बात आती है कि अनुशासित कैसे रहें, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो विहित नियम हैं, कायदे कानून हैं, जो प्रक्रिया है, उसे अपने जीवन में अपनाते जाएं, उसी के अनुसार ढलते जाएं, तो जीवन अनुशासित बन जाता है। जैसे एक सामान्य एटिकेट है कि कहीं किसी सभा में हम बैठे हैं, कहीं चार लोगों की बातचीत चल रही है, तो हमें मौन रहते हुए वहां पर उन बातों को सुनना चाहिए। यदा कदा लोग किसी सत्संग में, कीर्तन में, कथा भागवत में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, तो इस दौरान अपने फ़ोन पर बात करते रहते हैं या अपने अगल बगल में बैठे किसी व्यक्ति से बात करते रहते हैं, यह शोभाजनक नहीं होता। दूसरी बात यह कि जो वक्ता अपनी बात कह रहा है, उस बात को भी आप आत्मसात नहीं कर पाते। सुनने की प्रक्रिया हमेशा ध्यानपूर्वक होनी चाहिए, देखने की प्रक्रिया हमेशा ध्यानपूर्वक होनी चाहिए। अगर इन दोनों पर आपने ध्यान साध लिया, तो जो आप बोल रहे हैं वह भी बिल्कुल सधा हुआ होगा, क्योंकि सीखने के लिए दृश्य और श्रव्य, ये दोनों माध्यम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो हम देखते हैं, जो हम बार बार उच्चारित करते हैं, उसी के माध्यम से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। अनुशासित होना है तो हमें जो एथिक्स हैं, जो नियम हैं, उन्हें पालन करना होगा। समय सारणी बनाएं, उसके अनुरूप अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित करें, एक निश्चित समय पर सोकर के जागें, फिर अपना दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके नाश्ता करें, अपनी दैनिक गतिविधियां, अपना कारोबार, व्यापार, व्यवसाय, जो भी प्रोफेशन आप करते हैं, उसे शुरू करें, निश्चित समय पर अपना मध्यान्ह भोजन करें, संध्या काल में आने के बाद अपने हाथ पैर मुंह धोकर के जिस भी किसी देवता को, जिस भी रूप में आप मानते हैं, या फिर मेडिटेशन में बैठें, संध्या काल का भोजन करें, थोड़ा टहलें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छी बातों पर विचार करें और नींद ले लें, सोने चले जाएं। ये एक सामान्य दिनचर्या है जो व्यक्ति कर सकता है। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन अनुशासित हो गया है, और ये अनुशासन आपको जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेगा। अनुशासन सीखना है तो बच्चों से सीखें, जो अपनी बारी आने पर खेल खेलते हैं। बच्चों की बात चली है तो कार्यक्रम में एक गीत सुने जिसे अमिताभ बच्चन ने गाया मिस्टर नटवर लाल फिल्म के लिए। आनंद बख्शी ने यह गीत रचना लिखी।

ti. संगीत राजेश रोशन का था, नवजीवन फिल्म्स के बैनर तले ये गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से हम आपको सुनवाते हैं।

0: कई साल पहले की ये बात है,
1: बोलो मां चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। बड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।
2: श्रोताओं, सुप्रभात कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त कमल पारिक को इजाजत दें। कुछ और फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 बजे से, सिर्फ और सिर्फ कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

0: इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार कुछ पलों में दिल्ली से लेके जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बुरा हाल हुआ उस पे भूख से लगा
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और

0: जापान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये होर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की 0 सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया

0: यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1,000 रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने

0: मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया, अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at

0: making its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweights Spain. Cape Verde's 40-year-old goalkeeper, Vizinha, delivered a heroic performance as his side held Spain to a 0-0 draw. Earlier, Belgium and Egypt also drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. Egypt came close to securing their first ever World Cup victory but were denied by a quick response from Belgium's substitutes under the intense heat. Saudi Arabia and Uruguay also drew 1-1 in their opening match of Group H in Miami Stadium in the US this morning. Abdullah Al-Amri scored on a rebound in the 41st minute for Saudi Arabia, and Uruguay's Maxi Araujo responded with an equaliser in the 80th minute. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Sunil. The peace deal between US and Iran is prominently noted on the front pages of dailies. US and Iran reach deal to end war, reopen Hormuz, headlines the Indian Express. US-Iran strike tentative peace deal as Israel refuses land pullback, reads the headline in the Statesman. Prime Minister Modi will lead the main event of the International Day of Yoga 2026 celebrations in Kolkata on June 21, writes the Asian Age. In its editorial piece title Label Truth, the Tribune argues that FSSAI's action against misleading food labels is necessary but only a first step. And that is back to you, Sunil.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross, first class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Avignon, France today to hold bilateral meetings with Prime Ministers of Canada and UK and UAE President. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। स्लोवाकिया ने वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना आलातरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अता किया है। वज़ीर-आज़म मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में मुनाक़िदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वज़ीर-आज़म और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लाने वाला भारतीय जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाके अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया, जबकि बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी ने वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के आलातरीन सरकारी एजाज द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा है। वज़ीर-आज़म मोदी ने इस बावकार एजाज पर स्लोवाकिया के सदर, स्लोवाकिया की हुकूमत और वहां के अवाम का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। एजाज कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि ये एजाज भारत के 1,40,00,000,000 अवाम और भारत व स्लोवाकिया के दरमियान देरीना दोस्ती के नाम है। वज़ीर-आज़म ने कहा कि ये एजाज भारत और स्लोवाकिया के अवाम के दरमियान मौजूद खलूस, एतमाद और मोहब्बत के मजबूत रिश्तों का मजहर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये एजाज दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों को भी बाहमी दोस्ती और खसूसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की तरगीब देगा और इस दोस्ती को आइंदा भी फरोग देता रहेगा। भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। ब्रेटिस्लावा में वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के बाद फरीकैन ने अहम शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ताल्लुकात का फरोग मुश्तरक अकायद, तरजीहात और मुस्तकबिल की अलामत है।

0: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबों में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इकतसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमाया तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्को है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोज़ा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकत दारियों का क़याम और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़र नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकतदार ममालिक के नुमाइंदे, नीस आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टारमर और मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्की हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की दावत पर फ्रांस के उस शहर का दौरा कर रहे हैं, जिसे एक नहायत अहम, नतीजा खेज और हमाजहत दौरा करार दिया जा रहा है। काबिले जिक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये भारत की 13वीं शिरकत होगी, जबकि वज़ीर आज़म मोदी मुसलसल 7वीं मरतबा इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंसों में भारत की मुसलसल शिरकत आलमी उमूर में मुल्क के बढ़ते हुए रोल और अहमियत की अक्कासी करती है। यह आलमी सतह पर अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती पायदारी से मुतालिक चैलेंजों से निमटने में भारत के रोल और खिदमात के एतराफ की अक्कासी भी करती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: G7 मुल्कों के लिए भारत की स्ट्रेटजिक अहमियत अब ठोस इक्तसादी और तकनीकी शराकत दारियों की सूरत में मजीद नुमाया हो रही है। इसका सबूत हाल ही में तय पाने वाला भारत यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदा है, जबकि नीस में मुनक़िदा भारत इनोवेट प्रोग्राम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत का सरकारी AI पार्टनर मुल्क के तौर पर इंतखाब भी इसी सिलसिले की अहम मिसालें हैं। ये पेशरफ जाहिर करती है कि G7 ममालिक भारत को सिर्फ एक बड़ी मंडी के तौर पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इख्तरा, मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सप्लाई चेन्स के शोबों में एक काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर भी देख रहे हैं। अहम बात यह है कि फ्रांस की G7 सदारत की जानिब से तय की गई मुतअद्दिद तरजीहात, जिनमें आलमी अदम तवाज़ुन को कम करना, बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों का फ़रोग और मसनूई ज़हानत AI शामिल हैं, भारत की सलाहियतों और मफादात

0: से करीबी मुताबिकत रखती हैं। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक ख़ुसूसी फ़ीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले साल 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, अलबत्ता वो दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने एक नई सुर्ख लकीर खींच दी कि अगर दहशतगर्दी को हुकूमत की पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका बराह रास्त और सख्त जवाब दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। 9 और 10 मई को भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने एक ही ऑपरेशन में एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क के 11 फजाई अड्डों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान फदाइया के तकरीबन 20% बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन के बाद आलमी सतह पर भारत को वसी हिमायत हासिल हुई और मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने भारत के मौकिफ की तायीद की। ये भारत की बढ़ती हुई आलमी साख और बैन अल-अक़वामी बयाने पर उसकी मजबूत गिरफ्त की अक्कासी करता है। आकाशवाणी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, जो जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: NDA हुकूमत दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर साबित कदम है और इस पर पूरी संजीदगी और अज़्म के साथ अमल पैरा है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: हुकूमत ने अपने ताज़ा तरीन 15 रोज़ा जायजे में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की बरामद पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आज से नाफिजुलअमल डीजल बरामदी ड्यूटी 13.05 रुपये फी लीटर से 14 रुपये फी लीटर कर दी गई है, जबकि ATF की बरामद पर महसूल 9.05 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर बरामदी ड्यूटी 1.05 रुपये फी लीटर पर बरकरार है। घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटियों की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रकीक कुदरती गैस LNG लाने वाला जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। LNG बरदार ये जहाज 62,370 मैट्रिक टन LNG लेकर आ रहा है। इस जहाज का इंतजाम शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की क्यादत में कायम एक कंसोर्शियम कर रहा है। ये इन अव्वलीन तजारती जहाजों में शामिल है जहां अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी माहदे के ऐलान के बाद आबनाए हुरमुज को पार किया है। जनूबी कैलिफोर्निया के सहराए मोहावी में अमरीकी फिजाइया के फौजी अड्डे से परवाज होने के फौरन बाद एक B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें सवार सभी 8 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतला दी कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर तैयारा गिरने के बाद हंगामी टीमें जाए वकूअ पर पहुंची। फिजाई फुटेज में बेस के रनवे के करीब सेहरा से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साल गोलकीपर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इससे पहले ग्रुप जी के इफ्तिताही मैच में बेल्जियम और मिस्र का

0: मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी तरह आज सुबह अमरीका के मियामी स्टेडियम में ग्रुप एच के मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच भी 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैजल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के स्लोवाकिया दौरे की खबर को अवलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और स्लोवाकिया में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट फीको की मुलाकात, दिफा मसनूई जहानत, तजारत और सकाफती रवाबित को नई समत देने का ऐलान। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर को शाया करते हुए पहली सुर्खी बनाई है, ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन माहदा स्विट्जरलैंड में 19 जून को बाजाबता दस्तखत होंगे। अमेरिका ईरान मुफाहमतनामे का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खैर मकदम किया। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, जेवर एयरपोर्ट का इफ्तिताह, किसानों को पहली परवाज का तोहफा, मुल्क भर के 45 शहरों के लिए यहां से परवाजें दस्तयाब होंगी।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। स्लोवाकिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अता किया है। वजीर आजम मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वजीर आजम और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन LNG लाने वाला भारतीय जहाज दिशा बाहिफाजत आबनए हुरमुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाकई अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज प्रस्तुत है जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह और साथियों को। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजे चाहते हैं प्रादेशिक समाचार जयपुर से लेके जाएंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नवाचार और विश्वास, जिम्मेदारी तथा मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये पहल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित करती है और इससे युवाओं को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की व्यावहारिक जानकारी मिलती है। मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा जन आंदोलन है।

0: है जिसको लेकर भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में आयोजित शिविर में पट्टा, लीज, भवन निर्माण स्वीकृति और नामांतरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि शिविर के पहले दिन 327 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
1: जो जो हमारे एप्लीकेशंस पेंडिंग चल रही हैं, जो हमारे पास अपने CCC सर्विसेज के ऊपर ऑनलाइन हैं, उन लोगों को हम मैसेज भेज रहे हैं कि जिनकी एप्लीकेशन लास्ट स्टेज पे है उनको जैसे आज हमने बुला रखा है, और जिनमें अभी थोड़े से काम है उनको जब नेक्स्ट कैंप लगेगा उनका तो बुलाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग जो हमारे 6000 से ज्यादा CCC पे पेंडेंसी चल रही थी वो सारी पेंडेंसी को हम इस कैंप में खत्म करेंगे। इसके साथ साथ जो नई एप्लीकेशन आएंगी उनको भी इस कैंप में टेकअप करके खत्म करेंगे।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर की लाभार्थी सुनीता अग्रवाल ने आवासीय पट्टा मिलने पर खुशी जाहिर की है और सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: मैं सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और हमने पट्टे के लिए 1.5-2 साल पहले आवेदन करा था, तो आज हमें प्राप्त हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का दिल से आभार करना चाहूँगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से 82 लाख पात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है। वहीं 84 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नए जुड़े लाभार्थियों को अब मुफ्त राशन के अलावा निःशुल्क इलाज, गैस सिलेंडर सब्सिडी और 5 लाख रुपये की दुर्घटना सहायता का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का गिव अप अभियान की देश भर में सराहना की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की है। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री मोहन ने सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों की सुगम यात्रा के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। इधर प्रदेश में परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 27 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने CBI की उस अर्जी को मंजूरी दे दी है जिसमें नीट UG पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मांगी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कल पुलिस मुख्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि संगठित अपराध और धमकी देकर वसूली करने वाले गिरोहों पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का उपयोग करते हुए गैंगस्टरों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने और उनके बैंक खातों को सीज करने के भी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करी रोकने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके अलावा साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां की जा रही हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को दस्तरोधी दवा देंगे।
3: 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त रोगों से होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर संपर्क कर दस्त रोग की पहचान, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी देंगे तथा ORS पैकेट और जिंक टैबलेटों का वितरण करेंगे। सभी चिकित्सा संस्थानों में ORS कॉर्नर स्थापित कर ORS तथा जिंक टैबलेट का वितरण किया जाएगा।

0: इसके साथ ही सही से हाथ धोने की विधि, स्वच्छ पेयजल उपयोग, भोजन को ढककर रखने तथा खुले में शौच से रोकने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा ताकि दस्त रोग से होने वाले गंभीर परिणामों से बचा जा सके। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में रहा। वहीं जैसलमेर में 41.3 और बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच कल कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां हुई। श्रीगंगानगर, सीकर, कोटपुतली बहरोड और चूरू में तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जयपुर और पिलानी तथा झुंझुनू सहित कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का ये दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुने मरु मंगल। कलाकारा है सुलोचना खमेर।
3: चिरंगार बलम थारी

जब देखूं बने की लाल पीली अखियां, लोक रचनाएं मरुमंगल कार्यक्रम में आपने सुनी। कलाकार थी सुलोचना खबीर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं 918 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। आपका अपना रेडियो दोस्त कमल पारिक आज हाजिर है फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेकर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फारूक कैसर का लिखा गाना लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, संगीत जीएस कोहली का, फिल्म का नाम है शिकारी।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफ़ी, मन्नाडे, बातिश, सुधा और साथियों की आवाज़ें। साहिर की गीत रचना संगीत रोशन का, फिल्म का नाम बरसात की रात।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुरेश वाडकर और अनवर को सुने, फिल्म का नाम है विधाता। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में ये गीत लिखा आनंद बख्शी ने।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये मीठी सी धुन है हेमंत कुमार के साजों से निकली हुई। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गाना सुने नागिन फिल्म के लिए, स्वर लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: शकील बदायूनी का लिखा गाना सुने, फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
3: जरा नजरों से कह दो जी।

0: ये गायक स्वर और इस गाने का संगीत दोनों हेमंत कुमार के हैं।
1: कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं।

0: लो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुबह के 10 बज चुके हैं। कार्टन सिटी चैनल सूरतगढ़ से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का प्रोग्राम गा मेरे मन का। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हसरत जयपुरी का लिखा गाना, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज़ें आशा भोसले और साथियों की, फिल्म का नाम शिकार।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये जो चिलमन है दुश्मन।
7: मोहम्मद रफ़ी को सुने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है महबूब की मेहंदी। इस फिल्म के लिए गीत लिखा आनंद बख्शी ने।

0: चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अमर अकबर एंथोनी। इस फिल्म का गीत सुने मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और नगमा निगार है आनंद बख्शी।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: पर्दा है पर्दा, आपने सुना अमर अकबर एंथोनी फिल्म का गीत।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। मेरे हुजूर फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग सुने, गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का, स्वर मोहम्मद रफी का।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों को सुने। हसन कमाल का लिखा गाना है, धुन रवि के साजों से निकली है। फिल्म का नाम है निकाह।

0: एक फूल दो माली। इस फिल्म के लिए सुनिए आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को। प्रेम धवन का लिखा गाना है, रवि की धुन है, प्रस्तुति सिर्फ कार्टून सिटी चैनल सूरतगढ़ की, क्योंकि हम देते हैं आपको आपके मनोरंजन की फुल गारंटी।
1: ये पर्दा हटा दो,

0: हटा दो।
1: आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं, तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मुकेश को सुने, फिल्म का नाम धर्म कर्म। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में, शब्द मजरूह ने लिखे।

शकील बदायूनी का लिखा गाना सुने, नौशाद का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज है, गीत वही जो आपने ठीक पहचाना। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म का नाम मुगले आजम।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आज क्यों हमसे पर्दा है। मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं अन दत्ता का संगीत, बद्धु किया साहिर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है साधना।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कार्टन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 11 बज चुके हैं। कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से दोस्तों, आकाशवाणी ने, रेडियो ने अपने 90 साल पूरे किए हैं इस सफ़र के, और आज के फिल्म संगीत के इस सफ़र में हम आपको सुनवाएंगे 1980 और 90 के दशक के चंद बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने आपके लिए।

दोस्तों, हम ये ज़िक्र भी करना चाहते हैं कि आज फिल्मी दुनिया के मशहूर अदाकार मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन है। मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन पर आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उन्हीं की फिल्मों के बहुत प्यारे गाने।

अभी आप सुन रहे थे दलाल फिल्म का ये गाना। इस गाने को आवाज़ दी थी कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। गाना अनजान का था और संगीत बप्पी लहरी का। और ये है आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश।

0: दोस्तों, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में आपने ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना सुना, समीर का लिखा हुआ। फिल्म थी इलाका और ये आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मी दुनिया के मशहूर अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के खूबसूरत गाने।

दोस्तों, आप सुन रहे थे फूल और अंगार फिल्म का ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। और अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।

आप सुन रहे थे प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का ये गाना बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ में, और ये है कार्यक्रम की अगली पेशकश।

दोस्तों, आप सुन रहे थे मुद्दत फिल्म का ये गाना। ये आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की, और इस गाने को लिखा SH बिहारी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से आप सुन रहे हैं मशहूर अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के खूबसूरत गाने।

0: प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे दोस्तों, शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गाने आपके लिए और हैं, एक छोटा सा अंतराल है।
1: शहर जानते हैं आप, वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप, वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस।

0: डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, फिल्म संगीत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन पर उन्हीं पर फिल्माए गए उनकी फिल्मों के बहुत ही प्यारे गाने। मिथुन चक्रवर्ती एक मशहूर अदाकार, 1980 और 90 के दशक में उनकी बहुत ही खूबसूरत फिल्में आईं और उन फिल्मों के गाने भी बहुत प्यारे हैं। तो आपके लिए हमने कुछ गाने चुने हैं। आज ही के दिन 16 जून 1950 को मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ कोलकाता में, और आपने 1976 से लेकर तकरीबन 35 सालों तक फिल्मी दुनिया में बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में काम किया। गाने कितने खूबसूरत हैं इनकी फिल्मों के, ये गाना आप सुनिए।

ये फिल्म है 20 साल बाद, आवाज़ें मोहम्मद अज़ीज़ और सारिका की है, गाना आनंद बख्शी ने लिखा है और ये संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आइए सुनते हैं।

ये बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आप सुनिए ये आखिरी गाना और नरेश वर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12 बजे हैं, अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। चंद बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे गाने आपके लिए। 12:30 पर सुगम संगीत में चंद गज़लें। 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलिहान। 1 बजे आप सुनिएगा आकाशवाणी जयपुर से समाचार। और 1:05 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन। कार्यक्रम पेश करेंगी शीला कुमारी। जानकारी के विषय रहेंगे पेट की तकलीफों के लिए योगासन, मिट्टी के बर्तन का उपयोग, आशा सहयोगिनी के कार्य, अरबी के व्यंजन। और इसके साथ ही चंद लोकगीत और लोक भजन आप सुनेंगे। 2 बजे आप सुनिएगा मिड डे न्यूज़। और 2:15 पर हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 2:30 पर हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत में मशहूर संगीतकार गायक हेमंत कुमार के गाने। 3 बजे उर्दू सर्विस आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम में युववाणी। फिल्मी गीतों के साथ साथ आप सुनेंगे एक वार्ता। आकाशवाणी का बदलता स्वरूप वार्ताकार होंगी अंकिता सिहाग और आज के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 6:05 पर आपके लिए सराइकी कार्यक्रम होगा। 6:30 पर हिंदी में समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी। 6:45 पर राजस्थानी में समाचार आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल में गीत भजन और समसामयिक जानकारियों के साथ बाजार भाव और मौसम की जानकारी। 7:45 पर सुनिएगा भक्ति संगीत चंद फिल्मी भक्ति गीत आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। 8 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। रात 9:15 पर कार्यक्रम सुनिएगा हेलो गोरबंद। कार्यक्रम पेश करेंगे श्रीपाल शर्मा और संयोजक नवीन सिसोदिया। 10 बजे हिंदी फिल्मी गानों का कार्यक्रम गीत गंगा होगा। 12:55

दोस्तों नमस्कार। आज का शीर्षक हम आपको बताएंगे एक या दो गाने सुनवाने के बाद, तब तक आप खुद ये जान जाएंगे कि आज हम किस मौजू के गाने आपको सुनवा रहे हैं।

दोस्तों, आप सुन रहे थे आग और शोला फिल्म का ये युगल गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की। गाना आनंद बख्शी ने लिखा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का था। और अब आपके लिए शर्मीली फिल्म का ये गाना।

0: ए यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा
0: यहाँ

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आपने ये गाना सुना। नीरज ने गाना लिखा था और आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शर्मीली फिल्म से। एक ही शीर्षक कार्यक्रम आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं और अब तक आप जान चुके हैं। आज हम आपको सुनवा रहे हैं आज शीर्षक के चंद खूबसूरत गाने।

दोस्तों, आपने समीर का लिखा ये गाना सुना। संगीत नदीम श्रवण का था और इस गाने में आवाज़ें दी थी जोली मुखर्जी और अनुराधा पौडवाल ने। ये गाना हमने लिया था साथी फिल्म से। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं दयावान फिल्म का ये दो गाना। इसमें आवाज़ें हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा है अजीज़ कैसी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही शीर्षक। आज हमने आपको आज शीर्षक के चंद खूबसूरत गाने सुनवाए। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 हुए हैं। अब सुने सुगम संगीत। पहली गजल आप सुने तलत अजीज की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे तलत अजीज़ की आवाज़ में ये गज़ल, और अब सुनिए चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल आपके लिए। आइए सुनते हैं।

आपने चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल सुनी, और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में ये गज़ल। आइए सुनें।

अनूप जलोटा की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर। इस वक्त 12:50 होने वाले हैं। अब आप सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। आज की जानकारी का विषय है बीजोपचार से कीट और बीमारियों पर नियंत्रण। आइए सुनते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज की जानकारी का विषय था बीजोपचार से कीट और बीमारियों पर नियंत्रण। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारण। दोपहर का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर अजमेर से समाचार। प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृति

0: संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में सक्रिय और समावेशी भागीदारी आवश्यक है।
1: आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे, दृष्टिकोण रखे और किस तरीके से सकारात्मक योगदान भारत के युवाओं का हो सकता है, भागीदारी हो सकती है, इसके लिए ये युवा संसद विशेष रूप से नई दिशा, नया दृष्टिकोण देगी।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही टेलीग्राम को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए पुराने संदेशों को एडिट करने की सुविधा भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। एनटीए के अनुसार यह कदम परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के झूठे दावे गढ़ने और अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। एजेंसी ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा है कि इन उपायों से छात्रों के व्यापक हित में परीक्षा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय और उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। बालोतरा जिले के पाटोदी गांव के पास आज एक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये हादसा कार के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुआ। ये सभी लोग भाई थे और कोड़ुका गांव से मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। वहीं एक अन्य हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई। ये दुर्घटना पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास पर हुई, जब एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ये सभी लोग जोधपुर से सिरोही जा रहे थे। उदयपुर के कोटड़ा में सेई बांध टनल के विस्तार का 95% काम हो गया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल कार्यस्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 15 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमावत ने बताया कि इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। टनल की चौड़ाई बढ़ने से इसकी जल निकासी क्षमता 328 से बढ़कर 1376 क्यूसेक हो जाएगी। इससे मॉनसून के दौरान सेई बांध का पानी बेकार बहकर गुजरात नहीं जाएगा और जवाई बांध अब 50 की जगह केवल 22 दिन में भर सकेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून बारिश और आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज भरतपुर में आंधी बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहावना हो गया। वहीं किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जयपुर सहित कल कई जिलों में तेज आंधी के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में ओले भी गिरे। चूरू के सरदार शहर में तेज अंधड़ से में ही अंधेरा छा गया। तापमान में आए इस बदलाव से कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि फलौदी 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मीटर

गीगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का सूरतगढ़ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम पेश करेंगी शीला कुमारी। आइए सुनते हैं।

पहलो और मोटो तत्व है माटी यानी मिट्टी। आज आप बात कराला अपने उन माटी री महक और मिट्टी रे बर्तना री उपयोग रे बारे मायने। आजकल आप देखा कि सुख सुविधा री दौड़ रे मायने आप कई बार भी थोड़ो सोरो रहवे वह बर्तन जिका में सु फटाफट खानो बन जावे जिया बैंग बर्तन आप दड़ले सु या ज़्यादा उपयोग करा। पर अपने गांव री दादी और सासू जी हमेशा कया करता कि मिट्टी रे हांडी रे माए बन्योड़ी दाल और राबड़ी रो जिको स्वाद हुए नी बिंगो के कहवणो। माटी रे बर्तना रे माए ने खानो बनावणो सु घणो ही फायदो मिले है। मिट्टी रे बर्तन माए ने आँच धीरे धीरे लागे है जिंसु खाने रा पोषक तत्व नष्ट कोनी होवे और सागे आपने कैल्शियम फास्फोरस आयरन और मैग्नीशियम जैसा जरूरी तत्व भी कुदरती रूप से मिल जावे है। सागे बहनों मिट्टी री प्रकृति होवे है क्षारीय। जब आप मिट्टी रे बर्तन रे मायने खानो बनावानी तो माटी रा बर्तन कोई जिको खाने रे मायने एसिड होवे नहीं बाने सोख लेवे है और खाने रो पीएच संतुलन ने सही रखे है। इन वास्ते उन खाने सु पेट मायने गैस और तेजाब को निबना है। अजकल आप देखा कि सगला रहा कोई कह मेरे तो सिर मायने गैस बनगी कोई कह मारे पेट मायने गैस बनगी। तो जेकर आप मिट्टी के बर्तन मायने खानो बना सानी तो अपनी ई गैस सारी समस्या सु छुटकारो मिल जासी। इं ही बहनों कड़कती गर्मी रे माए माटी रे घड़े रो पानी या सुराही रो पानी तो अमृत होवे है। मिट्टी रे घड़े रे मायने छोटा छोटा छेद होवे है जिनसु के वे पानी रो वाष्पीकरण होवे और पानी कुदरती रूप से उतनो ही ठंडो रहवे जितो आपने शरीर वास्ते गुणकारी होवे। बहनो जब आप मिट्टी रे बर्तना रो उपयोग कराला नी तो उनसु चोखी पाता तो होवे ले ही। पहली आपनो परिवार निरोगी रहसी और दूसरी आपने ही गांव रा कुम्हार भाई जिका दिन रात मेहनत कर चाक माथा बर्तन बनावे उनारे घर रे मायने भी बरकत आवेली उनने भी रोजगार मिलसी। अपनो एक छोटो सो फैसलो कि घर मायने चूल्हो जला सके है सा कहवे है नी कि अपनी माटी सु जिको जुड़ रहवे है नी उन घर मायने हमेशा सुख और संतोष रहवे है। तो आंगने री लक्ष्मी हो थे ही थे सगली बहना ई माटी री महक ने अपनी रसोई मायने ले रहो और सगला रे घर मायने खुशी रा दिया जलाओ।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमी

0: व्यक्तियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बहनों, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी थाने मिलन लाग रही है। और अब आप बात करा ला अपने गांव, अपने ढाणे और आंगणे री उन सजग पहरेदार री, जिकी खुद एक महिला होर पूरे गांव रे स्वास्थ्य री सार संभाल रखा है। जी हाँ, मैं बात करूँ अपनी आशा सहयोगनी बहन री। कहवे ऐसा कि विपत्ति री घड़ी माए जिकी सबसे पहले आनर थारो हाथ पकड़े है नी, वो ही सचो मददगार हुआ है। अपने गांव माए जित भी कोई बहन गर्भवती हुए या कोई टाबर री सेहत बिगड़े है, तो आधी रात माए जिकी बहन दवारी पोटली हाथ रे माए लेर दौड़ी आवे, बा अपनी आशा सहयोगनी ही है सा। सरकारी स्वास्थ्य योजना और गांव रे बीच माए आ बहन एक मजबूत सांकल रो काम करे है। जित भी गांव माए कोई बहन रो गर्भ ठहरे, तो आशा सहयोग ने सबसे पहला उनरो नाम दर्ज करे। गर्भ रे समय कईयां री जांच करावनी है, कईयां रो खान पान राखनो है और आयरन री गोलियां किया लेवनी है। ऐ सगली जानकारी वा बहन घरे आर समय समय पर आपने देवे है। और उनरो सबसे मोटो जतन ओई रहवे है कि जिको प्रसव है नी, वो अस्पताल रे माय नहीं होवे, जिंसु के जच्चो और बच्चो दोनों स्वस्थ रहवे और टाबर होया पछे भी बा अपने घणोई काम आवे और घणोई आपनो सहायता करे है। और कई कई बातें बे बतावे आपने, इन बारे में और बताऊंगा, पर पहले सुनावा थाना एक चोखो सो भजन।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मैडम, अभी आप बात करन लाग रहा है आशा सहयोगनी बहन राय कार्य के बारे में, कि वे आपने कितनी मदद करा है और कितो आपनो सहयोग करा है। और बांगो मुख्य उद्देश्य वही हुआ है कि माँ और टाबर दोनों स्वस्थ रहे है। टाबर है जन्म सुलेर सगला टीका समय समय पर कियाँ कियाँ लगवाना है, ऐ सगली बातें वे आपने बतावे है। जियाँ पोलियो रो टिको, काली खांसी रो, टिटनस रो, खसरे सु बचाव वास्ते इनो प्यूरी पूरो पूरी बातें रो ध्यान में रखे है और आपने समय समय पर बतावता भी रहे है। ऐ सब काम करे है आपनी आशा बहन। मैनो सरकार ये घनी चौखी चौखी योजनावां जियाँ जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रे तहत जिकी भी आपने आर्थिक सहायता मिले, उनरा फार्म भरावना, बैंक खातों खुलावनो, ये सगले काम मायने आशा सहयोगनी बहन अपनी पूरी मदद करे है। स्वास्थ्य और सफाई रे प्रति भी गांव मायने वे जागरूकता फैलावे है। बहनो जरा ठंडे दिमाग सु सोचो, बा आशा सहयोगनी भी तो अपने गांव री बेटी या बहू है, उनरे माथे भी अपने घर रो, टाबरा रो, रसोई रो पूरो काम हुआ है। पन वा सगलो काम समेटर चिलचिलाती धूप रे मायने और ई ताती लू रे मायने भी अपनी भलाई वास्ते अपने घरे आवे, अपनी जांच करे, जांच के बारे मायने बतावे भी है, टीकारी बातें भी करे और थाने समझावे है। बहनो, उनारो आदर करनो थारो धर्म है, उनने सही जानकारी देवो और स्वास्थ्य कार्ड संभालर रखो। सेवारो भाव जिनरे मन मायने वास करे है नी, वह बहन ही समाज मायने खुशहाली रो उजास कर सके है। अब आज आपा घर आंगन रे ई मंच सु अपनी सगली आशा सहयोगनी बहनारो दिल सु हृदय सु ही सु धन्यवाद करा, जिकी बिना थक्या अपने गांव ने निरोगी रखने मायने जुटेड़ी है। और आपने अठे तो बहनो कोरो कोरो धन्यवाद करने री रीत तो है ही कोनी, तो आपा बने सुनावा धन्यवाद स्वरूप और चौखो सो गीत।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम

0: बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: संगीत री ई धुन रे सागे सागे आगे बड़ा पाब और बात करा योगासन रे बारे रे मायने। बहनो, आपनो ओ शरीर है नी, ओ एक अनमोल रतन है। कवे भी है, पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में हो माया। बहनो, आपने शरीर ने स्वस्थ रखने वास्ते सबसे पहला आपनो पेट रो साफ और निरोगी रहनो घनो ही जरूरी है। ई कड़कती धूप और ताती लू रे माए कई बार आपनो पेट दुखन लाग जावे। खेता रे माए मेहनत और ई मौसम रे माए पानी की कमी होवन सू कई बार मारी बहना रे पेट रे माए ने गैस बन जावे, या कई बार खाणो नहीं पचे, खट्टी डकारा आवे या आफरो आ जावे, जिसी समस्या रो भी कई बार आपने सामनो करनो पड़ जावे। तो बहनों, इसी समस्या ना आवे इन वास्ते मैं थाने इस आसान आसन बताऊंगी अभी, जिके सुके है पेट वास्ते बे रामबाण हुआ है और आप घरे ही दरी बिछार ए आसन कर सका। हाँ, पहलो है वज्रासन। इंग मैंने बहनों के करनो है वो एकदम आसान है, जिके ने आप खानो खाने रे तुरंत बाद भी कर सका। हाँ, इंग वास्ते थाने दोनों पगाने पीछे खानी मोड़ एडिया माथे बैठनो है। दोनों हाथ घुटना माथे रखो और कमर एकदम सीधी रखो। खानो खाने रे बाद जे थे 5-10 मिनट इयां बैठोला तो गैस और एसिडिटी री तकलीफ सुथाने हमेशा वास्ते छुटकारो मिल जासी। यही बहनों पवन मुक्तासन भी होवे है, जिया इरे नाम सु ही ठापड़े कि पवन यानी हवा ने मुक्त करन वास्ते। सुबह खाली पेट दरी माथे पीठ रे बल लेट जाओ, फिर आप रे घुटना ने मोड़ पेट खानी लाओ और दोनों हाथा सु घुटना ने पकड़ पेट ने धीरे सु दबाओ। ये अवस्था रे माए ने थाने गहरी सांस लेवनी है और छोड़नी है। यो आसन पेट माए बनन आली फालतू गैस ने बाहर काढ़े और अपनी आंतरी चोखी सफाई भी कर देवे है। कपाल भाती प्राणायाम वो भी गुणो ही सोखो है। पगाने आलती पालती मार सुखासन माए बैठ जाओ, सांस ने गहरो अंदर की तरफ खींचो और फिर झटके सु सांस ने बाहर छोड़ो। पेट ने अंदर खींचनो और बाहर छोड़नो है। ध्यान रख जो जिन बहना ने घनो तेज बीपी होवे या कमर मायने दर्द होवे, बे इन्हें धीरे धीरे करे या फिर डॉक्टर री सलाह सु ही करे। बहनों, योग रो मतलब खाली हाथ पग हिलावनो ही कोनी, योग रो साचो मतलब है आपरे जीवन ने अनुशासित बनावनो। अपना बड़ा बडेरा हमेशा एक बात काया करता, खानो गम खावनो, भूख सू थोड़ो कम खावनो और जीवन मायने संतोष राखनो। ये तपती गम गर्मी रे मायने अपने खान पान रो विशेष ध्यान राखनो पड़सी। सुबह सुबह छाछ राबड़ी रो सेवन करो, पानी खूब पियो और खाने रे माय ठंडी चीजा जिया ककड़ी मतीरा और पुदीने रो उपयोग ज़्यादा सु ज़्यादा करो। और हाँ, नींबू री सिकंजी जरूर पीवता रहो, जी के सुके अपने पानी रे शरीर रे मायने पानी री कमी ना होवे। तो मैंने बातचीत तो घनी करी हाँ, पर चलो थाने सुनावा आज एक चोखी सी रागनी।

0: विकास के, जन कल्याण के।
1: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: गीता रे मीठा सुरा रे साथे ही आज रे ओ आपनो खास कार्यक्रम घर आंगन रो बखत भी अब पूरी तरह से खत्म होवन पर आ गयो है। सा साची बात बताऊं, जब मैं थारे सागे बाता करन बैठू हूँ नी तो बकत रो तो कदी बेरो ही कोनी लगा है। मने तो यहाँ लगा जी अभी मैं थारे खनी बैठी बाता करन लाग रही हूँ। घड़ी री सुइयां इया भागे है जिया कोई घोड़ो दौड़ रियो हुआ है। यहाँ लगे जिया मैं स्टूडियो मायने कोनी, थारे घर रे आंगन रे माए नीम री छाया के नीचे बैठी हूँ। और आपा सगली बहना चाय पानी रे सागे सागे बातें कर रिया हाँ। बहनों आज की अपनायत है नी, वो ही तो आपनों सबसे मोटो धन है। याद राख जो मारी प्यारी बहना, थारे अंदर जिकी अताह ताकत है और समझदारी भरियोड़ी है, थे ही घर री रौनक हो। जेते हंसता रहोगा, तंदुरुस्त रहोगा और समझदारी सु काम लेगा नी तो वो पूरो घर हमेशा खिलखिलातो ही रहसी। जदि तो नारी ने लक्ष्मी रो रूप मान्यो गयो है, जद नारी रह या बालिका रे मुंडे पर मुस्कुराहट रहसी नी तो पूरो घर मायने रौनक रहसी और वो घर स्वर्ग के समान लागसी। घर री धूरी तो थे ही होसा, हमेशा आपने ई प्यारी सी मुस्कान ने बना राख जो। और ई भयंकर गर्मी रे मायने आपने स्वास्थ्य रो घणो ख्याल राख जो। अब थारी ई सिल्लू जीजी ने देव जावन री आज्ञा, फिर मिलांगा ई ही बकत आकाशवाणी रे ई सूरतगढ़ स्टेशन पर थारे आपनो अपने कार्यक्रम घर आंगन रे माए। और ल्यावांगा नई नई काम री और उल्लास सु भरेड़ी बात्या। जद तई हंसता रहो, मुस्कुराता रहो और अपनो आपने घर आंगन रो, अपने परिवार रे सदस्य रो ख्याल राख जो। सगली माताओं बहना और टाबरा ने एक बार फिर सु सिल्लू जीजी रो प्यार भरो राम राम सा खम्मा घणी।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम पेश किया शीला कुमारी ने। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार होंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till 22nd of this month ahead of NEET-UG retest. Message editing feature to remain disabled till June 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storms into semi-finals of women's FIH Nations.

0: प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफ़ी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री

0: शाम पेरिस पहुंचेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक

0: दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2:30 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी दोस्तों को नरेश वर्मा की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज फिल्मी दुनिया के मशहूर गायक और संगीतकार हेमंत कुमार, हेमंत मुखर्जी, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं हेमंत कुमार के नाम से, इनकी जयंती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इनको याद करेंगे और आपको सुनवाएंगे इन्हीं के गाए और संगीतबद्ध किए चंद पुराने बहुत ही प्यारे गाने।

कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिनकी बदौलत फनकार हमेशा जिंदा रहते हैं, जैसे कि नागिन फिल्म की ये धुन। आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, आपने नागिन फिल्म का ये गीत सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गाना लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत हेमंत कुमार का था। हेमंत कुमार ने बंगाली और हिंदी फिल्मों में अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया, संगीतकार के रूप में भी और गायक के रूप में भी। आपने 60 और 50 के दशक में बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया और साथ में आपने चंद गाने भी बहुत प्यारे गाए। अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं बिन बादल बरसात फिल्म से, आइए सुनें।
1: एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के।

0: कहो ना।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
2: बिन बादल बरसात फिल्म का गाना आपने सुना। ये गाना लिखा शकील ने और संगीत हेमंत कुमार का था और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। मशहूर गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म हुआ आज ही के दिन 16 जून 1920 को बनारस में, और इन्होंने बंगाल में कोलकाता में रहते हुए बंगाली फिल्मों में भी अपना संगीत और अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा, और साथ ही बहुत ही खूबसूरत हैं इनकी चंद हिंदी फिल्में। गाने कितने प्यारे हैं ये हम आपको क्या बताएं, आप सुनिए।

दोस्तों, आपने कैफी आज़मी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गाना सुना। फिल्म थी दो दिल, आवाज़ें आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी की थी, और संगीत था हेमंत कुमार का, जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं उन्हीं के संगीतबद्ध किए गानों के साथ उनकी जयंती पर। बीस साल बाद फिल्म का ये गाना सुनिए, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

दोस्तों, आपने लता की आवाज़ में 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना। शकील ने गाना लिखा और संगीत हेमंत कुमार का था। और अब हम आपको वो कालजी गाना सुनाते हैं जिसे लिखा है गुलजार ने, आवाज़ लता मंगेशकर की, फिल्म खामोशी और संगीत हेमंत कुमार का। सुनिए।

आपने खामोशी फिल्म का ये गाना सुना, हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब लता की आवाज़ के बाद हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में, ये बहुत ही

खूबसूरत गाना, आइए सुने। ये फिल्म है अनुपमा। बोल हसरत के हैं, संगीत हेमंत कुमार का, आइए सुनें।

आपने आशा भोसले की आवाज़ में ये गाना सुना और अब मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार को याद करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि इतने प्यारे प्यारे गाने देकर 26 सितंबर 1989 को आपने ये दुनिया छोड़ दी, लेकिन पीछे छोड़ गए बहुत ही खूबसूरत संगीत का खजाना और अपनी आवाज़ में गाए भी कुछ प्यारे गाने। हेमंत कुमार को याद करते हुए हम आखिरी गाना आपको सुनवाते हैं जिसमें मोहब्बत भी है और थोड़ा दर्द भी है। आइए सुनें।

दोस्तों, ये गाना आप सुन रहे हैं साहब बीबी और गुलाम फिल्म से, आशा भोसले की आवाज़ में। शकील का गाना है और संगीत हेमंत कुमार का है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार के संगीतबद्ध किए चंद खूबसूरत गाने। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 3 बजे हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम होंगे।

इस मजलिस में 3:05 पर आप खबरें सुनेंगे और 3:15 पर फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा मेरी पसंद। सुबह 3:30 प्रोग्राम पेश होगा अदब नुमा और शाम 4 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक और शाम 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी। शाम 5 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सवेर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: रजिया मुझसे खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर इवियान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने बराती सलावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। भारत ने अक्वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की असलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज़ और रियासतों से जवाब तलब किया है जिसमें आधार को सिर्फ शनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में ख्वातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को 1-2 से हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर आज फ्रांस के शहर इवियान पहुँच रहे हैं जहाँ वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। यह कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई है। जनाब मोदी स्लोवाकिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद फ्रांस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 7वीं मरतबा शिरकत करेंगे जबकि इस अहम कसीर जहती इजलास में भारत 13वीं बार शिरकत कर रहा है।

G7 की यह सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि वज़ीर आज़म इस कॉन्फ्रेंस में आलमी खित्ते जनूब की आवाज़ और तशवीश को ज़ोरदार तरीके से उजागर करेंगे। आज शाम वहाँ पहुँचने पर फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों वज़ीर आज़म का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन से शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है नई शराकत दारियों का क़याम और बल्कवाम इत्तेहाद की असर नौ तश्कील। इस अजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीज आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। जनाब मोदी फ्रांस के सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। सरबरा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की मसरूफियतों में से एक अहम मसरूफियत कल अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। तवक्को है कि दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुक के बारे में तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फ़न और सकाफत में लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की ताकत होती है। उन्होंने यह बात स्लोवाकिया के सदर के साथ कल स्लोवाकिया के शहर ब्रातिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के फनकारों की के शाहकारों समेत वाराणसी से मुतालिक नुमाइश देखने के बाद कही। इसे ब्रातिस्लावा में भारत की एक झलक करार देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने स्लोवाकिया के फनकारों की जानिब से वाराणसी से मुतालिक तख्लीकी पेशकश को सराहा। वज़ारत खारजा ने कहा है कि यह नुमाइश वाराणसी शहर के लिए वक्फ थी, जिसमें रूहानी, सकाफती और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ पेश किया गया। भारत ने खबरदार किया है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रुकनियत में तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल मुंबर मुल्कों तक महदूद रखी गई तो सलामती कौंसिल में असलाहत की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने यह बात सलामती कौंसिल असलाहत से मुतालिक बैन हुकूमती मुज़ाकरात की मीटिंग से ख़िताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल ज़ुमरे तक महदूद रहती है तो सलामती कौंसिल के असलाहत नहायत नाकाफी साबित होंगे और अमलन नाकामी के मुतरादिफ होंगी। ऐसा करने से सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के फैसला साजी के अख्तियारात के ढांचे में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्तकिल रुकनियत के ज़ुमरे में तौसी की हमायत करके भारत मुसलसल ये कोशिश करता रहा है कि सलामती कौंसिल में और ज़्यादा तवाज़ुन और बराबरी लाई जाए। साथ ही वीटो का अख्तियार रखने वाले 5 मुस्तकिल अरकान चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमेरिका की फैसला साजी के मौजूदा निज़ाम में तब्दीली लाई जाए। भारत ने मतन की बुनियाद पर बातचीत की ज़रूरत को भी उजागर किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुज़ाकरात और ज़्यादा बामकसद और नतीजा खेज हों। खांसी के रोकथाम के सिरप लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त कर सकेंगे। सरकार ने 1945 के अद्वियात से मुतालिक ज़ाब्तों में तरमीम को नोटिफाई किया है। इसके तहत छोटे गांवों में खांसी की रोकथाम के सिरप की फरोख्त के लिए दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है। अब छोटे गांवों में भी इस तरह के सिरप की फरोख्त लाइसेंस वाले दवा फरोश ही कर सकेंगे। नीट UG 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने वाला है और इससे पहले सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद कर दी हैं। इम्तहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने एक महदूद मुद्दत के लिए भारत में टेलीग्राम तक रसाई को महदूद करने के सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की हदायत का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि ये बंदिशें नीट UG के दोबारा इम्तहान के दिन और उसके अगले रोज़ तक नाफिज रहेंगी। मस्कूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त

उमर अखलाक मोहम्मद के नाम से भी शाये हुए, लेकिन बाद में खलीलुर रहमान आज़मी के कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस शहरयार रख लिया और आखिर तक इसी नाम से जाने जाते रहे। शहरयार अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ में लिटरेरी मुआविन भी रहे और अंजुमन की मैगज़ीन उर्दू अदब और हमारी ज़बान के वो मुदिर भी रहे। आज के प्रोग्राम में उन्हीं के लिखे चंद नगमे आपकी नजर करते हैं। यह गमन फिल्म की गजल सुरेश वाडकर की गाई हुई।

संगेवील पब्लिकेशन सरद पार से उनकी कुलियात शाया हुई, जिसमें उनके शायरी के 6 मजमुए शामिल रहे और यही कुलियात सूरज को निकलता देखूं के नाम से भारत से भी शाया हो चुका है। उनके कलाम का तर्जुमा फ्रेंच, जर्मन, रूसी, मराठी, बंगाली और तेलुगु जबानों में हो चुका है।

एक ऐसे वक्त में जब उर्दू शायरी में थोड़ी सी उदासी थी और उस तरह के मौजूआत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, शायरियार ने एक अलग राह इख्तियार की और उर्दू शायरी के अंदर एक नई जिद्दत पेश की। शायरियार ने अपनी शायरी में जिस सादगी के साथ आज के इंसान की तकलीफ़ दुख दर्द का बयान किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने उर्दू शायरी के क्लासिकी रंग को बरकरार रखने के लिए जिस तरह जदीदियत को उसमें शामिल किया, वो काबिले तारीफ है। और न सिर्फ एक अच्छे शायर और अदीब थे बल्कि वो एक अच्छे नाख्वा निगार भी थे। उन्होंने उमराव जान, गमन जैसी मशहूर बॉलीवुड की फिल्मों के लिए नाख्वे भी लिखे, जो इस वक्त हम आपकी नज़र कर रहे हैं।

अखलाक मोहम्मद खान शहरयार ने 13 फरवरी सन 2012 को आखिरी सांस ली। उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, हम लोग ज़रा देर से बाजार में आए।

0: इसके साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये प्रोग्राम खराज अकीदत था उर्दू सर्विस की जानिब से शायर नगमा निगार शहरयार को। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम अदब नुमा।
1: सामिन की खिदमत में आदाब अर्ज है। एक बार फिर हाजिर खिदमत है आज का अदब नुमा प्रोग्राम लेकर। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर आफियत होंगे। चंद लम्हे आपके साथ गुजारेंगे, सुनेंगे कुछ अच्छे से आशार और एक खूबसूरत सी कहानी। मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो। मज़ा बरसात का

0: चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अबरे बारह हैं। इसी तरह के कुछ प्यारे से अशार चलिए आपको सुनवाते हैं कलामी शायर के तहत। हमारी आज की शायरा हैं मोहतरमा मलिका नसीम। आइए सुनते हैं उनसे उनका कलाम।
1: एक नज़्म पेश है, अर्ज़ किया है कि दुआएं हाथों पे रख के निकलूं तो बारियाबी सनद अता कर, दुआएं हाथों पे रख के निकलूं तो बारियाबी सनद अता कर, अगर ये सूरज तपिश ज़रूरी है ज़िंदगी को तो सारे बादल जो पानियों से भरे हुए हैं उन्हें मेरी रहगुजर बना दे, दुआएं हाथों पे रख के निकलूं तो बारियाबी सनद अता कर, अगर ये सूरज तपिश ज़रूरी है ज़िंदगी को तो सारे बादल जो पानियों से भरे हुए हैं उन्हें मेरी रहगुजर बना दे, जो धूप के पैरहन दिए हैं तो फिर शजर सायादार भी दे, जो धूप के पैरहन दिए हैं तो फिर शजर सायादार भी दे, अगर दिए हैं कुलाहो

सकूं तो बारियाबी सनद अता कर, अगर ये सूरज तपिश ज़रूरी है ज़िंदगी को, तो सारे बादल जो पानियों से भरे हुए हैं उन्हें मेरी रहगुजर बना दे। जो धूप के पैरहन दिए हैं तो फिर शजर सायादार भी दे। जो धूप के पैरहन दिए हैं तो फिर शजर सायादार भी दे। अगर दिए हैं कुलाहो मनसब तो फ़क्र फ़ाका में मुतमईन हूँ वो हौसला दे। जो धूप के पैरहन दिए हैं तो फिर शजर सायादार भी दे। अगर दिए हैं कुलाहो मनसब तो फ़क्र फ़ाका में मुतमईन हूँ वो हौसला दे। तेरी रज़ा पर झुका के सर जी सकूँ कुछ ऐसी अदा भी दे दे। तेरी रज़ा पर झुका के सर जी सकूँ कुछ ऐसी अदा भी दे दे। चराग लेकर हवा की ज़द पर निकल सकूँ और जले ना आँचल। खिला सकूँ खुश्क टहनियों पर गुलाब ऐसी नज़र अता कर। और ज़बाँ वो दे दे जो बन सके मेरे इजहार का वसीला। ज़बाँ वो दे दे जो बन सके मेरे इजहार का वसीला। सदाए कातिल की घनगरज से ना आबरूए सुकूत टूटे। हंसी को तरसे न कोई बचपन मेरे तकल्लुम से दर्द फूटे। और सिमट के आ जाए मेरे आंगन में सारे मौसम। खजाने उल्फत के मुट्ठियों में समेट लूँ मैं। ज़बाँ वो दे दे जो बन सके मेरे इजहार का वसीला। सदाए कातिल की घनगरज से ना आबरूए सुकूत टूटे। हंसी को तरसे न कोई बचपन मेरे तकल्लुम से दर्द फूटे। सिमट के आ जाए मेरे आंगन में सारे मौसम। खजाने उल्फत के मुट्ठियों में समेट लूँ मैं। लपेट कर अपने आंचल में सारे जुगनू। दरूने खाना के सब अंधेरे निकाल फेंकूँ। ना आए राहों में कोई वहशी मिजाज दरिया। निशात गाहे सफ़र में मेरी सबीले तशना लबी सजा दे। छलक छलक जाए मेरे आंगन में आज गागर जो बरकतों की। छलक छलक जाए मेरे आंगन में आज गागर जो बरकतों की। तो मैं समझ लूँ मेरी दुआओं को बारियाबी सनद अता कर दी आज तूने। और गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। अर्ज़ किया है कि उससे कबल एक कता पढ़ना चाहूँगी। अर्ज़ किया है कि अगर हो बस में तो इन आतशी फ़ज़ाओं को, अगर हो बस में तो इन आतशी फ़ज़ाओं को, गुलाब रुत का बरसता हुआ सहाब करूँ। कदम कदम पे सुलगते अलाव नफ़रत के, बुझाऊँ और मोहब्बत को बेहिसाब करूँ। बुझाऊँ और मोहब्बत को बेहिसाब करूँ। और दूसरा कता पेश है कि अवतारों की कौन सुने है, माने कौन है नबियों की। अवतारों की कौन सुने है, माने कौन है नबियों की। फ़िरक़ों में तकसीम हुई है आज शराफ़त सदियों की। फ़िरक़ों में तकसीम हुई है आज शराफ़त सदियों की। और दिल के बाज़ारों में जब जब रक़्स किया है वहशत ने। दिल के बाज़ारों में जब जब रक़्स किया है वहशत ने। वीरानों की गोद भरी है मांग सजी है गलियों की। वीरानों की गोद भरी है मांग सजी है गलियों की। गज़ल के कुछ शेर पेश खिदमत हैं। अर्ज़ किया है कि मेरी तस्वीर उसकी आँखों में, मेरी तस्वीर उसकी आँखों में, उसने मुझसे चुरा लिया मुझको, उसने मुझसे चुरा लिया मुझको। और एक बेनाम सी तमन्ना में, एक बेनाम सी तमन्ना में, किस कदर टूटना पड़ा मुझको, किस कदर टूटना पड़ा मुझको। और मिल गई आज दास्तानों में, मिल गई आज दास्तानों में, मेरे अजदाद की कबा मुझको, मेरे अजदाद की कबा मुझको। और गुज़रे लम्हात देने आए हैं, गुज़रे लम्हात देने आए हैं, मेरे ही खून का खून बहा मुझको, मेरे ही खून का खून बहा मुझको। और झुकने पाई न थी जबी मेरी, झुकने पाई न थी जबी मेरी, मिल गया तेरा नक्श पा मुझको, मिल गया तेरा नक्श पा मुझको। और मिल गई आज दास्तानों में मेरे अजदाद।

लेकिन यहाँ घुटन उसके घर से कहीं ज़्यादा थी। यहाँ खिड़कियाँ भी थीं, लेकिन खिड़की के बाहर सूखे दरख्तों के सिवा कुछ न था, हरियाली नाम को नहीं। एक कतार से मकानात बने हुए थे। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। नीरज सीधे साधे थे, एक चार्टर अकाउंटेंट के असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे। ढंग का कमा लेते, बोलते कम थे, उनकी आंखें ज़्यादा बोलती थीं। नीरज की दो बहनें थीं, बड़ी बहन डिवोर्स के बाद माँ बाप के साथ ही रहती, छोटी बहन गिरजा के चाल चलन अच्छे नहीं थे। ये बात उसे यहाँ आने के बाद मालूम हुई। घर वाले गिरजा से बहुत परेशान रहते, लेकिन उसकी दिलचस्पी गिरजा में थी। गिरजा अकेली होती तो उसकी बहुत कुछ पूछने की ख्वाहिश होती। एक बार गिरजा दो तीन लड़कों की तस्वीर दिखा रही थी। ये सब गिरजा के दोस्त थे। इसने मर्द दोस्तों से अपने ताल्लुकात के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके लिए समझना मुश्किल नहीं था कि इन लड़कों के गिरजा के ताल्लुकात रहे होंगे। वो अभी पढ़ रही थी, कभी कभी देर से घर लौटती तो नीरज बिगड़ जाता। गिरजा नीरज का कोई जवाब नहीं देती। वो था और उसका मोबाइल। एक दफ़ा नीरज ने माँ से शिकायत भी की थी। माँ, गिरजा गलत रास्ते पर जा रही है। माँ पहले ही बड़ी बेटी वसुधा से परेशान थी। वो ये जानती थी कि वसुधा भी अपने लिए रास्ता बना रही है। जब आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपको एक नया रास्ता खोलना होता है। वसुधा भी यही कर रही थी। महल्ले के रंजीत मास्टर से उसकी दोस्ती हो गई। रंजीत रंगीन तबीयत के थे। महल्ले के कई घरों में आना जाना होता था। बीवी से बनती नहीं थी। वो एक बार वसुधा से बातें किया कि घर खैरियत पूछने घर चला आता। ये बात नीरज को पसंद नहीं थी। गिरजा के चेहरे पर रंजीत को देखकर एक पुरसराज मुस्कुराहट पैदा हो जाती। वो वसुधा की छटपटाहट का लुत्फ लेती। माँ इस मामले में चुप रहती। वो इस बात को समझती थी। माँ चाहती थी कि वसुधा फिर से घर बसा ले। सबसे दिलचस्प और अनोखा किरदार बाबूजी का था। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज थे वो। कुछ बोलते नहीं थे। ऐसे मौके पर कमरे से उनके चीखने की आवाज़ें आती थीं। अरे मर गया, कोई है, कोई पूछता ही नहीं। वो जानती थी कि रंजीत की मौजूदगी ने सबको अलग अलग अपने हिसार में जकड़ लिया है। वसुधा जो मिलना चाहते हुए भी मजबूर है। गिरजा जो वसुधा की बेबसी का मज़ा लेती है। बाबूजी जिन्हें अचानक दर्द शुरू हो जाता है। और माँ जिसकी निगाहें तब तक गिद्ध की तरह वसुधा और रंजीत के आसपास भटकती हैं जब तक रंजीत चला नहीं जाता। एक दिन कपड़ा ठीक करते हुए इसने नीरज को ताना मारा। तुम्हारी बहनों के तो मज़े हैं नीरज। क्या? नीरज चौंक गया। एक के लिए रंजीत आता है और दूसरी बॉयफ्रेंड के साथ सारा दिन गायब रहती है। नीरज ने गुस्से से कहा, क्यों सुना रही हो मुझे ये सब? सुना नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम भी मज़े करो। मतलब? रंजीत एकदम से चौंक गया। वो हंसती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन वो जानती थी कि नीरज पे ये तीर अपना काम कर गया है। एक बार नीरज का एक दोस्त घर आया था। उसने भी हंसते हुए कहा था, भाभी इसे बांध के रखो वरना ये किसी दिन उड़ जाएगा। उसने दिल में सोचा, वो यही तो चाहती है, पंछी उड़ जाए तो उसे भी उड़ने का मौका मिलेगा। हकीकत तो ये कि ये ज़िंदगी उसे अजीब लगती थी। वसुधा और गिरजा कोई भी उसे गलत नज़र नहीं आता। एक ज़िंदगी तो मिलती है जीने के लिए, फिर ये ज़िंदगी आज़ादी के साथ क्यों न जी जाए? ये क्या कि बस एक ही खूट से बंध के रह जाओ? वो अपनी सहेलियों को जानती थी जिनके कॉलेज के दिनों में कई कई बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे। हर दिन मौज मस्ती के साथ गुजरता। अब शादी हो गई तो पतिव्रता होने का नाटक चल रहा है। वो मुखौटा लगाकर जी नहीं सकती, इसलिए उसे ऐसे नाटक पसंद नहीं थे। वो चाहती थी कि एक नई दुनिया नीरज की भी हो, जिसमें उसके अलावा भी कोई हो, और एक ऐसी दुनिया आज़ादी के साथ इसकी भी हो। गिरजा की रूमानी दुनिया से उसे जलन होती। वसुधा के आगे बढ़ने की आज़ादी खुश करती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाक्या हुआ कि वसुधा की आज़ादी के आगे ब्रेक लग गया। 10 बजे का वक्त होगा, अचानक धड़धड़ाते हुए घर में कई लोग दाखिल हो गए। इसमें एक रंजीत मास्टर की बीवी भी थी। उसके साथ उसके दो पहलवान भाई थे। रंजीत की बीवी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई वसुधा पर बरस रही थी। पहलवान भाइयों की हालत ये थी कि ज़रा सा मौका मिले तो गिद्ध की तरह वसुधा को नोच खाएं। नीरज ने किसी तरह वसुधा का बचाव किया। गिरजा आधे बंद कमरे से ये सारा मंजर देख रही थी। बाबूजी अपने कमरे में बंद होकर चीख रहे थे। माँ का चेहरा किसी लाश की तरह सर्द हो रहा था। नीरज ने बचाव का अंदाज अपनाया। आप लोगों से कोई गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई है जी, इश्क मटक्का करने ये हर रोज़ स्कूल पहुँच जाती है। झूठ हो तो स्कूल जाकर पूछ लो। और रंजीत भी तो आए दिन तुम्हारे घर का चक्कर लगाता है। क्यों चक्कर लगाने देते हो? घर जमाई है जो रोज़ आने देते हो इसे? नीरज ने माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़ दिया। अगर ऐसा है तो अब नहीं होगा, आज से नहीं होगा। ना ये स्कूल जाएगी और ना कोई यहाँ आएगा। रंजीत की बीवी फिर चढ़ दौड़ी। अरे मुझे मत पढ़ाओ ये सब, तुम तो सारा दिन ऑफिस रहते हो, तुम्हें क्या पता लगेगा? इसको तो पति ने छोड़ दिया, तुम तो यही चाहोगे ना कि किसी तरह कोई जुगाड़ लग जाए। जुगाड़? नीरज ने बेबसी से पहलवान भाइयों की तरफ देखा। आप इन्हें ले जाइए।

ये प्लीज़ अब ऐसा नहीं होगा, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है हम जाते हैं, लेकिन आगे ऐसा हुआ तो खैरियत नहीं है आपकी। पहलवान भाई अपनी बहन के साथ लौट गए। उस दिन पहली बार नीरज ने वसुधा पर हाथ उठाया। निर्लज, इसीलिए पति ने डिवोर्स दिया होगा। अब यहाँ भी नैन मटक्का शुरू हो गया। आसपास क्या इज्जत रही हमारी। उस दिन वो देर तक घर की दीवार पर काई की तरह जम गए धब्बों को देखती रही। ये धब्बे कहाँ से पैदा हो जाते हैं। मर्द कुछ भी कर ले, इसकी इज्जत को कोई ख़तरा नहीं। औरत ज़रा सा चौखट पार कर ले तो मर्द की नाक कट जाती है। वो जानती थी नीरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तलाक के बाद वसुधा के नुचे हुए पर एक बार फिर काट दिए गए। उस दिन रोती हुई वसुधा को उसने तसल्ली दी, उसके अंदर का बांध टूट गया था। भाभी, ज़रूरत क्या हम औरतों की होती हैं। हम में से हर औरत उस मांग को ख़त्म करने के लिए शराफत का एक पुल बना देती है। ये पुल एक मर्द तक जाता है जो उसका अपना मर्द होता है, और अगर ये मर्द ठुकरा दे तो वो कितने दिनों तक सैलाब को रोक सकती है। पानी का जोर आएगा तो पुल तो टूटेगा ही। वसुधा ने नम आँखों को खुश किया। उस दिन गिरजा को भी परेशान देखा। पहली बार उसने सैलाब की आहट को महसूस किया, जैसे तेज़ तेज़ समुंदर की लहरें हों जो तेज़ी से इसके घर की तरफ बढ़ रही हों। वसुधा का जुमला बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसके कानों में गूंजता रहा। यह पुल सिर्फ़ एक मर्द तक जाता है, वो सोच में डूब गई थी। अगर इस पूरी कायनात के नज़्म में एक मर्द औरत को समझने वाला ना हो तो औरत इस पुल से होकर अलग अलग दिशाओं में क्यों नहीं जा सकती। अगर एक छोटी सी दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी रोमानियत के तसव्वुर को कोई मर्द न समझना चाहे तो पुल को क्यों नहीं तोड़ा जा सकता। लेटे लेटे उसने नीरज को आवाज़ दी। सो गए क्या? नहीं, क्यों? मुझे बताओगे वसुधा की गलती क्या थी? नीरज एकदम से चौंक पड़ा। मतलब ये है कि वसुधा की कोई गलती नहीं थी। कुछ सैलाब ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ बहा कर ले जाते हैं। उसने सच कहा था। आने वाले कुछ महीनों में चुपके से ऐसा हुआ, सैलाब बहुत कुछ बहा कर ले गया। कितनी खामोशी से कुछ कहानियाँ बंद हो जाती हैं, कितनी खामोशी से ज़िंदगी के बढ़ते सफ़र में अचानक ब्रेक लग जाता है। कुछ चेहरे गुम हो जाते हैं तो लगता ही नहीं कि वो कभी हमारे आसपास भी थे। एक दिन वसुधा गुम हो गई बगैर किसी को कुछ बताए। उस दिन बाबूजी नहीं चीखे, वो देर तक घर नहीं आई, लेकिन किसी ने FIR लिखवाने के बारे में सोचा तक नहीं। वो दूसरे दिन भी नहीं आई, परेशानी सिर्फ गिरजा को थी। बाबूजी खा पी कर अपने कमरे में ही रहे। माँ पत्थर के मुजस्मे की तरह दीवार पर जमे हुए धब्बों को देखती रही, मगर उनके मुंह पर कभी वसुधा का नाम नहीं आया। फिर देखते ही देखते एक महीना गुजर गया, नीरज और घर वालों के लिए उम्मीद से भरा महीना। उसे एक महीने में एक तूफान खामोशी से गुजर गया। वो गहरे सदमे में थी। क्या वसुधा पहले इस घर में थी? क्या वसुधा से इस घर के लोगों को पहले भी कोई लगाव था? क्या वसुधा के गुम हो जाने से कोई मतलब नहीं है इन्हें? फिर एक दिन गिरजा गुम हो जाएगी, फिर एक दिन वो भी गुम हो जाएगी, पर क्या फ़र्क पड़ेगा किसी को, उसे लगा। वसुधा ने उस रात गुफ्तगु के बाद वो पुल तोड़ दिया हो, वो सैलाब के पानी में बहती हुई दूर चली गई हो। हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं और इस ज़िंदगी में अपने लिए पुल से अलग जाते हुए रास्तों के बारे में गौर करते रहते हैं। कुछ महीने और गुजरे, गिरजा को एक लड़का पसंद आ गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, नीरज पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक दिन वो अपने पति के साथ घर आई। वो एक दुबला पतला सेल्समैन था। गिरजा ने साफ साफ कहा, जब तक माँ बाप जिंदा हैं वो कभी कभी आ जाया करेगी, किसी को भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुरा वक्त आया तो वो वसुधा की तरह घर नहीं लौटेगी, वो अपना अच्छा बुरा समझती है। एक साथ कितने पटाखे छूटते चले गए। वो बचपन के झूले पर सवार थी जहाँ वो किसी बात की परवाह नहीं करती, लेकिन वो भूल गई थी कि अगर वो लड़की पैदा हुई है तो कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। उसका ज़िंदा रहना ऐसा ही है जैसे उसका गुम हो जाना। उसे वसुधा की बात याद आ रही थी, पानी का जोर आएगा तो पुल तो टूटेगा ही। पहली बार उसे लगा, क्या उस घर को उसकी ज़रूरत है? नीरज को, नीरज के माँ बाप को या उसके माँ बाप को उसकी ज़रूरत थी? एक हौलनाक सन्नाटा उसके जहन में आबाद हो रहा था। उसने इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया था, ये उसका ज़ाती फैसला था। अब वो जॉब करेगी, नीरज का अच्छा बुरा मानने की उसे परवाह नहीं थी। थोड़ी बहुत तलाश के बाद उसने एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली, और अचानक एक दिन दफ्तर में कंप्यूटर पर काम करने के दौरान उसे एहसास हुआ कि कुछ तेज़ लहरें हैं जो अचानक इसके जिस्म में दाखिल हो रही हैं। नीरज की मौजूदगी में भी उन लहरों को कभी इसने इस तरह जागते हुए महसूस नहीं किया था। वो ये बताने में नाकाम है कि नीरज और उसके दरमियान असल रिश्ता क्या था। एक ऐसा रिश्ता जहाँ जिस्म के सवा मोहब्बत का कोई उफक रोशन नहीं होता, मोहब्बत का कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। उस वक्त कुछ लहरें थीं जो उसके अंदर गुनगुना रही थीं, मचल रही थीं। उसने नज़रें उठाई तो सामने माथुर खड़े थे, कंपनी के मालिक, 45 साल का एक खूबसूरत नौजवान। मिस्टर माथुर ने उसे अपने केबिन में आने के लिए कहा। पहली बार उसने माथुर से बहुत कुछ सीखा, जैसे ये कि ज़िंदगी तुम्हारी ही रजनी,

तुम्हें अपने हिसाब से अपनी शर्तों पे जीना चाहिए। मुद्दत के बाद उसने किसी और के मुंह से अपना नाम सुना था। उसे लगा जैसे कोई है जो उसे जानता है या जानना चाहता है। फिर कुछ मुलाकातों में माथुर से उसने अपने और नीरज के ताल्लुकात का जिक्र किया। माथुर ने कहा लगाया, हम अकेले आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं रजनी, रिश्ते नाते सब यहीं रह जाते हैं। उस रात वो घर आई तो काफ़ी खुश थी। दूसरे दिन माथुर ने अपने केबिन में बुलाया, कॉफ़ी पेश की, कुछ देर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जानती हो रजनी, छल क्या है, धोखा क्या है। दरअसल हम सारी ज़िंदगी खुद को धोखा देते हैं। धोखा सिर्फ खुद को दिया जाता है। वो कैसे सर? मोहब्बत खुद से होनी चाहिए। हम खुद से मोहब्बत करते हैं तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है रजनी। हम दूसरों की चाहतों के नाम ज़िंदगी कर देते हैं। समाज ने रिश्ते नाते रस्म रिवाज के बड़े बड़े मुजस्मे लगा रखे हैं। हम उनमें खोकर अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। ये धोखा है खुद के साथ। उस दिन पहली बार माथुर ने घर आने की दावत दी थी। वो खुद से अब कोई छल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनकी दावत को उसने खुशी से कबूल कर लिया। छुट्टी का दिन था, उसे तैयार होता देख नीरज चौंक पड़ा। उसने बताया कि बॉस ने बुलाया है, घर के डेकोरेशन का काम है। नीरज ने फिर पूछा, फिर तो एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। उसने पलट कर नीरज को देखा। नीरज ने अपनी बात जारी रखी, काम करते हुए थक गया हूँ, सोचता हूँ कुछ पैसे मिल जाएँ तो अपना काम शुरू करूँगा। उसने एक फातह नज़र से नीरज को देखा। वो वसुधा नहीं थी, उस वक्त वो गिरजा भी नहीं थी, उस वक्त नीरज भी वो नीरज नहीं था। वो उसे एक कमज़ोर इंसान नज़र आया, एक ऐसा इंसान जो खुद से छल कर रहा था। लोहे का एक बड़ा सा आहनी दरवाज़ा, दरवाजे के पास गार्ड के साथ एक पहरेदार था। नाम बताने के साथ ही दरवाज़ा खुल गया। माथुर ने शायद इसके आने की इतला दे दी थी। गेट के बाहर एक बड़ा सा लॉन, कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। गार्ड ने रास्ता बताया। उसने बंगले की खूबसूरती का जायज़ा लिया। फूलों के दरमियान पत्थरों के नायाब मुजस्मे रखे थे। उसने अंदर जाने वाले दरवाजे के पास कदम रखा। शीशे का दरवाज़ा था जो उसके कदम रखते ही खुल गया। अंदर बड़ा सा हॉल था। चारों तरफ ऊंची पत्थरों की खूबसूरत दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंगें झूल रही थीं। उसे एक औरत नज़र आई, खूबसूरत, लामा कद, जीन्स और टी शर्ट पहने, लेकिन चेहरे पर किसी मलका की तरह गुरूर। गार्ड ने उसे मेहमानों के कमरे में पहुँचाया। दो मिनट बाद ही माथुर मुस्कुराता हुआ सामने था। इधर उधर की रस्मी गुफ्तगू के बाद उस औरत के बारे में दरियाफ्त किया जो पहली बार उसे मिली थी। माथुर मुस्कुराया, वो मेरी बीवी है। वो तो बहुत खूबसूरत हैं सर। माथुर फिर ज़ोर से हंसा, तुम जिस दरवाजे से आई हो वहाँ तुम्हें बहुत से मुजस्मे नज़र आए होंगे। यहाँ भी देखो, यहाँ भी चारों तरफ मुजस्मे लगे हैं। मेरी बीवी भी एक खूबसूरत मुजस्मा है, कीमती पत्थर। वो मेरी मौजूदगी का बुरा तो नहीं मानेंगी? क्यों? माथुर हंसा, हम एलिट क्लास वाले हैं, यहाँ बड़ी से बड़ी बातों का बुरा नहीं माना जाता, बल्कि सब कुछ पहले से तय होता है। यहाँ सबको आगे जाने का रास्ता पता है और पीछे जाने का भी। हम में से कोई भी एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देता। फिर माथुर ने अपना घर दिखाया। उसे बार बार एहसास होता रहा कि हर मुजस्मे के अंदर एक ज़िंदगी है। दीवारों में बड़ी बड़ी आँखें हैं, पत्थरों में चीखें हैं। माथुर की बीवी उसे दोबारा नज़र आई, मगर माथुर की बीवी ने उससे कुछ जानना चाहा, न उसने कुछ माथुर की बीवी से। माथुर ने बताया कि घर के डेकोरेशन का कुछ काम बाकी है, वो कुछ दिन ऑफिस की जगह यहीं काम करे। उसने मंजूर कर लिया, लेकिन एक हकीकत और भी थी, वो यहाँ के मुजस्मों से डर गई थी। उसे इस बात का एहसास था कि कहीं उसे भी इस घर में मुजस्मा बनकर न रहना पड़े। वो अपने अंदर तेज़ लहरों की आहट सुन रही थी। वो घर से बहुत कुछ सोचकर चली थी, इसलिए ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ जब अपनी मर्ज़ी से इसने खुद को आवारा लहरों के हवाले कर दिया। कोई काम मर्ज़ी से किया जाए तो गम नहीं होता। उस रात नीरज ने पूछा, नए काम में उसे कितने पैसे मिलेंगे? उसने जवाब दिया, परेशान मत हो, तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। उसके बाद नीरज ने उससे कुछ नहीं पूछा, वो करवट बदल कर सो गया था। उसे वसुधा याद आ रही थी। वो एक ऐसे पुल पर खड़ी थी जहाँ कोई भी रास्ता किसी भी तरफ नहीं जाता, हर रास्ता लौट कर उसकी तरफ ही आता है। यही तो माथुर ने कहा था, दरअसल हम खुद से धोखा करते हैं। मुजस्मों के दरमियान कई दिन गुजर चुके थे। उस दरमियान उसने ये भी जाना कि बेजुबानी की भी जुबान होती हैं। पत्थर के मुजस्मे भले ही कुछ ना कहते हो, मगर उसके अंदर से निकलने वाली आवाज़ों को सुना जा सकता है। माथुर की बीवी उसे एक ऐसी औरत मालूम हुई जो जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं थी। नीरज और माथुर की बीवी में फ़र्क था। नीरज भी सब कुछ जानता था, मगर उसके सामने एक टारगेट था, बिजनेस। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसे ये भी मालूम था कि माथुर क्या चाहता है। एलिट क्लास के ये शरीफ लोग हज़ारों में एक का इंतखाब करते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई स्टिंग ऑपरेशन उनकी शराफत को बेनकाब न कर दे। यहाँ सब मुजस्मे हैं। वसुधा और गिरजा के लिए उसकी मोहब्बत जाग रही थी। वसुधा भी मुजस्मा नहीं थी, एक रद्दअमल था उसके अंदर। गिरजा भी मुजस्मा नहीं थी, उसे उन लोगों से भी हमदर्दी थी जिन्होंने

0: गुस्से में आकर अपनी बीवी या शौहर को सिर्फ इसलिए हलाक कर दिया कि इनके ताल्लुक दूसरी औरत या दूसरे मर्द से थे। कुछ लोग अभी भी बाजार का हिस्सा नहीं बने हैं, इसे भी नहीं बनना है। उस दिन वो माथुर के कमरे में थी, बरसात शुरू हो गई थी, फिर बारिश थम गई। वो कपड़े पहनकर बाहर आई तो एक मुजस्मे के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं। इतने दिनों में पहली बार माथुर के जिस्म से आने वाली बदबू का एहसास हुआ था। वो इस बदबू का साथ बहुत दिनों तक गवारा नहीं कर सकती थी। उसे यकीन था कि एक दिन माथुर उसके साथ यही करने वाला है। वो माथुर से हाउस डेकोरेशन के नाम पर एडवांस चेक ले चुकी थी। चेक लेते हुए उसके मुहोटों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। माथुर के लिए उस मुस्कुराहट को समझना आसान नहीं था। उस दिन पहली बार उसने खुद को हल्का और तरोताज़ा महसूस किया। माथुर ने मुस्कुराकर कहा था, डेकोरेशन का काम अभी कुछ दिन और चलेगा, चेक रख लो, कुछ पैसों की ज़रूरत हुई तो। इसने महसूस किया माथुर की आंखें इसके जिस्म में चुभ रही हैं। माथुर ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा। मैं चाहता हूँ अब यहीं तुम्हारे लिए कमरा बना दूँ, ऑफिस का काम यहीं से संभाल लो। वो मुस्कुराई थी। क्यों नहीं सर, जैसा आप चाहें। लेकिन उस दरमियान वो कुछ फैसला अंदर ही अंदर ले चुकी थी। आखिर वो एक इंटीरियर डेकोरेटर थी। इसके जिस्म पर कुछ पराई उंगलियों के दाग थे तो यहाँ की दीवारों पर भी उसके डेकोरेशन की निशानियाँ भी मौजूद थी। उसने नज़र भरकर आसपास के मुजस्मों पर ताराना निकाल डाली और बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने देखा माथुर की बीवी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने के बाद पोटिकों की तरफ बढ़ रही है। उसे नफरत महसूस हुई, एक जिंदा लाश जिसे उसके शौहर ने जीते जीते मुजस्मे में तब्दील कर दिया था। वो बहुत तेज़ी से फैसला ले रही थी। इस बार इससे कोई लापरवाही नहीं हुई थी। इसने माथुर की कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे मुजस्मा नहीं बनना, उसे अब अपने लिए भी जीना है। एक मुद्दत से वो अपनी ज़िंदगी भूल चुकी थी, अब उसको एक नया सफ़र शुरू करना है। इस नए सफ़र के तमाम उतार चढ़ाव के बारे में गौर करना था। घर आने के बाद एक ख़ास बात हुई। नीरज लाफिंग बुद्धा का एक छोटा सा मुजस्मा लेकर आया था। मुजस्मा उसकी तरफ बढ़ाते हुए नीरज ने कहा, अच्छा है ना, इस घर को मुस्कुराहट की ज़रूरत है। उसने मुजस्मे को बेदर्दी से ज़मीन पर पटक दिया। मुजस्मों की ज़रूरत नहीं, मुझे ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़मीन पर बेरहमी से पटकने के बावजूद भी लाफिंग बुद्धा पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उछल कर दीवार से लग गया। अचानक उसे एहसास हुआ, गोल मटोल सा लाफिंग बुद्धा उसकी तरफ ही देख रहा हो, और सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट में और भी इजाफा होता जा रहा हो।
1: अभी आप सुन रहे थे ये अफसाना, उनवान था लाफिंग बुद्धा, और ये अफसाना पेश कर रही थी मोहतरमा तबसुम फातिमा। इसके साथ ही आज का अदबनुमा प्रोग्राम ख़त्म करने की सबीहा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदबनुमा, पेश कर रही थी सबीहा फजल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशात जारी हैं। और लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज़ कर रहे हैं हेमंत कुमार के गाए 16वां साल फिल्म के इस नगमे के साथ।

0: आप सुन रहे थे कोहरा फिल्म का नगमा, हेमंत कुमार की मौसीकी में नगमा निगार थे कैफी आजमी। और लीजिए सुनिए हेमंत कुमार का गाया हुआ 20 साल बाद फिल्म का ये नगमा।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

0: बिन बादल बरसात, यह है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। आवाज़ें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, और मौसीकी तरतीब दी है खुद हेमंत कुमार ने।
1: एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा।

इजलास के मौके पर वजीर आजम मोदी, कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। आज रात जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमानुअल मैक्रों की जानिब से दी जाने वाली जियाफत में शिरकत करेंगे। सरबरा कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की मसरूफियतों में से एक अहम मसरूफियत कल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। तवक्को है दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के बारे में तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फन और सकाफत में लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की ताकत होती है। उन्होंने ये बात स्लोवाकिया के सदर पीटर पालेग्रेनी के साथ कल स्लोवाकिया के शहर ब्रातिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के फनकारों के शाहकारों समेत वाराणसी से मुतालिक नुमाइश देखने के बाद कही। इसे ब्रातिस्लावा में बनारस की एक झलक करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने स्लोवाकिया के फनकारों की जानिब से वाराणसी से मुतालिक तख्लीकी पेशकश को सराहा। वजारत खारजा ने कहा है कि यह नुमाइश वाराणसी शहर के लिए वक्फ थी, जिसमें रूहानी, सकाफती और रोजमर्रा की जिंदगी को खूबसूरती के साथ पेश किया गया। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को होने वाला है और इससे कबल सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने एक महदूद मुद्दत के लिए भारत में टेलीग्राम तक रसाई को महदूद करने के सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की हिदायत का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि ये बंदिशें नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके अगले रोज तक नाफिज रहेंगी। मस्कूरा प्लेटफॉर्म को ये हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। खांसी की रोकथाम के सिरप्स लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सरकार ने 1945 के अद्वियात से मुतालिक जाब्तों में तरमीम को नोटिफाई किया है। इसके तहत छोटे गांवों में खांसी की रोकथाम के सिरप की फरोख्त के लिए दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है। अब छोटे गांवों में भी इस तरह की सिरप की फरोख्त लाइसेंस वाले दवा फरोश ही कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने खबरदार किया है कि अगर अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की रुकनियत में तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल मेंबर मुल्कों तक महदूद रखी गई तो सलामती काउंसिल में इस्लाहात की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश पर्वथानेनी ने यह बात सलामती काउंसिल इस्लाहात से मुतालिक बैन हुकूमती मुजाकरात की मीटिंग से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल जुमरे तक महदूद रहती है तो सलामती काउंसिल की इस्लाहात निहायत नाकाफी साबित होंगी और अमलन नाकामी के मुतरादिफ होंगी। ऐसा करने से सलामती काउंसिल के पांच मुस्तकिल अरकान के फैसला साजी के इख्तियारात के ढांचे में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किया है जिसमें शहरियत, आबाई मकाम और रिहायशी पते के सबूत के तौर पर आधार कार्ड के मुबैना बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। मस्कूरा दरख्वास्त में यह हिदायत देने की अपील की गई है कि इसके इस्तेमाल को सिर्फ शिनाख्त की तस्दीक तक महदूद रखा जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज और सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को नोटिस जारी किए हैं। मस्कूरा दरख्वास्त में दलील दी गई है कि फॉर्म 6 के तहत तस्दीक का मौजूदा तरीक़ेकार नाकाफी है और इसका सहारा लेकर लोग मुनासिब और मुतालिका दस्तावेजात के बगैर चुनाव डेटाबेस में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। अमेरिका और ईरान की जानिब से तकरीबन 4 माह के तनाजे को खत्म करने के मकसद से एक फ्रेमवर्क मुआहदे का ऐलान किए जाने के बाद मगरबी एशिया में बड़े पैमाने पर कशीदगी में कमी की उम्मीदें पैदा हुई हैं, जिसे एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दोनों मुल्कों के हुक्काम ने तस्दीक की है कि एक मुफाहमत नामे पर पहले ही दस्तखत हो चुके हैं, जबकि जुमे के रोज स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में दस्तखत के लिए बाजाबता तकरीब मुनाकिद होने वाली है। तवक्को है कि यह माहिदा आबनाई हुरमुज को दोबारा खोलने, समंदरी आमदोरफ्त को बहाल करने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर हल तलब मसाइल पर 60 रोजा मुजाकरात के आगाज की राह हमवार करेगा।

0: हॉकी में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भारत एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय खवातीन ने पूल ए के अपने दूसरे मैच में जापान को 1-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत 6 पॉइंट के साथ पूल ए में सरे फहरिस्त आ गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्दे ने गैरमामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर मजबूत टीम स्पेन के साथ मैच ड्रॉ पर ख़त्म किया और कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। केप वर्दे के 40 साल गोलकीपर वोजिन्हा ने हरीफ टीम की तरफ से किए गए कई गोल बचाकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एवियान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। भारत ने अकवाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की असलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 5 बजे हैं, युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे यूथ आउटरीच कार्यक्रम की विजेता का रिकॉर्डेड कार्यक्रम। प्रतिभागी हैं अंकिता सिहाग, आइए सुनें।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी सूरतगढ़ के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूं। मैं हूं अंकिता और आज मुझे आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है जो केवल एक कम्युनिकेशन मीडियम ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है डिजिटल युग में आकाशवाणी की प्रासंगिकता। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग जैसे कई प्लेटफॉर्म्स ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। आज कोई भी खबर सिर्फ एक क्लिक दूर है। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन को देखते हैं। न्यूज से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ऐसे समय में कई लोग सोचते हैं कि रेडियो आज भी रेलेवेंट है? क्या आज भी लोग आकाशवाणी सुनते हैं? क्या रेडियो का महत्व खत्म हो रहा है? लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि रेडियो केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि एक एहसास भी है, एक ऐसी आवाज है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और यही कारण है कि इतने डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद भी आकाशवाणी आज भी लोगों के जीवन में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आकाशवाणी का इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब टेलीविजन नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तब रेडियो ही लोगों के लिए दुनिया की खिड़की था। लोग अपने घरों में शाम को रेडियो के पास बैठते थे और समाचार, गीत, नाटक, कविताएं और विभिन्न कार्यक्रम सुना करते थे। उस समय रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा हुआ करता था। आज हमारे दादा दादी और माता पिता आज भी बड़े भावुक होकर बताते हैं कि कैसे बिना का गीतमाला, चौपाल सुना करते थे और क्रिकेट कमेंट्री सुनते समय पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता था। उस दौर में रेडियो लोगों की कल्पना शक्ति को भी बढ़ाता था क्योंकि वहां दृश्य नहीं होते थे, केवल आवाज होती थी और वही आवाज लोगों के मन में चित्र बना देती थी। भारत जैसे विशाल देश में जहां अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, वहां रेडियो ने लोगों को जोड़ने का काम किया। आकाशवाणी ने हर क्षेत्र, हर भाषा और हर वर्ग के लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज भी भारत के कई ऐसे गांव

दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन रेडियो की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। एक छोटा सा रेडियो सेट भी लोगों को दुनिया से जोड़ देता है। यही कारण है कि आकाशवाणी को जनता की आवाज़ कहा जाता है। डिजिटल युग में सबसे बड़ी समस्या है झूठी और गलत खबर। दिल को छू लेने वाले इस गाने के साथ मैं लेती हूँ आपसे छोटा सा सुरीला विराम।

संगीत के छोटे से विराम के बाद हम फिर लौट आए हैं अपनी खास चर्चा के साथ। सोशल मीडिया पर कई बार खबरें फैल जाती है, लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे समय में आकाशवाणी जैसे विश्वसनीय माध्यम की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। लोग आज भी ऑल इंडिया रेडियो के समाचारों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वहाँ जिम्मेदारी और विश्वसनीयता होती है। जब देश कोई महत्वपूर्ण घोषणा होती है, चुनाव होते हैं, प्राकृतिक आपदा आती है या कोई राष्ट्रीय संकट होता है, तब रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बाढ़, भूकंप या तूफान जैसी परिस्थितियों में कई बार इंटरनेट और बिजली की सेवाएं प्रभावित हो जाती है, लेकिन रेडियो लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम करता रहता है। कोविड महामारी के समय हमने संचार की असली ताकत देखी। उस कठिन समय में रेडियो ने लोगों तक जागरूकता, हेल्थ गाइडलाइंस और प्रेरणादायक संदेश पहुंचाए। कई विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन या ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं थी, तब शैक्षिक कार्यक्रम उनके लिए बहुत मददगार साबित हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि रेडियो आज भी समाज की जरूरत है। आकाशवाणी का एक और महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना है। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण कई क्षेत्रीय भाषाएं, लोक कलाएं धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है, लेकिन आकाशवाणी ने हमेशा भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया है। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, कविताएं, नाटक और साहित्यिक कार्यक्रमों को ऑल इंडिया रेडियो ने लगातार मंच दिया है। कई महान कलाकारों की पहचान आकाशवाणी से ही बनी है। आकाशवाणी ने केवल एंटरटेनमेंट नहीं दिया बल्कि भारत की संस्कृति विरासत को सुरक्षित भी रखा है। आज भी जब हम किसी लोकगीत या पुराने कार्यक्रम को सुनते हैं तो हमें अपनी मिट्टी से जुड़ाव महसूस होता है। यदि हम ग्रामीण भारत की बात करें तो रेडियो वहाँ आज भी बहुत प्रभावशाली माध्यम है। किसानों के लिए आकाशवाणी खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं और नई तकनीकों की जानकारी प्रसारित करती है। बहुत से किसान आज भी इन कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अधिक आकर्षित है। वे स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट और यूट्यूब जैसे माध्यमों का उपयोग करते हैं। यह सच है कि रेडियो को कंपटीशन मिला है, लेकिन यह भी सच है कि रेडियो ने समय के साथ खुद को बदला भी है। आज ऑल इंडिया रेडियो केवल परंपरागत तौर तरीकों तक सीमित नहीं, अब यह मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से आकाशवाणी सुन सकता है। यह रेडियो का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इससे यह साबित होता है कि रेडियो खत्म नहीं हो रहा बल्कि एक नए स्वरूप में विकसित हो रहा है। और बातों के इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी हमने सुना प्यारा सा गीत। आइए अब बात करते हैं। FM रेडियो और RJ कल्चर ने भी रेडियो को नई पहचान दी है। पहले रेडियो को केवल इन्फॉर्मेशन मीडियम माना जाता था, लेकिन अब यह एंटरटेनमेंट और इंटरेक्शन का भी माध्यम बन चुका है। RJ अपनी आवाज और बातचीत के माध्यम से सुनने वाले के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। कई लोग ट्रैवलिंग करते समय रेडियो सुनते हैं, कई लोग अकेलेपन में रेडियो सुनते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते समय धीमी आवाज में FM सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि रेडियो में एक अपनापन होता है, एक गहराई होती है जो कि कई बार विजुअल मीडिया में महसूस नहीं होती। एक RJ के रूप में मैं यह महसूस करती हूँ कि रेडियो केवल आवाज नहीं बल्कि कंपेनियनशिप है। कभी कभी एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज किसी सुनने वाले को उम्मीद दे सकता है। एक गीत किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। यही रेडियो की असली ताकत है। आज डिजिटल मीडिया ने हमारी जिंदगी को बहुत गतिशील बना दिया है। हर समय नोटिफिकेशन, रील्स और स्क्रोलिंग चलती रहती है। लोग मानसिक रूप से थके हुआ महसूस करते हैं। ऐसे समय में रेडियो एक शांत साथी की तरह लगता है। उसमें सरलता, अपनापन और सच्चाई दिखती है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इमेजिनेशन को जीवित रखता है। टेलीविजन और सोशल मीडिया हमें विजुअल्स दिखाते हैं, लेकिन रेडियो हमें सोचने और महसूस करने का अवसर देता है। जब हम कोई कहानी या कविता रेडियो पर सुनते हैं, तो हमारा मन अपने आप चित्र बनाने लगता है। यही उसकी खूबसूरती है। भविष्य की बात करें तो मुझे लगता है कि रेडियो और डिजिटल टेक्नोलॉजी साथ मिलकर और अधिक मजबूत बन सकते हैं। पॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, AI बेस्ड कंटेंट भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं। आकाशवाणी में यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम, एजुकेशनल पॉडकास्ट और इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। इससे यह नई पीढ़ी के बीच भी और लोकप्रिय बनने की पहल कहा जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम रेडियो को केवल पुराने समय की चीज मानकर न देखें। हमें यह समझना होगा कि रेडियो आज भी समाज में सकारात्मकता, जागरूकता और एकता फैलाने का काम कर रहा है। रेडियो ने भी समय के साथ खुद को बदला है। आज आकाशवाणी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर लोग ऑल इंडिया रेडियो सुन सकते हैं। यह ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सुंदर मेल है। एक RJ के रूप में मैं ये महसूस करती हूँ कि कम्युनिकेशन केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि इमोशन भी है। एक सच्ची और संवेदनशील आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचती है। कई बार प्रेरणादायक संदेश किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आकाशवाणी ने देश को जानकारी दी है, शिक्षा दी है, संस्कृति को सुरक्षित रखा है और लोगों को जोड़ा है। यही कारण है कि डिजिटल एज में भी इसकी रेलेवेंस बनी हुई है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन इंसानी आवाज की जो भावना और अपनापन देती है वो कभी पुरानी नहीं होती। आकाशवाणी केवल एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, विश्वास और यादों का हिस्सा है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई रेडियो पर परिचित आवाज सुनाई देती है तो मन अपने आप ठहर जाता है। तो चलिए इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बेहतरीन नगमा। आप बने रहिए मेरे साथ सिर्फ इसी स्टेशन पर।

करते हैं। दोस्तों, जब हम कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो केवल मनोरंजन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी होता है कि सही जानकारी सही समय पर जनता तक पहुंचे। आज के डिजिटल दौर में सरकार और जनता के बीच संवाद का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। अब सरकारी सेवाएं और योजनाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, जिससे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं ई गवर्नेंस, पारदर्शिता और जनसंचार की भूमिका पर। आज भारत तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट ने सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना पहले से भी अधिक आसान बना दिया है। आज बिजली का बिल जमा करवाना हो या किसी सरकारी योजना की जानकारी लेनी हो, ऑनलाइन आवेदन करना हो या शिकायत दर्ज करनी हो, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव हो गया है। यही व्यवस्था ई गवर्नेंस कहलाती है। ई गवर्नेंस का सरल अर्थ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर, तेज और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना। इसका उद्देश्य है कि सरकारी सेवाएं आम जनता तक आसानी से पहुंच सके और प्रशासन अधिक जिम्मेदार तथा प्रभावी बन सके। आज भारत में डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से सरकार अनेक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवा रही है। बिजली पानी का बिल भरना, आधार कार्ड डाउनलोड करना, ऑनलाइन आवेदन करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, पेंशन सर्विसेज, बैंक सुविधाएं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, यह सब ई गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा है। ई गवर्नेंस ने लोगों का समय बचाया है। पहले छोटी सी सरकारी प्रक्रिया में बहुत समय लगता था, लेकिन अब कई सेवाएं घर बैठे उपलब्ध है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक कुशल और प्रभावी बनी है। लेकिन ई गवर्नेंस का महत्व केवल सुविधा तक सीमित नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा होती है। जब सरकार की योजनाएं, निर्णय और प्रक्रिया जनता के सामने स्पष्ट रूप से होती है, तब लोगों का विश्वास बढ़ता है। डिजिटल सिस्टम के माध्यम से रिकॉर्ड ऑनलाइन होने लगे हैं, ट्रांजैक्शन ट्रैक होने लगी है और इन्फॉर्मेशन आसानी से उपलब्ध होने लगी है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, पहले कई सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, बीच में कई समस्याएं आती थी। लेकिन आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि DBT, इसके माध्यम से सरकारी सहायताएं सीधे लोगों के बैंक खातों तक भेज दी जाती है। इसके माध्यम से सरकारी सहायताएं सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। इसी प्रकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनकी स्थिति ट्रैक भी कर सकते हैं। यह व्यवस्था प्रशासन को अधिक जिम्मेदार बनाती है। एक छोटे से विराम के साथ फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले सुनते हैं यह मधुर गीत।

संगीत के छोटे से विराम के बाद हम फिर लौट आए हैं अपनी खास चर्चा के साथ। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या केवल टेक्नोलॉजी ही पर्याप्त है? क्या केवल ऑनलाइन सर्विसेज शुरू कर देने से हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंच जाती है? उत्तर है नहीं। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल लिटरेसी यानी कि इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग करने की जानकारी ही नहीं है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है और कई बुजुर्ग अशिक्षित लोग ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे में जनसंचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन समाज और सरकार के बीच संवाद का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। इसका उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं बल्कि लोगों को जागरूक, शिक्षित और सहभागी बनाना है। जब हम जनसंचार की बात करते हैं तो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे माध्यम हमारे सामने आते हैं। लेकिन भारत में रेडियो का महत्व आज भी बहुत विशेष है। आकाशवाणी जैसे माध्यमों ने वर्षों से लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कार्य किया है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रेडियो आज भी एक विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। किसानों के लिए खेती से जुड़े जानकारी, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी संदेश और शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से पहुंच जाते हैं। जनसंचार का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों और सरकार के बीच विश्वास कायम करना। यदि जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए

कम्युनिकेशन किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आकाशवाणी और अन्य पब्लिक सेक्टर के ब्रॉडकास्टिंग चैनल की सबसे बड़ी ताकत उनकी क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता है। लोग भी आजकल ऑफिशियल जानकारी आज भी लोग ऑफिशियल जानकारी के लिए ऐसे माध्यमों पर भरोसा करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने कम्युनिकेशन की वास्तविक शक्ति देखी। उस समय लोगों में डर और भय था। सोशल मीडिया पर कई गलत जानकारियां फैल रही थीं, लेकिन रेडियो और सरकारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ने लोगों तक सही स्वास्थ्य जानकारी, सरकारी गाइडलाइंस और जागरूकता संदेश पहुंचाने का कार्य किया। माहौल को थोड़ा और सुरीला बनाते हैं इस शानदार गीत के साथ।

संगीत के छोटे से विराम के बाद हम फिर लौट आए हैं अपनी खास चर्चा के साथ। यदि हम ग्रामीण भारत की बात करें तो वहाँ ई गवर्नेंस और जनसंचार दोनों का संबंध और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार डिजिटल सेवाएं शुरू कर सकती है, लेकिन उन सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कम्युनिकेशन मीडिया ही करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी किसान को यह पता नहीं होगा कि वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सरकारी योजना का लाभ ले सकता है, तो टेक्नोलॉजी का लाभ अधूरा रह जाएगा। इसीलिए जागरूकता सबसे आवश्यक है। जनसंचार केवल सूचना देने का माध्यम ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, मतदान जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक विषयों पर मीडिया समाज को जागरूक बनाता है। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में ट्रेडिशनल मीडिया दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। भविष्य की बात करें तो ई गवर्नेंस और जनसंचार दोनों का महत्व और बढ़ने वाला है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम आम भाषा में AI कहते हैं, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग और स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रशासन और संचार दोनों को प्रभावी बनाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित हो जाए, कम्युनिकेशन का मूल उद्देश्य हमेशा एक

ही रहेगा। लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, जागरूकता फैलाना और विश्वास बनाए रखना। यदि ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी देता है, तो जनसंचार उस ट्रांसपेरेंसी को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। दोनों ही घटक एक दूसरे के पूरक हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन दोनों का उपयोग समाज के विकास के लिए किया जाए। डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा जब प्रत्येक नागरिक जागरूक और आपस में जुड़ा हुआ होगा। एक छोटे से विराम के साथ फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले सुनते हैं यह मधुर गीत।

संगीत के छोटे से विराम के बाद हम फिर लौट आए हैं अपनी खास चर्चा के साथ। यदि डिजिटल भारत का सपना सफल करना है तो सभी नागरिकों को आपस में जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। अंततः यह पूरी यात्रा सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट की है। जब सूचना, सेवा और संचार सीधे जनता के हाथ में होते हैं तो वह सशक्त महसूस करता है। आज का नागरिक केवल एक वोटर नहीं बल्कि पार्टनर है जो देश के शासन में सक्रिय योगदान दे रहा है। तकनीक के इस सेतु ने प्रशासन को मानवीय चेहरा दिया है। जहां पारदर्शिता ही सबसे बड़ा हथियार है, इसी तरह हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सुशासन केवल एक नारा नहीं बल्कि एक नागरिक की हकीकत है। ये तकनीक सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है, ये हम इंसानों के बारे में भी है। यह हमें सशक्त बनाने के बारे में है। ई गवर्नेंस और जनसंचार ने हमें एक मजबूर नागरिक से एक मजबूत नागरिक बना दिया है। हालांकि हमें अभी भी डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता पर काम करना है ताकि समाज का आखिरी व्यक्ति भी इस चमकती हुई डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सके। जब हम और प्रशासन मिलकर कदम बढ़ाएंगे तभी यही सही मायनों में सुशासन कहलाएगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी देश की प्रगति केवल टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी का लाभ आम नागरिक तक पहुंचने से होती है और यह कार्य जनसंचार के माध्यम से ही संभव है। ई गवर्नेंस प्रशासन को मजबूत बनाता है, ट्रांसपेरेंसी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आकाशवाणी सूरतगढ़ के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे यूथ आउटरीच कार्यक्रम की विजेता का रिकॉर्डेड कार्यक्रम। प्रतिभागी थी अंकिता सिहाग। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। वृक्ष जीवन का आधार है। वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए। अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराई की भाषा का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हिंदी में 6:30 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40।

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल, संध्या 7 बजे भारत भूषण के साथ। फिल्मी भक्ति गीत आप सुनेंगे 7:45 पर। फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से रात्रि 8 बजे। स्पोर्ट्स कैन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे रात्रि 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। आपके फोन कॉल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीत और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो गोरबंद आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार श्रीपाल शर्मा, कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 6:05 होने को हैं। इस समय आप सुना करते हैं सराय की भाषा का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं।

कहीं को कुड़ी मुची खुश चा करें दे, कहीं को ढेर गमा दे चा दे, कहीं दी पकी होई फसल पुसें दे, कहीं

0: ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਕੋ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की आशंका वाले जिलों की पहचान कर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर 22 जून तक रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1,54,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए, इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिला श्रमिक शामिल। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मृत्यु। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2026 की देशव्यापी तैयारियों के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। कृषि भवन में हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ संभावित अल नीनो स्थिति पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कम बारिश की आशंका है उनकी पहचान कर पहले से फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया जाए, जिससे किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कृषि मंत्री ने फसल वार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। बैठक में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज फ्रांस के एवियो पहुंचे। श्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वहीं इस महत्वपूर्ण बहुपक्षीय आयोजन में भारत 13वीं बार भागीदारी कर रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी दुनिया के विकासशील देशों का पक्ष और चिंताएं मजबूती से रखेंगे। श्री मोदी एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लेंगे। सत्र का विषय नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना है। सत्र में G7 देशों, भागीदारी देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए

बीते 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर प्रदेश में भी नीट यूजी परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था, परीक्षा सामग्री के सुरक्षित वितरण और यातायात प्रबंधन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज करने वाली खबर का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि ये दावा निराधार है।

0: परीक्षा सामग्री के सुरक्षित वितरण और यातायात प्रबंधन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज करने वाली खबर का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि ये दावा निराधार है। PIB ने ये भी स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में ई श्रम पोर्टल के लिए श्रमिकों में जागरूकता बढ़ी है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिलाएं और करीब 72,00,000 से ज्यादा पुरुष श्रमिक हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी प्रदेश में करीब 53% है, जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता दर्शाती है। पंजीकृत श्रमिक केवल एक क्लिक पर अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ सकते हैं। साथ ही ई श्रम पोर्टल रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दे रहा है। ये श्रमिकों को पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और आवास सहित अन्य सुविधाओं से जोड़ने वाला एकीकृत मंच है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए रीको और लघु उद्योग भारती के बीच आज जयपुर में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पत्थर और शिल्प की कोई कमी नहीं है, इसे उत्कृष्ट पहचान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर चुका है।
1: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर है, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्मल स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले हैं, मंदिर हैं, वो हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई देता है। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को अब और कितना ऊंचा लेंगे।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। बारा जिले के छबड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये लोग मध्य प्रदेश के गुना के निवासी थे और छबड़ा के गुगोर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। उधर बालोतरा में आज एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पाटोदी गांव के पास रोडवेज बस और कार की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार 4 भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास के पास एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर भिवाड़ी में एक औद्योगिक इकाई के निर्माणाधीन हौद की दीवार ढहने से 3 बालकों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कल दोपहर हुआ, जिसमें कल एक बालक की मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य बालकों ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज कोटा पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, समूचे प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने एनडीए सरकार की पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए इसे बदलते भारत की तस्वीर बताया।
2: मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को, सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। 7 दिन और 365 12 महीने, यानी हमारा एक निरंतर

0: में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
1: प्रेस वार्ता में मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर मौजूद रहे। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने काजरी सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। श्री सूर्या ने कहा कि आज के दौर में सूचनाओं का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है और प्रौद्योगिकी के इस समय में गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति भी पूरी दुनिया के घटनाक्रम की जानकारी रखता है। मीडिया से बातचीत में श्री सूर्या ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कल 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर अपने शुभकामना संदेश में उन्हें आत्मगौरव के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला बताया है। प्रताप जयंती के अवसर पर सलूम्बर जिले के चावंड स्थित प्रताप स्मारक पर कल विशेष कार्यक्रम रखा गया है। उधर पाली के धान मंडी में कल होने वाले जन्म जयंती समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महाराणा की राज तिलक स्थली गोगुंदा में भी विशेष आयोजन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोगुंदा पहुंचे हैं। वहीं राजसमंद की मचींद गांव स्थित राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर प्रताप जयंती के मौके पर आयोजित दो दिन का मेला आज संपन्न हुआ। सरहदी जिले जैसलमेर में नियमित और सुचारू जलापूर्ति के लिए आज 5 नलकूपों का लोकार्पण किया गया। 55 लाख रुपए की लागत से ये नलकूप गजरूप सागर स्थित परिसर में लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की आशंका वाले जिलों की पहचान कर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर 22 जून तक रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1,54,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए, इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिला श्रमिक शामिल। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। अजमेर जिले में इन दिनों धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों का क्रम भी जारी है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। वहीं आगामी मॉनसून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। गुलाब की खेती और गुलकंद के लिए प्रसिद्ध पुष्कर क्षेत्र के कड़ैल गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लिया और ग्रामीणों की समस्याएं तथा सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कड़ैल अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव में बस सेवा शुरू करने और बालिका विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण की घोषणा भी की। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पुष्कर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से नारी चौपाल, विशेष पूजा अर्चना, पौधरोपण,

0: प्रदर्शनी और प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। आमजन की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई तक जिले में शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न नगरीय निकायों, उपखंडों और वार्डों में आयोजित इन शिविरों में पट्टों का वितरण, पेंशन सत्यापन, जन आधार सत्यापन, मंगला पशु बीमा, फसल बीमा पॉलिसी जारी करने, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न काम एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं। जिले में 19वें रोजगार मेले का आयोजन अजमेर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के एसटीआई ऑडिटोरियम में किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की मौजूदगी में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रेल, गृह, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न विभागों में चयनित 558 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पुनः आयोजन की तारीख घोषित की है। ये परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले आयोजित दोनों लिखित परीक्षाओं में भाग लिया था। आयोग ने इसके साथ ही आरएएस 2026 परीक्षा का विज्ञापन भी जारी किया। 607 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 192 राज्य सेवा और 415 अधीनस्थ सेवा के पद शामिल हैं। बीते दिनों जिले में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जिगजैग पद्धति से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत फलदार और छायेदार पौधे लगाए जा रहे हैं। जनाना अस्पताल में नए कॉटेज निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हेरिटेज लाइट और सजावटी पोल लगाने के काम भी शुरू किए गए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 3 नई नियमित रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। इन रेल सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हुए हैं। उधर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 28 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर और सभागार के निर्माण काम का भी शुभारंभ किया गया। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से योग अभ्यास और योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश री शंका वाला जिला ने पिछाण कर फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करण बाबत कहो। 21 जून न उजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा न ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजण पर 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल तई 1,54,00,000 उम्बत्ता नाम मंडाई चिया, 82,00,000 उम्बत्ती महिला मजूर शामिल। और प्रदेश में फिर न्यारा न्यारा हादसा में आए 10 जना री मौत। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खरीफ 2026 री तैयारियां सारू आज नई दिल्ली में आला दर्जारा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। इस दौरान कृषि मंत्री कम बिरखा री शंका वाला जिला री ओळखाण कर फसल वार तैयारी करण सारू कहो। वे फसल वार लक्ष्य, बुआई री प्रगति और राज्यवार तैयारियां रो जायजो लीनो। मंत्री कपास री उपज बढ़ावण और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन राबारा माए चर्चा कीनी। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नियम जारी करी जिया आधार कार्ड रो बेजा इस्तेमाल नागरिकता रहवास रा पता रा सबूत रा तौर करण रा आरोप वाली एक अर्जी माथे सुनवाई करता थका आज केंद्र और राज्यों जवाब तलब कीनो। अर्जी माए आधार नंबर ने केवल पहचान सत्यापन रा कागज रा तौर वहीं काम लेवन रो हुकम देवन री अर्ज करीची है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेवन शिखर सम्मेलन में शामिल होने सारू फ्रांस रा एवियों पूग किया है। श्री मोदी लगातार सातवीं दफा जी सेवन सम्मेलन में भाग ले रहा है, जबकि भारत इनमें 13वीं दफा शिरकत कर रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों रो पक्ष और चिंताओं री बात रखेला। श्री मोदी नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनः स्थापित करना मुद्दा वाला कार्य सत्र में शामिल फैला। सत्र में जी सेवन देशों और भागीदार देशों रा नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक रा नुमाइंदा शामिल फैला। श्री मोदी कनाडा रा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात रा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सा गई मुलाकात करेला। 21 जून ने ओजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा सारू लारला 24 घंटा में 10 लाख बत्ता उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड कीना। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए रे मुजब परीक्षा माय साफ कोई बधावण और पेपर लीक री शंका खत्म करण सारू सरकार 22 जून ताई टेलीग्राम एप्लीकेशन रे जरिए ऑनलाइन संदेश भेजण माथे रोक लगा दीनी है। एनटीए रे मुजब आ रोक नीट री परीक्षा रा दिन वारा तुरंत बाद ताई लागू रहवेला। एनटीए रे मुजब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने 30 जून ताई पहलियों पोस्ट करी जिया संदेश एडिट करण रो सुबितो बहाल नी करण सारू कही चियो है। प्रदेश में आई नीट यूजी परीक्षा साफ कोई सागर करावण सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। जयपुर रा जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि परीक्षा केन्द्र माथे कानून व्यवस्था, परीक्षा सामग्री ने हिफाजत सागे पुगावण और यातायात प्रबंधन सारू पुख्ता बंदोबस्त करया जावेला। केंद्र सरकार सोशल मीडिया माथे चाल रही E20 ईंधन काम लेवन वाली गाड़ियां रा बीमा दावा खारिज करन वाली खबर ने गलत बताई है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई साफ कीनो है कि E20 ईंधन काम लेवन वाली गाड़ियां री मोटर बीमा पॉलिसियां वैध है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 बत्ता मजूर नाम मंडा लीना है। आम आए 82,00,000 बत्ते महिलावां और 72,00,000 बत्ता पुरुष मजूर शामिल है। राज्य री श्रम शक्ति माए महिलावां री तादाद करीब 53% है, जो माली और सामाजिक हलका माए महिलावां री बढ़ती भागीदारी बतावे है। ई श्रम पोर्टल माथे नाम मंडायोड़ा मजूर एक क्लिक कर और कई सामाजिक सुरक्षा योजनावां जुड़ सके है। वो पोर्टल मजूरा ने पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और रहवास समेत न्यारा न्यारा सुविधाओं जोड़े है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 सारू रीको और लघु उद्योग भारती विच आज जयपुर में करार माथे सही करी जी। इ मौके उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ कहो कि राज्य में भाटा और शिल्प री कोई कमी नहीं है, पर इन्हें ओलखाण देवण री जरूरत है। वे कहो कि स्टोन मार्ट भाटा रा कारोबार सारू दुनिया रा खास मंच रा तौर सामने आयो है।
1: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्मल स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले हैं, मंदिर हैं, वो हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई देता है। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को अब और कितना ऊंचा लेंगे।
0: राज्य में लारला 24 घंटा माए फिर न्यारा न्यारा हादसा माए 10 जना री मौत वेकी। 12 जिला रा छबड़ा हलका माए पार्वती नदी माए डूब जावणु 4 जना री मौत वेकी। पुलिस रे मुजब ए लोग मध्य प्रदेश माए गुना रा रहवासी हा और छबड़ा कने गुगोर माए एक ब्याह माए शामिल वे वणसारू आया हा। बालोतरा जिला माए पाटोदी गांव कने आज रोडवेज री बस और कार री टक्कर

0: कारण चार जना री मौत वेगी। मरण वाला चार ही जना कार माए सवार हा, जो एक ही परिवार रहा। पाली जोधपुर हाईवे मथे मंडिया बाईपास कने एक बेकाबू कार सड़क रा डिवाइडर उ टकरा जावण रे कारण दो जना री मौके ही मौत वेगी, जदके एक महिला घनी जख्मी वेगी, जिनने पाली रा बांगड़ अस्पताल माए भर्ती कराई ची। भिवाड़ी माए एक कारखाना माए बनाए जा रहा हौद री भीत ढस जावणु तीन बच्चा री मौत वेगी और तीन बच्चा घना जख्मी वेग्या। काल दोपहर व्या ई हादसा माए एक बालक री काल ही मौत वेगी ही, जदके दो बालक आज दम तोड़ तीनों। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कहो है कि नीट पेपर लीक मामला माए दोषियां रे खिलाफ कार्रवाई करी ची है और मामला री जांच करी जा रही है। वे आज कोटा माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। श्री बंसल केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका, इन्हें बदलता भारत री तस्वीर बतायो।
1: मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। 7 दिन और 365 12 महीने यानी हमारा एक निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
0: मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागरी पत्रकार वार्ता रे दौरान मौजूद रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याई आज जोधपुर पुग्या। वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन माए कहो कि मौजूदा दौर माए जानकारियां तेजियों पसरे है और बेहतर प्रौद्योगिकी रा दौर माए गांव ढाणी माए बैठा लोग ही आखी दुनिया रा हालात री जानकारी रखे है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कां सूर्या कहो कि केंद्र सरकार पेपर लीक रा वाकया माथे रोक लगावन सारू करड़ा चतन कर रही है। वह केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा वेवन रा सिलसिला माए खबर नवीसा ने सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। मेवाड़ रा महाराणा प्रताप री काल 486वीं जयंती मनाई जावेला। ये मौके राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाना संदेश माए कहो कि महाराणा प्रताप जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता था का मुगला ने मेवाड़ भगा दीना हा। श्री बागड़े कहो कि मायड़ भूमि री हिफाजत सारू वारी लड़ाई हमेशा याद रखी जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ये प्रताप जयंती रे मौके शुभकामना संदेश माए महाराणा प्रताप ने खुदरो माथो ऊंचो राखण सारू सब कुछ निछावर करते वनवाला बताया। प्रताप जयंती रे मौके सलूम्बर जिला माए चावंडरा प्रताप स्मारक माथे खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। पालीरा धान मंडी परिसर माए काल महाराणा प्रताप जन्म जयंती समारोह मनायो जावेला। इनु पहली महाराणा प्रताप रो राज तिलक वेवन रिठौड़ गोगुंदा माए आज खास आयोजन राख्यो जा रियो है। इन माए शामिल वेवन सारू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ए गोगुंदा पधारिया। राजसमंद जिला रा मचींद माए राणा पूंजा पर्यटन स्थल मा थई प्रताप जयंती रे मौके भरी जियो 2 दिन रो मेलो आज पूरो फेंक्यो। अरब मौसम मौसम विभाग राज्य माए आवता 4-5 दिन ताई प्रदेश रा कई हल्का माए आंधी और गरज चमक सागे बरसात रो सिलसिलो चालतो रहवन रा आसार जताया है। पश्चिमी विक्षोभ सागे राज्य रे ऊपर बनिया चक्रवाती तंत्र रे कारण हवा माए लगातार नमी बनियोड़ी है, इणु कई ठोणा बरसात वेवन रा आसार है। ई बीचे आज चूरू माए जोरदार बायरो बाजियो। सिंजानीपुर भीलवाड़ा जिला रा गुलाबपुरा माए झमाझम में बरसियो। बीकानेर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जैसलमेर नागौर पाली और फलौदी माए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार हूँ बायरो बाजन सागे अंधड़ चालन री संभावना है। पांचना बंधारो पानी नेहरा माए छोड़बारी मांग करता था का गैर कमांड हल्का रा किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप माए आज ही धरनो दे रहा है। किसान थोड़ी देर ताई दिल्ली मुंबई रेलवे लेन ने जाम कर दीनी, इनु अवध एक्सप्रेस गाड़ी ने थोड़ी देर ताई रोकनी पड़ी। मौका माथे जरूरी पुलिस जाप तो तैनात करी चियो है और हालात काबू माए है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश की शंका वाला जिला ने पिछाण कर फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार कर

0: बाबत कहो 21 जून ने ओजू भेवण वाली नीट यूजी परीक्षा ने ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजण पर 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 उम्बत्ता नाम मंडाई चिया 82,00,000 उम्बत्ती महिला मजूर शामिल और प्रदेश में फिर न्यारा न्यारा हादसा में 10 जना री मौत। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण श्रोता सुने अपना कार्यक्रम चौपाल भारत भूषण के साथ।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगळ्या परिवाराने भुरूभाई की घणी घणी राम राम मोकली मोकली राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत आपां भजन शुरू ही करशां एरबिंग बाद में सुनावांगा थारे आपने सुरतगढ़ का नगरीय जिको स्वच्छता पर मनिंदर सार सर जिका सफाई निरीक्षक नगर पालिका सुरतगढ़ में बाशू भेंटवार्ता करी है नवीन सिसोदिया जी। तो पहला सुना आपां भजन।

0: हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सुनो भजन, अब सुना भेंट वार्ता। मनिंदर सार सरसा गए नवीन सिसोदिया की, सुनो सा।
5: श्रोताओ राम राम। कोई भी शहर हो बिंग मायने सारों जरूरी हो सफाई व्यवस्था, सड़कों को निर्माण निर्माण वास्ता है और सफाई व्यवस्था वास्ता भी शहर के अंदर निगम पालिका आदि संस्थान जी का भी बनाडा हुआ है। अपने सूरतगढ़ शहर में नगर पालिका सूरतगढ़ वो काम संभाले करें। शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने वास्ते आज अपना आकाशवाणी सूरतगढ़ का स्टूडियो में आपा बुलाए हुए मनिंदर सार सर ने, ए स्वच्छता निरीक्षक है। तो अपने शहर में जितनी भी सफाई हुए बे सफाई कर्मचारी जितना भी है बंग ऊपर निरीक्षक लगड़ है और इस शहर की जी की सफाई व्यवस्था है बे ने देखे करें। आज आप जानांगा कि भी की प्रकार ये सफाई की व्यवस्था देखा है, बे में के सुधार करे जा सके और के जी खामियां है बयान नजर आवे और की आप आम नागरिक के रूप में सहयोग कर सका। सारों पहले तो मनिंदर जी थारो घणो ने घणो स्वागत है सा।
6: धन्यवाद
5: मनिंदर जी। आप सारों पहले यही बात पूछना चाहवा कि जी सफाई की जी प्रक्रिया है बा माने बताओ के चरणा के अंदर हुआ किया हुआ है और प्रत्येक चरण पर कौन सो कर्मचारी झुके वो काम करे।
6: देखो जी, सफाई की जी की व्यवस्था है बी के लिए सफाई कर्मचारी सुबह बहुत ही जल्दी आगे काम लग जावे और आना के पश्चात सफाई कर्मचारी झाड़ू काम और नाली निकालना वो काम करे।
5: अच्छा।
6: बी के पश्चात हमारी ट्रैक्टर ट्राली आवे, वे माने लोड करके कचरा ने और हमारा जो MRF प्लांट है वे प्लांट में ले जावे।
5: अच्छा।
6: प्लांट में ले जाने के बाद में भी कचरा को निस्तारण रिसाइकिल बिन गए दोबारा हम लोग करा।
5: ठीक है।
6: भी कचरा ना अलग अलग करना वो काम में लोग करा और जो भी काम है बड़ो MRF प्लांट के अंदर हुए। वो
5: MRF प्लांट को के नाम हुआ है
6: जिको कचरा ना रिसाइकिल बिन करना को जिको प्लांट है बिको नाम MRF।
5: कचरा ना रिसाइकिल करो थे
6: बेटा। हां जी बेटा।
5: तो अपने शहर में जहां सफाई कर्मचारी कितना है?
6: अपना शहर के अंदर 250 कर्मचारी है सफाई कर्मचारी।
5: अच्छा।
6: और स्थायी और 80 कर्मचारी अस्थायी

0: जी का काम कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो आगे ड्यूटी थे को क्या सुबह जल्दी चालू हो जाए तो जल्दी कितने बजे चालू हो जाए साहब?
0: देखो सफाई कर्मचारियों की जिसकी ड्यूटी है दो शिफ्ट में हो गए, सुबह सुबह 6 बजे ले गए 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे ले गए 7 बजे तक।
1: अच्छा,
0: गर्मी के दौरान और सर्दी के दौरान आठ ड्यूटी जिकी है, सुबह 7-11 और 2 ले गए 6 बजे तक।
1: अच्छा, तो मनिंदर जी आप यहाँ पूछना चाहा कि जहाँ थे बताया कि सफाई है बात तो सुबह हो जाए और ए सफाई कर्मचारी करे बिंग बाद में थे जी को कट्ठो कर रख दो बिना ले जाने वास्ते गाड़ियाँ लागड़ी है
0: बी के ले जाने लिए देखो ट्रैक्टर ट्रॉली को यूज करा मैं।
1: अच्छा,
0: जिका कचरा पॉइंट है बाहू कचरा चकना के लिए।
1: हाँ,
0: और घर घर कचरा जिको है बिना चकना के लिए मैं साधना को यूज करा बी में ऑटो टिपर है ऑटो होपर है ए बी अंदर यूज हुए।
1: ये टिपर और होपर में क्या अंतर हो?
0: टिपर जो है वो छोटो हुए घर घर कचरा संग्रहण हुआ भी हूँ।
1: हाँ,
0: और होपर जो है वो है बड़ो भी हूँ कचरा पात्र खाली करके और बे लेके जावे।
1: तो आपने शहर में कचरा पात्र भी रखा है?
0: अपने शहर में कई जगह कचरा पात्र भी रखे है विशेष जगह बे खाली करने के लिए। सुबह सुबह एक गाड़ी आवे ऑटो होपर वो वहां खाली करे और वहां लेके जावे।
1: आप बात करा जी, कई बार आप लोगों में शिकायत सुना कि आज हमारा कचरा की गाड़ी आई को नहीं, कचरा की गाड़ी आई को नहीं, तो लोग कोशिश करे है कि भाई आप कचरो जी को गाड़ी में डाला तो बिंग बावजूद कई बार वे समझे कि गाड़ी को नहीं आवे, कई कई दिन को नहीं आवे, तो बिंग पीछे के कारण है?
0: देखो गाड़ियों को एक बात यह है कि कई बार टेक्निकल फॉल्ट हो जाए गाड़ी के अंदर
1: अच्छा,
0: जब भी माने दिक्कत आवे। कई बार जिका हमारा ड्राइवर है वहाँ कोई घर है अति आवश्यक काम हो जावे या मान लो भी बीमार हो जावे तो दिक्कत आवे। बाकी मैं पूरी कोशिश करा कि प्रतिदिन प्रत्येक घरों में कचरो निस्तारण करा लेके जावा।
1: ऐसी गाड़ियां जी की थे बताओ कचरा आ रही है ये सारा दिन चल रहा है कि सुबह सुबह कर चल रहा है?
0: आंगो जो को टाइम टेबल है वो सुबह सुबह हो रहे हुए
1: अच्छा,
0: सुबह 6 बजे ले गए 12 बजे तक 1 बजे तक गाड़ी चले।
1: तो कचरो जी को थे आप अभी बात करा मनिंदर जी थे को कि भाई दो तरह को गिल्लो और सूखो अलग अलग हुआ है, तो गीला कचरा में क्या क्या चीज आवा और सूखा में क्या क्या आवा है?
0: देखो गीला कचरा में घर की सब्जियां होगी
1: अच्छा,
0: घर को जो सामान गिल्लो है वो गीला कचरा में आवे
1: ठीक है,
0: बिना अपना अलग रखना चाहिए। और सूखा कचरा में जो सूखी थैले हैं आजकल लोग क्या करे सबसे बड़ी बात तो है कि जिकी पोलिथीन आ रही है
1: हाँ,
0: पोलिथीन में कचरो पैक करके डाल दे गिलो सूखो मिक्स करके डाल दे
1: अच्छा,
0: क्यों माना बहुत बड़ी समस्या हो।
1: तो पॉलीथीन तो मनिंदर जी भी बैन है?
0: बिल्कुल पोलिथीन बैन है लेकिन फिर भी के शहर में मैं अभियान भी चला रहे हैं
1: हाँ,
0: इस विषय में लेकिन फिर भी पोलिथीन चल रही है। मैं बार बार आऊ निवेदन करा कि पोलिथीन बैन है आप लोग यूज ना करो ये पोलिथीन को।
1: तो
0: आप कपड़ा
1: लोग पॉलीथीन के सामान क्या लेगा वे?
0: आप कपड़ा उथेलो लेके जाओ बाजार में
1: अच्छा,
0: सामान लेगा हो फिर भी थाना अगर कोई प्रेस करे तो कोई दिक्कत कोई थाना कोई ना कपड़ा उथेलो देवे बाजार में तो माना नगर पालिका में संपर्क करो मैं व्यवस्था करवाऊंगा थाना कपड़ा थैला बांटा मैं भी बांटा
1: अच्छा,
0: और सामाजिक संस्था भी बांटे कपड़ा थैला।
1: बिल्कुल सही बात है सर। पर आप देखा कि जी मतलब सड़क पर अगर कचरो है नहीं तो भी मैं 80% ज्यादा हिस्सों जी को खिले ही है।
0: बिल्कुल आज के टाइम में सबसे बड़ी जी समस्या है जी की प्लास्टिक की सिंगल यूज थैले हैं आंगी है ये वजह सबसे बड़ी तो समस्या पशुआना हो रही है।
1: अच्छा,
0: पशु थैले जी खा जाए मान लो साइड में गिर दी खटे और पशु अगर खा गए तो भी ना बहुत बड़ा नुकसान हुए। तो मारो सब वही निवेदन है जितना भी श्रोता है कि वे लोग प्लास्टिक को यूज ना करें और बिग जगह कपड़ा की थैली को यूज करें।
1: तो कपड़ा की थैली यूज करनी चाहिए सबने। और बिंग बाद में बात करा जी थे कहो गिल्लो कचरो और सूखो कचरो जी को बिना अलग अलग रखना चाहिए। मैं तो थारू पूछना चाहूँ कि जी कई बार अपने बरसात वगैरह भी हुआ है जी तो बरसात में पानी को जी को भराव हो जाए तो बिंग पीछे के थे मुख्य वजह मानो?
0: देखो मुख्य वजह है कि आज के टाइम में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अतिक्रमण हटावा।
1: अच्छा,
0: जिसका बड़ा बड़ा नाला है
1: हाँ
0: शहर का जागरूक लगाऊ निवेदन करा बार बार कि भी आंग ऊपर अतिक्रमण हटाओ। अगर अतिक्रमण हटेगा तो बाकी सफाई होगी और बाकी सफाई होगी तो पानी निकासी बेहतर होगी।
1: ठीक है,
0: तो ये अभियान में मैं लाग भी रहा हूँ अभी काफी दिनों अभियान चल रहा है अतिक्रमण हटाने को और नाला सफाई करना को।
1: तो मनिंदर जी अतिक्रमण में क्या क्या चीज आएगा जी?
0: देखो मुख्यतः जी की बात करें आप शहर के बीच में जो अतिक्रमण है वो तो नाला नाले आगे ऊपर जी अतिक्रमण कर लियो माने रोक ली अवरुद्ध कर ली
1: जी हाँ, आगे आप घर का अगर रैंप बनावा वो भी अतिक्रमण में आएगी?
0: रैंप नियमित कुछ लिमिट में बनावे रैंप। आजकल कई लोग क्या कर रहे हैं जी रैंप बना लियो अपनी 25-30 फुट की है फ्रंट है अपनों मुख्य है तो मैंने लोग क्या करे भी मैं 5 या 4 फुट को रैंप बनावा तो जायज है
1: ठीक है
0: घर में आना जाना के लिए। लोग पूरी पूरी नाली पैक कर रहे हैं तो इस वजह के पानी अवरुद्ध हो रहे हैं और अपने शहर में पानी निकासी की समस्या
1: नाली कई लोग तो मन लगा नाली भी पैक ही कर दे पूरी।
0: हाँ नाली पैक कर दे जाए तो दिक्कत हो रही है।
1: अच्छा,
0: अभी थोड़ा दिन पहले अभियान चलाया मैं त्रिमूर्ति रोड के ऊपर भी पर लोगों ने 50-50 फुट को अतिक्रमण कर रखे भी वजह आज की रोड है त्रिमूर्ति रोड है अपना मुख्य बाजार है ये लोग भरे रहे पानी निकासी लेट हुए और बाद में नगर पालिका पर ओड़मो
1: मिले। तो थारो कहना मतलब वो है कि अगर नालियां सारी साफ हुए और एक दूसरे जुड़ेड़ी हुए तो जो बरसात को पानी भी आवे वो आप ही आप निकासी हो जाए?
0: निकासी व्यवस्था बहुत बढ़िया है शहर में यदि थोड़ा सा सहयोग आम लोग करे अतिक्रमण ना करे
1: हाँ
0: तो कोई दिक्कत ही को नहीं।

0: हो सफाई की।
1: सही बात है
0: नेपाल
1: मनिंदर जी,
0: निकल
1: मैं थारू अब ज्यादा लंबी बातचीत ना करते हुए थारू वही पूछना चाहूंगा कि आपने शहर की जितनी भी जनता थाने सुन रही है, बा वास्ते थे सफाई के वास्ते और खासकर अतिक्रमण वास्ते के संदेश देना चाहो?
0: मेरो बाहू करबद्ध निवेदन रहोगो कि आप एक तो कचरो जो है वो सड़क पर ना खिंडाओ। सड़क
1: अच्छा
0: पर अगर कचरो खिंडा होगा तो सफाई व्यवस्था में सबसे बड़ी घातक चीज है। मारी गाड़ी अगर आप तक नहीं पहुंच रही है तो आप मारू संपर्क करो, मैं आप तक तुरंत व्यवस्था कराऊंगा।
1: संपर्क कटाए नगर पालिका में करेगी?
0: नगर पालिका में करो, मेरो व्यक्तिगत संपर्क कर सके।
1: अच्छा मनिंदर जी,
0: मेरो व्यक्तिगत संपर्क करो, मैं वांगी व्यवस्था करवा के दूंगा, इस संपर्क समस्या से दूर कराऊंगा। और जल निकासी के लिए मेरा निवेदन रहेगा, शहर का जितने प्रबुद्ध लोग है वे अपना अतिक्रमण अपना स्वेता हटा लेवाए, जिको मन है अगर आना रहा है जिको मानसून के अंदर दिक्कत ना आवे।
1: जी बिल्कुल मनिंदर जी, थे शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। मैं उम्मीद करा जिका आपने सुनने लग रहे श्रोता भाई बे ये बात से समझेगा और शहर ने स्वच्छ बनाने में साफ सुथरा बनाने में आपको योगदान देवेगा और थाना भी योगदान देवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद सर।
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनी भेंट वार्ता। किसान भाइयों, सेहतमंद रहने वास्ते सबसे जरूरी है कि जी को अपना मौसम है इंगे अनुरूप आने वाला जितना भी फल है सब्जियां हैं बंग उस सेवन करने शूँ अपन लाभ हो सी। और प्रकृति भी अपने वास्ते इसी व्यवस्था निर्मित कर दी है जी के मैं हर मौसम में अलग अलग फल सब्जी जी की है वह बाजार में अपन मिल जाए। और अपने क्षेत्र की जो बात करें तो नींबू वर्गीय जी का फल है वे पूरे राजस्थान के जी को उत्तरी जिला है गंगानगर है हनुमानगढ़ है इंगमा बड़ी मात्रा के मंदिर किसान भाई जी का है वे इंगो भी जानत करे और बाग लगा रखे है। और नींबू वर्गीय जी का फल है वे अपनी खेती वास्ते आर्थिक और पोषण की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने भारत देश में तो अनेक तरीके का जी का फल है वे व्यवसायिक खेती वास्ते कराया जावे जगह में नींबू वर्गीय जी का फल है वे प्रमुख है। फलांग जे क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करा तो दूसरो और फल उत्पादन में की दृष्टि से आपनों तीसरो स्थान है। नींबू वर्गीय जी का फल हुआ वे आप जाना कि विटामिन सी वास्ते बहुत ही अच्छा स्रोत है। और इंगे सागे ही जी का फल है वे सरकरा सिट्रिक अम्ल खनिज तत्व जिया कैल्शियम हो गयो पोटेशियम हो गयो आम वास्ते बहुत अच्छा स्रोत है। नींबू वर्गीय फलों के अंदर पोषक तत्वों के सागे सागे कई बहुत ही महत्वपूर्ण जिका स्वास्थ्यवर्धक घटक है जिया फ्रेलेवन नोएड कैरोटीनोएड पैक्टिन ए पाया जावे तो यह भी बड़ा लाभदायक है। इंगे सागे ही फलों के अंदर मूल्य संवर्धन करके अनेक तरीके की जिका उत्पाद है वह आप बना सक जिया अचार है जूस है स्कैस कैंडी जैम मुरब्बो ए भी आप उत्पाद जिका है वह अपने बाजार में मिले और आप निर्मित करके देश का ग्रामीण स्तर के ऊपर जो आप बात करें तो कुटीर उद्योग रूप में आप आए गो एक अतिरिक्त साधन विकसित कर सका। इन पर और आगे चर्चा कर सीसू पहला सुन लिया एक गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सुनियो गीत। किसान भाइयों, बात करें अपन नींबू वर्गीय जी का बाग किसान भाई लगा है, तो नींबू वर्गीय जी का फल है अंगी चाहे कोई भी प्रजाति हो, वह लूण के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। तो इसी माटी जगह का माँ पीएच मान जी को है वो 8.5 हो है। भट्ठे नींबू वर्गीय फल जी का है। बिंगी जी आप खेती करा तो बिंग में कई समस्या अपने सामने आ जाए, तो इन वास्ते जटे भी यह बाग अपन लगाना है। भट्ठे गो जी को पीएच मान है भूमि को, वो 6.5-7.5 होना चाहिए और पानी की जी निकासी है बिंगी अपन व्यवस्था बढ़िया कर देनी चाहिए। और मध्यम हल्की दोमट माटी जी की है वह खेती वास्ते सब छू बढ़िया हुआ है। एक चीज़ को विशेष ध्यान रखा कि माटी की जांच जरूर करावा, क्योंकि बाग लगाने से पहले जब माटी की जांच आप करावांगा तो भी अपन एक तो ठा पड़ जाएगा कि अपनी भूमि की ताकत कितनी है। दूसरी बात कि बाग जब भी अपन लगाना है तो जमीन में 6 फुट तक कोई भी सख्त जी की परत है बार नहीं होनी चाहिए और जल स्तर जी को है वो 10 फुट छू नीचो होना चाहिए। लूण की आप बात कर ली, लूण वाली माटी होनी नहीं चाहिए, बिंग अलावा दलदली माटी नहीं होनी चाहिए। भट्ठे नींबू वर्गीय जी का बाग है वे जे आप लगावांगा तो कई तरीके की समस्या अपने सामने आ जाएगी। माटी को भी जब आप नमूनो लेवा तो बांगी विशेष सावधानी अपन रखनी है कि खेत में जे अपनी गोबर की खाद का लेडी है तो अपन 2 महीना तक माटी को नमूनो ना लेवा क्या इसी जगह जटे गोबर की खाद हुआ अपन ढेर लगाए डे जो कहना अपना कुरडी बोला तो बठू माटी को नमूनो जी को है वो अपन लेनो को नहीं। जे खेत के माँ रासायनिक उर्वरक या जिप्सम भूमि सुधार को कोई भी तरीको अपना अपनाए डो है तो बिंग है 15-20 दिन

बाद तक आपने माटी का नमूनो लेना चाहिए। पेड़ के नीचू आपने नमूनो कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर जी की जांच है वह प्रभावित हो जाए और सही जांच आपने मिले को नहीं। इंगे बुंटे ने लगान की भी तकनीक आपने विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। बियाँ तो दोबरियाँ नींबू वर्गीय जी की प्रजाति है, बिंगा बुंटा आप लगा सका एक तो फरवरी में मार्च में, बिंग अलावा अब आगे आप 15 जुलाई 15 सितंबर तक जी का फल वृक्ष है वह आप लगा सका। भूमि की तैयारी की बात करें जी आप तो खेत चटे भी नींबू वर्गीय जी का फल वृक्ष आप लगाना है वह खेत जी का अच्छी तरह पहला आप जुताई करके समतल कर लेवा। नींबू प्रजाति का जी का फल वृक्ष है वह ज़्यादा उत्पादन देवा इन वास्ते भूमि की जी की उर्वरा शक्ति है बा बढ़िया होनी चाहिए। और बाग लगाने से पहला खेत में आप हरी खाद दे दबावा। हरी खाद में आप समझा कि डेंचा है, सनई है, गुआर है, आज आप बीज गिर पुठी बा देवा तो भी हरी खाद तैयार हो जाए। जमीन के माँ कार्बन जी को है वो बहुतायत मात्रा में आपने मिल जाए और भूमि की उर्वरा शक्ति जी की है बा बिना भी ताकत मिल जाए। तो बागा जी का बूंटा है वह बढ़िया बढ़वार कर सी और बढ़िया आपने उत्पादन दे सी। बिंग अलावा रोपण में सार संभाल में भी आप विशेष तौर से ध्यान रखा। समांतर नींबू वर्गीय जी का पौधा है वह 6x6 मीटर की दूरी पर आप लगावा। और जे बाग में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है तो बस सबसे उपयुक्त सिंचाई पद्धति है बिना आप स्थापित करना चाहिए। नींबू वर्गीय जी का पौधा है वह 6x4 मीटर की दूरी पर आप लगा सका। पौधा लगाने वास्ते आप 1x1x1 मीटर आकार को एक गड्ढो जी को है वो 2 महीना ताई मई जून के माँ खोद लेना चाहिए ताकि अब जी को तावड़ो पड़े बीच हूँ एकदम सूख जाए वो। और ईसा क्षेत्र जठे माटी भारी या माटी में सख्त परत है बठे गड्ढो खोदना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाए। जिकी भूमि के अंदर परत नहीं है बंग में तो आपने इतो माँ तो मारन की जरूरत को नहीं, लेकिन जठे परत है बठे आप जरूर करा। और गड्ढे के अंदर आप 50-60 किलो जी को गोबर की सडेडी खाद है, बिंग अलावा 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 75-100 ग्राम तक क्विनाल फास, 1.5% चूर्ण गड्ढे के माँ माटी के अंदर मिला गिर आपने भर देना चाहिए। इंगी सफलता वास्ते आप आगे और बातचीत करांगा, सुन लिया एक और गीत।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनियो गीत किसान भाइयों, बात करांगा आपा नींबू वर्गीय जी का फल वृक्ष है बंगी भुंटे की रुपाई वास्ते। 20 पहला अपने कने कई मंडियां का बाजार भाव जी का है वह पुगता हुआ है, वह थाने बता दूं। सूरतगढ़ में आज जो जी की है वह बिकी है 2,050 रुपया, चीनों बिकी है 5,100 रुपया, सरसों नीचे में रही 6,972 रुपया, ऊपर में बिकी 7,240 रुपया, ग्वार का भाव रहा 5,635 रुपया। गंगानगर मंडी में आज सरसों का भाव रहा नीचे में 5,900 रुपया, ऊपर में 7,448 रुपया, चीनों बिक्यो 5,200 ले गए 5,601 रुपया। तहीं कणक का भाव रहा आज नीचे में 2,481 रुपया, ऊपर में 2,768 रुपया। ग्वार बिकी है 5,395 उन लेके 5,651 रुपया, तहीं जो बिके 2,295 उन लेके 2,305 रुपया। तहीं जैतसर मंडी में आज सरसों का नीचे का भाव रहा 6,954 रुपया, और ऊपर में बिकी 7,216 रुपया, कणक बिकी जैतसर 2,577 उन लेके 2,700 रुपया। तहीं ग्वार का भाव रहा 5,601 रुपया। राइस नगर मंडी में आज कणक बिकी है 2,441 उन लेके 2,740 रुपया, तहीं सरसों बिकी 6,951 उन लेके 7,411 रुपया, चीनों बिक्यो 5,175 उन लेके 5,546 रुपया, जो बिकी 2,250 रुपया नीचे में और 2,266 रुपया ऊपर में, ग्वार बिक्यो 5,560 उन लेके 5,612 रुपया। तहीं बात करा अपन नींबू वर्गीय भुंटे की, तो रोपाई करते समय अपन एक तो गड्ढे की जी की सतह व जमीन एकदम बराबर होनी चाहिए या ऊंची होनी चाहिए। पौधे की सिंचाई करते समय करने के बाद में गड्ढे की जी की माटी है वह नीचे नहीं बैठनी चाहिए। इन वास्ते जब भी आप गड्ढो बनावा तो इन पहला चौकी तरियाँ पानी छू भर दें, ताकि जितनी भी माटी है वह नीचे बैठ जाए और जितनी जरूरत पड़े अपन माटी आप और गाल दें। भी गड्ढे के अंदर पौधे ने भीतों ही दबावा, जितो आपने नर्सरी गमा जी को पोलथीन के अंदर आपने दबेड़ो मिले बुंटो भीतों ही आपने बुंटे ने भूमि के अंदर दबाणुए। आ छोटी छोटी बातों को आप विशेष ध्यान रखा। गड्ढे के अंदर पौधे ने एकदम सीधो लगानो चाहिए, जे जरूरत पड़े आपने तो आप बिंग पर लकड़ी को सहारो दे के या छोटी डंडी को सहारो दे के बिना एकदम सीधो लगा देना चाहिए। भुंटो गड्ढे में जब आप लगावा तो बिंसू ठीक पहला पौधे की जी की जड़ है बिंसों खितरियाँ साफ कर लिया, क्योंकि बिंग में लिपटेडी जी की घास हो पोलिथीन हो बिना आपने अलग कर देनी चाहिए, और भुंटो हमेशा आप शाम के समय ही लगावा, और लगाते ही बिंग अंदर आप पानी देना है। नए बागांगे जी की बाढ़ है जी का किसान भाई लंबे समय बाग लगा लग रहे हैं, वह तो विशेष तौर से ध्यान रखे के बटे जी की उत्तर और पश्चिम जी की दिशा है अपने खेत की, बटे आपने अर्जुन गो, शीशम गो, देसी आंवले गो, जामुन गो या बेल लगा के आप वायुरोधक तैयार कर देना चाहिए, और बारिश के दौरान पौधों कने पानी जी को इकट्ठो ना हो इन वास्ते जल निकास की व्यवस्था आपने करनी चाहिए, और बाग जी के चारों तरफ है एक खाई पट देनी चाहिए लगभग 3-3.5 फुट जी की चौड़ी हुए, ताकि अगर पानी बिरखा जी को पानी है बहुत ज़्यादा आवे तो वो बिंग में बेड़ो हो जाए, और बाग में आप मूंग गवार चनों मेथी की फसल भी अंतराशय में लेस का। तो आ चीज़ों का विशेष ध्यान रखा आज समय तो ही, अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे

सिग्नल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर। रात्रि के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए फिल्मी भक्ति गीत सुनिए। आइए इसमें सबसे पहले सुने लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों को लगान फिल्म में। गीत रचना जावेद अख्तर की, संगीत ए आर रहमान का।

महान गीतकार और लेखक प्रदीप के गाए इसी गीत के साथ फिल्मी भक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज फिल्म जगत के महान और लोकप्रिय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिवस है। मिथुन चक्रवर्ती एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक बेहतरीन उद्यमी भी थे। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म मृग्या से की, जो 1976 में आई और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1980 के दशक में अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में आई उनकी फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। तो आज उनके जन्म दिवस पर उनकी इसी फिल्म के गीत हम आपको सुनवाएं। आइए सुनें।

अनजान का लिखा पप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया हमारी आज की फिल्म डिस्को डांसर का ये गीत अभी आपने सुना। साथियों, मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में

मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृग्या से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। अपनी पहली फिल्म के बाद कुछ फिल्मों में जैसे अनजाने, दो अनजाने, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, इन फिल्मों में आपने सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इन फिल्मों में आपको कोई बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई। रविकांत नगाइचे के निर्देशन के बनी फिल्म सुरक्षा और हम पांच वारदात, जो कि एक बेहतरीन फिल्में इनके लिए साबित हुई। अंत में उन्हें बड़ी सफलता मिली म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से, जो 1982 में आई, और हमारी आज की फिल्म भी यही है। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। आज भी लोग इस फिल्म के गीतों को पसंद करते हैं, और साथ ही साथ फिल्मों के साथ साथ दूसरी जो म्यूज़िकल फिल्में थी, मसलन कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस, इन फिल्मों ने भी उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठा दी। 1980 के दशक के दौरान आपने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे मुझे इंसाफ चाहिए, प्यार छुपता नहीं, स्वर्ग से सुंदर, प्यार का मंदिर, इन फिल्मों में आपकी मुख्य भूमिका थी, और इन फिल्मों की गिनती आज भी एक सफल व्यावसायिक फिल्मों में की जाती है। बहरहाल आज की फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवाएं।

बप्पी लहरी की आवाज़ में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना हमारी आज की फिल्म डिस्को डांसर में। क्योंकि आज इस फिल्म के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिवस है। मिथुन चक्रवर्ती ने वांटेड, बॉक्सर, जागीर, जाल, वतन के रखवाले, कमांडो, वक्त की आवाज़, गुरु, मुस्लिम जैसी अनेक एक्शन हीरो वाली फिल्में भी आपने अभिनय किया। आपकी छवि एंग्री यंग मैन की बनी जो समाज में बुराइयां और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लड़ता है। मिथुन चक्रवर्ती ने न केवल एक्शन फिल्में की बल्कि इसके साथ साथ व्यावसायिक सफलता भी आपने हासिल की। समालोचकों से आपको काफ़ी प्रशंसा भी मिली। मृग्या, तहादेर कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें दो फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार आपको मिला। जल्लाद फिल्म में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार आपको मिला। इसके अलावा प्यार का मंदिर और मुजरिम जैसी फिल्मों में आपके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा हुई। बहरहाल आइए

इसी गीत के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, स्पोर्ट्स स्कैन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं, हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ कार्यक्रम में है हर मैच का ताज़ा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक डिटेल्स के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने, कल खेले गए सभी चार मुकाबले ड्रॉ। भारतीय टीम FIH हॉकी विमेंस नेशन कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हुआ। थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ करेंगे भारतीय चुनौती का नेतृत्व। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी, और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाएगा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं वायरल फुटबॉल फीवर के साथ, जहां पूरी दुनिया के ऊपर फुटबॉल का ये खुमार सर चढ़ के बोल रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के न्यू जर्सी में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात्रि 12:30 बजे से शुरू होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे के करीब खेला जाना। इससे पहले कल फीफा विश्व कप में कई उलटफेर देखने को मिले। विश्व कप में 68 साल बाद एक ही दिन खेले गए 4 मुकाबले ड्रॉ रहे।
1: फीफा विश्व कप 2026 में कल इस सत्र का सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया, जहां केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए विश्व कप की प्रबल दावेदार स्पेन को गोल रहित बराबरी पर रोक दिया, और इस मैच के हीरो केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा रहे, जो एक ढाल की तरह गोल कोस्ट पर डटे रहे और कई गोल बचा कर टीम की रक्षा की। इस मुकाबले के बाद वोजिन्हा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: For this moment, for this dream, a lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve. Many of ex football player from national team, and now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot.
1: एक और ड्रॉ मुकाबले ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही। कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेला गया ये मैच बेहद रोमांचक रहा, जहां न्यूजीलैंड ने एलिजा जेस्ट के 2 गोलों की बदौलत पहले 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन ईरान ने शानदार पलटवार करते हुए 2 गोल दागे और मुकाबले को ड्रॉ करा दिया। दिन का तीसरा ड्रॉ मुकाबला सिएटल स्टेडियम में बेल्जियम और मिस्र के बीच देखने को मिला, जहां कांटे की टक्कर वाला ये मुकाबला 1-1 के बराबरी पर समाप्त हुआ। मिस्र विश्व कप में अपनी पहली जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन बेल्जियम के वैकल्पिक खिलाड़ियों के त्वरित जवाब ने उसे निराश कर दिया। मिस्र के इमाम अशूर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अमेरिका के मियामी स्टेडियम में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच ग्रुप एच का पहला मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। वहीं सऊदी अरब के लिए अब्दुल्लाह अल अमरी ने 41वें मिनट में रिबाउंड पर गोल किया, जबकि उरुग्वे के मैक्सी अराउजे ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ये फीफा का मंच है, जहां रोमांच, उम्मीदें, जज्बा और हुनर हर संभावना को नतीजे में बदलने की क्षमता रखता है। और अब US के बाद चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी विमेंस नेशन कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज पूल ए के मुकाबले में जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की की।
3: It's going to go to core again. It is. And it's there. India have hit the lead.
4: भारत ने पहले ग्रुप मैच में अमेरिका पर मिली रोमांचक जीत का सिलसिला आज ऑकलैंड के नॉर्थ हार्बर नेशनल हॉकी सेंटर में भी जारी रखा, और FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप के अपने दूसरे पूल ए मैच में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कप्तान सलीमा टेटे ने 33वें मिनट और लालरेम सियामी ने 49वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जापान के लिए एकमात्र गोल हिरा मित्सू ए ने 35वें मिनट में किया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 33वें मिनट में मिले एक पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर अपना खाता खोला। नवनीत कौर के शॉट को निक्की प्रधान ने सलीमा की तरफ धक्का

खेला, जिससे कप्तान ने बिना कोई मौका गंवाए गोल पोस्ट में भेजकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके ठीक 2 मिनट बाद जापान की हिरामित्सु ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के आखिरी क्वार्टर में 49वें मिनट में सुशीला चानू पुखरामबम ने सर्कल के किनारे से गोल की और एक तेज पास दिया, जिसे एक बेहतरीन गोल में बदलते हुए लालरेम सियामी ने भारत को जीत दिलाई। कप्तान सलीम टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम इस जीत के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत के 6 अंक हो गए हैं। भारत अब टूर्नामेंट के अपने आखिरी पूल ए मैच में 18

0: जीत दिलाई। कप्तान सलीम टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम इस जीत के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत के 6 अंक हो गए हैं। भारत अब टूर्नामेंट के अपने आखिरी पूल ए मैच में 18 जून को उरुग्वे से भिड़ेगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार खेल से वापस एक बार फॉर्म में वापसी का शंखनाद कर दिया है। और अब बात बैडमिंटन की। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हो गया है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ मकाऊ में देश की चुनौती की अगुवाई करेंगे।
2: युवा भारतीय बैडमिंटन टीम मकाऊ ओपन में देश की अगुवाई के लिए तैयार है। आगे आने वाले एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए कई दिग्गज खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता से आराम दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी का स्टार जोड़ी शामिल है। इन बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम का पूरा दाबोदार युवा और उभरते खिलाड़ियों पर है। पिछले साल मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थरुन मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स टीम की अगुवाई कर रहे हैं। अनुभवी किरण जॉर्ज, ऋत्विक संजीवी और शंकर सुब्रमण्यम भी इस दल का हिस्सा है, जबकि रौनक चौहान ने आज अपने दोनों क्वालिफायर मुकाबले जीतकर मुख्य ड्रॉ जगह बना ली है। महिला सिंगल्स की कमान ईशा रानी बरुआ के हाथ में है, जिन्हें अनमोल खरब और तस्मीन मीर का साथ मिलेगा। आकर्षी कश्यप, रक्षिता रामराज, श्रेयंसी बली शेट्टी, मानसी सिंह, श्रेया लेले और अश्मिता चालिहा भी भारतीय महिला सिंगल्स टीम का हिस्सा है। अगर डबल्स की बात की जाए तो भारत की एकमात्र पुरुष डबल्स जोड़ी और तीनों महिला डबल्स जोड़ी आज पहले ही दौर में बाहर हो गई। मिक्स्ड डबल्स में 5 भारतीय जोड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय सेटलर है जिन्होंने मकाऊ ओपन जीता है। सिंधु ने लगातार 2013 से 2015 तक लगातार 3 बार ये खिताब जीता था। अमीशा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो नए जज्बे के साथ भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन के कोर्ट पर धमाल मचाने को तैयार हैं। और अब बात की जाती है फिट इंडिया की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल मुंबई के वर्ली सर्किल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि यह आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। मुंबई के सुरमय समुद्र तट के मनोरम दृश्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 250 साइकिल चालक श्री मांडविया के साथ साइकिल चलाते हुए फिट इंडिया का संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी हो जाएगा। और अब बात की जाए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम की, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में चल रहा है। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है।
3: आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद हरमनप्रीत की विमेंस इन ब्लू के हौसले बुलंद हैं। दूसरे मुकाबले में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ग्रुप ए का ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से लीड्स के हेडिंगले मैदान में खेला जाएगा। एक तरफ जहां भारत ने 64 रन की विशाल जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। हरमनप्रीत की आर्मी के लिए इस मैच की राह काफी हद तक आसान नजर आ रही है। पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाली उप कप्तान स्मृति मंधाना से टीम को फिर एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी और टीम को अपनी दूसरी सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा से इस मैच में बड़े स्कोर की चाह रहेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की नज़र अच्छी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने पर होगी, जबकि पहले मैच में कुछ खास न कर सकी जेमिमा रॉड्रिक्स और भारती फुलमाली नीदरलैंड्स के सामने वापसी करते हुए फॉर्म हासिल करना चाहिए। पहले मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान को पस्त करने वाली दीप्ति शर्मा पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिनको श्री चरणी का भरपूर साथ मिलेगा। अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल भी गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम को मजबूती देती नजर आएंगी। इस दौरान BCCI ने टीम के लीड्स पहुंचने का एक वीडियो साझा किया। इसमें अपनी साथी अरुंधति रेड्डी के बारे में उप कप्तान स्मृति मंधाना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: She also keeps motivating me to do the right things in terms of my preps and doing the right things on the ground.
3: भारतीय टीम के लिए ये मौका बेंच पर बैठे अपने खिलाड़ियों को आजमाने के लिए भी अच्छा अवसर है। दूसरी तरफ अपना पहला T20 विश्व कप खेल रही नीदरलैंड्स ने पहले मैच में

0: प्रदेश के खिलाफ अच्छा मुकाबला खेला था, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा। टीम की उम्मीदों का दारोमदार कप्तान और विकेटकीपर बेबे डी लीडे के कंधों पर है, जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक की पारी खेली थी। उनके अलावा टीम को आयरिस ज्वेलिंग, हेटर सीजर्स, सिल्वर सीजर्स और कैरोलिन डी लैंग से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों का सामना करने से पहले भारतीय टीम की नज़र नीदरलैंड्स पर एक बड़ी जीत दर्ज कर ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और हरमनप्रीत की आर्मी के दूसरी तरफ शुभमन गिल एंड ब्रिगेड भी एक ऐसी ही बड़ी जीत की राह में लखनऊ पहुंच चुकी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाना है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इस श्रृंखला को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं मेहमान टीम अफगानिस्तान की नज़र ये मैच जीतकर श्रृंखला में वापसी करने पर होगी।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। धर्मशाला में अफगानिस्तान के ऊपर शानदार जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू कल सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और खेल के हर मोर्चे पर मजबूत नजर आ रही है। कप्तान शुभमन गिल का बल्ला आईपीएल के बाद न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच और फिर पहले एक दिवसीय मैच में भी रनों का पहाड़ खड़ा करता नजर आया, जिनको इन फॉर्म केएल राहुल का बखूबी साथ मिल रहा है और दोनों खिलाड़ी लगातार रन भी बना रहे हैं। हिटमैन रोहित शर्मा पर भी दर्शकों की नजरें होंगी। रोहित पहले एक दिवसीय मैच में दुर्भाग्यशाली रहे थे और 16 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे। पिछले कुछ एक दिवसीय मुकाबले को देखें तो रोहित का बल्ला शांत नजर आया है। ऐसे में 2027 विश्व कप की राह तलाश रहे रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भी अच्छे फॉर्म में है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्षेत्र में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो धर्मशाला में अपना डेब्यू करने वाले स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बरार से भी टीम को उम्मीदें होंगी, जिन्होंने अपने पहले मैच में 3-3 विकेट चटकाए थे। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में उनका साथ देते दिखेंगे। ये श्रृंखला भारत के लिए 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। में इस टीम की नजर हर मैच में अपना मनोबल बढ़ाने और बेहतर कॉम्बिनेशन तलाशने पर होगी। अगर मेहमान टीम अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनकी नजर किसी भी हालत में इस मैच को जीतकर श्रृंखला में वापसी और बराबरी करने पर होगी। पहले मैच में शतक बनाने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी लय में हैं। राशिद खान, अजमतुल्ला उमरजई और इब्राहिम जादरान से भी मेहमान टीम को उम्मीदें होंगी। अगर ये खिलाड़ी चलते हैं तो भारत के लिए काफी हद तक मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम की नजर तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए चेन्नई पहुंचने से पहले ही सीरीज अपने नाम करने पर होगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर होगी कि तीसरे मैच से पहले श्रृंखला को अपने नाम कर लिया जाए। वहीं दर्शकों की नजर होगी कि इस बार धर्मशाला की तरह बारिश इस खेल में कोई खलल डालती हुई नजर ना आए। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक नई दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी सीए भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली 24 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति

0: से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने

0: निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1,000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग

0: 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: No terror act in India would go unpunished.
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके फ़ोन कॉल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीत और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो कोरबंत। कार्यक्रम के प्रस्तोता श्रीपाल शर्मा और संयोजक नवीन।

0: कवे के धोरा तप गया ताप स्यों धरती तप गई सुत धान, धोरा तप गया ताप स्यों धरती तप गई सुत धान, नैन उड़ी के बादली कद बरसे भगवान।
1: अरे काली पीली बादली रे मारे ऊपरिया कर जाए, अरे काली पीली
0: बादली। धोली रुई फैलसी गुलगुल भूरी होय, धोली रुई फैलसी गुलगुल भूरी होय, बरस घटा बन बादली मुर्दर जानी कोय। के आबे अमुजी बादली घरा अमुजी नार, आबे अमुजी बादली घरा अमुजी नार, धरा अमुजा धोरिया हर परदेसा भरतार।

0: हॅलो गोरबंद कार्यक्रम सुनी हे सगळे परिवाराने आज श्रीपाल सारस्वतरा मोकळा मोकळा राम राम सा लिओ सा हाजिरा थारी मनपसंद गो हिवडे शिवून जुडेडो कार्यक्रम हॅलो गोरबंद ले कार्यक्रम री शुरुआत करा के देखो सा अब जकी आ रुत चालन लाग रही है आपणो रंग रंगीलो जको राजस्थान है नी इंगे मां आंधी मे बिजली गरज सारो की रुत गए हिसाब चाले सा एर कदी कदी बड़बड़ती लाए भी चाले तो आपने गर्मी में बचाव रखना चाहिए और बरसात के माँ बरसात को जो पानी हुए बिंगो सदुपयोग करना चाहिए। उम्मीद करा कि ईश्वर इंद्र भगवान जो है वो आपने जरूर खुशियां देसी बारिशां देसी खेती भी अच्छी हुसी किसान भाइयों की उम्मीदा जी है वह भी भगवान पूरी करसी और खेती के पानी के सागे सागे आपने सारो ही जो पानी है पीने को पानी है नहाने को पानी जल को जो पानी को जो बचत है नहीं वह करनी बहुत ही जरूरी है ऐसा क्योंकि आज तो देखो ते सब जानी जान हो ये बात की पिछाण रखो कि आपने पानी की कितनी जरूरत है और पानी को महत्व जो है वो कितो को है तो पानी बचाणो सारों जरूरी है। रब है ओ फोन देखा किरो आवे और करा बातचीत। हेलो
1: राम राम जी।
0: राम राम जी कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
1: राम राम जी और सुनाओ क्या हाल श्रीपाल जी तगड़ा हो गए
0: बढ़िया मौज में थे बताओ पहले नाम बताओ सा सारे सुनने वाला ने
1: नाम लखवाली एडू मस्त बाहुलाल कृष्णा सौरभ विशाल लक्षिता नव्या राजबाला मोहम्मद रफीक जी और संगत मुकना राम जी मारता कहता महावीर लोरा जी सके
0: वाह जी वाह।
1: डेढ़ महीने हो गए साहब फोन लगाया आज लगाया डेढ़ महीने के बाद में।
0: अच्छा
1: नाराज ना हो जी।
0: नहीं नहीं नाराज को नहीं कोशिश आई हुए के भी चलो एक महीने तक नहीं करे तो सारे सुन को नंबर आ जाए
1: दूसरा भी मौका मिले।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: नहीं महीने बाद में आवा मार तो जी को लगे बिना
0: कार्यक्रम सुनो तो थारो बिल्कुल जी लगे को
1: प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लगे
0: आज के सुनाओ
1: आज काली पीली बात भी सुनाओ।

0: राम राम भाई जी।
1: राम राम जी, राम राम। कार्यक्रम हेलो गोरबंद, कौन बोलो सा?
0: कृष्ण लाल आचार्य गाम लखा कुमु बोलो सा।
1: वाह जी, आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है थारो कार्यक्रम के माँ। कितने समय के बाद में थे फोन कर रहे हो कार्यक्रम के माँ?
0: फोन कम 4-5 महीना हो गया, फरवरी में करे हो।
1: और बताओ, घर परिवार और सब ठीक है?
0: हाँ, माता जी जानी देवी आचार्य है, ठीक है। नेताऊ जी खैली राम आचार्य बढ़िया है। और आपने कॉटन सिटी चैनल का श्रोता दृष्टि फोन लगा लू आज कल दे बोलना आ रहे नहीं की बेटा।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: हा, नंबर मेरा याद है 220-992 220-993 याद है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप बहुत बड़ी बात है।
0: और आप विकास भाई जी निर्वाणी तरह सारा ठीक है?
1: बिल्कुल, सारो आकाशवाणी परिवार बहुत बढ़िया है। और थारे सागे जद बात हुए तो बहुत ही अच्छो लागे। वो एक थारो हौसलो है, थारो जज्बो है। और
0: आज तो कबीर जी क्यों नहीं कल करता सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परले होई सी फेर करे नो कब।
1: बहुत बढ़िया बात है, साव सच्ची बात है साथारी। तो आज के सुनावा थाने?
0: और इतनी बात होगी भाई जी, औरंग में भी नंबर लागना चाहिए। बढ़िया कॉटन सिटी में भगवान सुख शांति रखे, सारा राजी रखे। जन कोई गीत थारी पसंद को मारी पसंद ही है।
2: हेलो।
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं सुल्तान बोलो टाउन जी।
1: सुल्तान जी?
2: हाँ जी।
1: वाह जी वाह, घणो सारो स्वागत है तारो कार्यक्रम हेलो गोरबंद के मा।
2: मैं नियमित श्रोता थारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नियमित श्रोता हो सा, इमें कोई मीन मेख नहीं है थारी बात के मा। सुल्तान जी, कार्यक्रम बढ़िया लागे थाने?
2: हाँ बहुत बढ़िया।
1: आज के सुनावा थाने?
2: आज माने भजन राम निवास राव की।
1: राम निवास राव की आवाज में?
2: नाम है अरबन से मेरो लड़को बनवारी कोपी पोतो ननंद रे बोती है मीनाक्षी।
1: सुनो सा थारी पसंद को ओ भजन।

0: हेलो,
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
0: राम राम जी, शिरपाल जी।
1: राम राम जी, घना सारा राम राम।
0: मैं कुलदीप कुमार जी बोल रहा जी, गांव डंडवाड़ा न मानता हूँ, हाजिर
1: वाह
0: का
1: जी,
0: हूँ।
1: वाह जी वाह। कुलदीप जी, बहुत सारो स्वागत है थारो कार्यक्रम के मां।
0: थारू जी और जी बढ़िया
1: और बहुत बढ़िया है, थे बताओ।
0: जी बढ़िया। मैं पानी किसे मैं पानी किसे हो जी थारा है।
1: मैं पानी, देखो आस लगा रखी है और
0: मार तो कोनी बरसे जी कार।
1: बिल्कुल आपने अठे भी कई चीजें बरसात हुई है, छांटा छिड़का हुआ है और
0: मारे तो
1: बरसात
0: बहुत हो
1: पड़ेगी।
0: गई जी बरसात काल।
1: तो आज के सुनावा थाने?
0: आज मैंने बाबा हनुमान जी को भजन सुनाते हो जी।
1: बिल्कुल, थाने हनुमान जी को भजन जरूर सुनावांगा।
0: मैं कुछ नाम देना चाहूंगा जी।
1: हाँ ले उसा।
0: मेरा पापा जी ठाकर राम, मेरी मम्मी परमा देवी, मेरे भाई कमलजीत और भी कई जना सुने करा जी प्रोग्राम में। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है जी। एक रजुनाई भी भाषा के प्रोग्राम सुने करा है जी,
1: अच्छा।
0: मनीष छापरवाल सुने करा है और कई जना प्रोग्राम है सारा सुना जी। मिल गए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा है सारो।
1: वाह जी वाह। तो सुनो सा, सारा मिल गए ओ भजन।

0: हेलो,
1: राम शिवपाल जी।
0: राम राम जी। कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
1: हेलो गोर, मैंने हिराड़ी वाला पहुंच गया जी।
0: वाह जी वाह, हिराड़ी वाला का स्वागत ऐसा घणो सारो।
1: बहुत खुशी है जी। माने भी एक तो एन महीने बाद पूरा मिन के फिर ही प्रोग्राम में पहुंचा जी।
0: पक्की बात है, सच्चा बोलो?
1: पक्की है जी। अब तो हिस्सा ही जी, अब ने समझ सका तो फिर तो मारी गल आई।
0: बता दियो, थे सच्ची बात बता दीजिए, नहीं तो मैं रजिस्ट्री में नाम देख लूं। लो महीने का मां। देखो सा, आ भी आपने सारे सुनने वाला सोता जी का भाई बहन है, बा वास्ते के सारा मुझे को नंबर है वो लाग जे, तो बारी बारी हूँ जी फोन करता रहे, तो सब जगह है वह कार्यक्रम में शामिल हो जाए और बातचीत भी हो सके।
1: जी।
0: तो सारा पहले आपने सुनने वाला ने थारो नाम बता दियो,
1: सुभाष गुजारा निमी श्रोता बोलने लाग।
0: अरे थारे सागे जगह और कार्यक्रम सुनने लाग रहे, बंगा भी नाम थे ले
1: हाँ जी,
0: सको।
1: हमेशा ही हुआ जी। घर वाली बिमला देवी, बच्चे इंदु वाला, पार्वी देवी, लड़का हिमांशु, सरवण जी रिणवा, पक्का श्रोता है जी। कवे भी रणजीत जी किरोड़ीवाल, मनीराम, विनोद जिंजा, पवन जिंजा, डॉक्टर राजू, सब सागर है जी।
0: तो आज के सुनाओ थाने।
1: वैसे तो जी गोरबंद में हमेशा ही सारा ही लोकगीत बढ़िया हुआ है,
0: हाँ जी हाँ
1: पर
0: जी,
1: आज फिर कालू राम प्रजापति की आवाज में कोई भी लोकगीत सुनाओ।
0: बिल्कुल सा। हेलो,
2: हेलो गौरबंद,
0: हाँ जी कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
2: मैं गांधीर माना छू, जगदीश शर्मा बोलूं साहब।
0: वाह जी वाह, जगदीश जी घणो सारो स्वागत है थारो कार्यक्रम का माँ।
2: थारो भी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आभार
0: जगदीश जी, कार्यक्रम तो थे लगो लग सुनो ही हो, थे रेडियो का बहुत पुराना श्रोता हो, ये मैं तो कोई मीन मेक है ही कोनी।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: कार्यक्रम का माँ फोन भी थे, उम्मीद करा के भी 1 महीने बाद ही करे उसी।
2: नहीं सर, मैं काफी टाइम हो चुके हूँ मैंने।
0: अच्छा

0: करे मैंने ठीक ठीक याद है तो 3-4 साल ही मानो।
1: वाह साहब, और इतने समय के बाद में थे कार्यक्रम में फोन करिए।
0: हाँ मैं फोन कम करूं और सुनूं जरूर हूँ।
1: सुनो, बहुत अच्छी बात है सा। तो सुनो तो बिंगे सागे सागे, कदी कागज है, कदी मेल है, कदी थारो फोन भी आ जाए,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: क्या हुआ कि
0: पक्का
1: आपस में बातचीत हो जाए तो
0: हाँ
1: पतो भी चले, आछो भी लागे। एर
0: जी।
1: अभी
0: मैं अब सूरतगढ़ होंगे वो काल परसों, तो मैं 200-300 पत्र खरीद के ले हूँ। सही बात तो आए।
1: वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात है
0: जी
1: कि ई दौर के माँ देखो
0: जी
1: तकनीकी युग है। अभी देखो जेका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी फरमाइश को कार्यक्रम जेका है वह भी शुरू कर
0: जी
1: रखे है, ईमेल पर भी
0: बिल्कुल।
1: कार्यक्रम चलने लाग रहे हैं, और पत्रा पर तो चलने लाग ही रहे यार फोन।
0: पत्रंग अलग ही एक आनंद है।
1: बिल्कुल सा बिल्कुल, इन वास्ते सारी जेकी फरमाइश है वह अपने आकाशवाणी कोटन सिटी चैनल के ऊपर पूरी हुए, चाहे वह पत्रा हुए, चाहे वह
0: जी
1: मेल हुए, चाहे वह फोन हुए, और चाहे वह व्हाट्सएप हुए। तो आप बहुत
0: जी
1: अच्छी
0: जी
1: बात है सर। कार्यक्रम गए माँ थे अलग अलग कार्यक्रम सुनो ही हो, तो कोई बात जे सुनने वाला ने बतानी चाहो कह सको सर।
0: हाँ मैं आज इस मंच के माध्यम कहना चाहूँ कि रेडियो बेशक कम हो गयो।

0: सारी जकी फरमाइश है वे आपने आकाशवाणी कोटन सिटी चैनल के ऊपर पूरी हुए, चाहे बा पत्रा हुए, चाहे बा मेल हुए, चाहे बा फोन हुए, चाहे बा व्हाट्सएप हुए, तो आप बहुत अच्छी बात है सर। कार्यक्रम गए माँ थे अलग अलग कार्यक्रम सुनो ही हो तो कोई बात जे सुनने वाला ने बतानी चाहो कैसे को सर।
1: मैं आज इस मंच के माध्यम कहना चाहूँ के रेडियो बेशक कम हो गयो, पहला नाम वो अलायदा कारण हो सके, लेकिन वो तो हमारा हाथ में है ना, अपने हाथ में ही है।
0: बिल्कुल,
1: अगर टाइम कम है तो कम टाइम में कम टाइम निकाल के सुना नहीं आप तो प्रोग्राम पेश करने वाला हौसलो बनतो रहे।
0: बिल्कुल सर,
1: खैर कार्यक्रम यहाँ चलता रहे, प्रोग्राम बढ़िया आवे सारा ज्ञान वर्द की वह।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है ना, तो लगातार सुनना चाहिए। ठीक है, समय की पाबंदियां हैं, कुछ सीमाएं रेखाएं हैं, वो अलग बात है, तो अगर टाइम कम है तो कम टाइम निकालो, लेकिन सुनता रहो और आपका दिया सुझाव है वो चीज टिका पे देता रहो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो बेशक कम हो गयो लेकिन रेडियो सुनने वाला जगह है वह ज्यादा ही हुए, कम को नहीं हुआ।
1: जी जी हाँ बिल्कुल,
0: क्योंकि अब तो आप FM पर भी सुना, मोबाइल ऐप पर भी सुना, DRM पर भी सुना, और रेडियो तो जो अपनो पुरानो है वो है ही।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो सर रेडियो तो बहुत पहचान बनी है, ठीक है ना।
0: बिल्कुल,
1: आज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, कालूराम प्रजापति, सीमा मिश्रा, आने लोग जद ही जाने जद रेडियो है, रेडियो को माध्यम जाने,
0: बिल्कुल
1: रेडियो
0: बिल्कुल,
1: ने तो कौन जानता।
0: एक समय के माँ एक मंच हो जो हर कलाकार ने आपकी प्रतिभा है वा दिखाण वास्ते मंच मिलतो तो वो रेडियो ही हो सा। आज के सुनावा था
1: आप कालूराम प्रजापति की आवाज में बढ़िया सुगीत सुना दे, बहुत गीत गढ़ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनो सा।

0: मैं तो सुनी कि अब की बार बीकानेर देखो है नी चारा करने की बरसात बीकानेर अकेलो बरसान लाग रही हो। सच्ची बात है कि?
1: सही बात है साहब।
0: सही बात
1: लगभग
0: है।
1: 10 दिन हो गया,
0: अच्छा
1: हर रोज कैमरा बरसात आवे खूब।
0: वाह सावा
1: ठंडो मौसम हो जाए, ठंडी पून चले है सुबह शाम।
0: वाह जी वाह।
1: घनी गर्मी पड़ी लेकिन अब बरसात हो रही है श्यामरा, तो माने थोड़ी राहत मिली है।
0: मतलब इंद्र भगवान जो को है वो विशेष कृपा बीकानेर पर अब की बार दिखने लग रही है।
1: बिल्कुल साहब, अब के विशेष कृपा करिए इंद्र देव।
0: वाह जी वाह। आ धोरांगी धरती है और ओ रोज की बरसात कहे नहीं के मेर पावना रोज रोज कटे पड़े है बीकानेर में पड़े ऐसा
1: क्या बात है,
0: तो आज
1: सही
0: कौन
1: बात
0: लोग
1: है
0: है,
1: साहब।
0: आज कौन लोग है थारे सागे?
1: मारसा के बड़ा भाई साहब है कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, सोनू मोनू सोनी। और गीत सुनना है, झिरमिर झिरमिर रे रामू प्यारा मैं पड़े जी,
0: वाह जी वाह। तो
1: जरूर सुनाया साहब माने
0: बिल्कुल
1: वो गीत।
0: सुनो सा थारे सारंगी पसंद को वो गीत।

0: हेलो।
1: राम राम सा
0: राम राम सा कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
1: श्रीपाल जी ने और सब श्रोताओं ने जय माता जी रे।
0: जय माता जी री सा हुकम गणो गणो रामा श्यामा सा।
1: वाह सा, और
0: बताओ।
1: क्या हो श्रीपाल जी?
0: बढ़िया बढ़िया सा बढ़िया। मैं बढ़िया,
1: बोलना
0: थारो
1: मानो।
0: नाम बता दो तो और बढ़िया हो जाए।
1: क्या बात, बीकानेर गंगा शहर सो उत्तम सोनी बोल रही हो साहब।
0: वाह जी वाह उत्तम जी, क्या बात है।

0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गौरबंद।
1: हाँ जी, राम राम सा।
0: राम राम सा, घना सारा राम राम, कौन बोलो सा?
1: राजकुमार इंदोरा जी।
0: वाह जी वाह, राजकुमार जी, क्या हाल चाल है थारा?
1: बस ठीक है, थारी बात सुन के तो ठीक हो गया जी।
0: वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह।
1: और मौसम किया जी थारा है?
0: मारे मौसम में देखो गर्मी कम हुई है, थोड़ी बहुत बरसातांगी भी खबरा मिले है आसपास में, तो दोरांगी धरती पर भी उम्मीद है कि इंद्र भगवान मेहरबान अब होएगा और बरसाता होगी। बरसात के मौसम की शुरुआत जो की है बा होन लाग रही है धीरे धीरे।
1: लाग रही है, मारे 3-4 दिन होगा लगातार बारिश हो रही है मलोट के अंदर। और ठीक ठाक जी?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: मारे सागे विकास इंदोरा बेटा जी,
0: हाँ हाँ,
1: गैरी इंदोरा बेटा जी पोतरा जी, और दिया इंदोरा पोतरी जी।
0: वाह साहब।
1: अच्छा, दोस्त है हमारे जी।
0: हाँ जी, नाम ले
1: मिगलानी जी।
0: हाँ हाँ,
1: सुभाष गुदारा जी, शंभू दयाल जी खटक, और दारा पंडित जी।
0: वाह जी वाह।
1: सुनायो गीत जी, रुक जा रेल लोहारू की।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थाने गीत सुनावांगा। फोन इन कार्यक्रम का माजे को फोन है नहीं, बो कम में 1 महीने के बाद लगावे, तो क्या के दूसरा भी अपना जगह श्रोता है।
1: हाँ जी हाँ जी, देखो श्रोता सारा एक सही होने जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: सारा सुनने वाला भाई है।
1: हाँ, सारा फोन लागना चाहिए जी।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल जी आपसे बात करने के लिए।
0: तो सुनो सा, सारा मिल गए थारी पसंद को ओकी।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: रामा श्यामा कौन बोलो सा।
1: निवेदन कर रहा।
0: वाह जी वाह पृथ्वीराज जी, किया हो तबियत पानी किया है थारी?
1: ठीक है जी,
0: अब तो गर्मी भी की कम हुई है।
1: गर्मी तो कम नहीं है सर, अंधेरी वगैरह बहुत आ गया।
0: हाँ अब की बार तो देखो आंधी की तो बात ही छोड़ो थे, बहुत
1: बरसात हुई कौमी और दुनिया चलो और जगह बरसात होने कारण की गर्मी कम हुई है।
0: हाँ बिल्कुल गर्मी कम हुई है और उम्मीद करा कि अब बरसात भी भगवान जल्दी करे। वो
1: जल्दी करते तो किसानों में जान वापस जी।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो कौन लोग है पृथ्वीराज जी आज थारे सागे जगह कार्यक्रम सुन लग रहे
1: है जी? धर्मपत्नी है सोमा देवी और लड़के हैं जो एक बड़ा देवी जो छोटा है सीधे पोती है चेतना।
0: तो के सुनाओ आज थाने कार्यक्रम थाने अच्छा लागे ये वास्ते है।
1: इसमें लोग गीत भी बढ़िया है और बाद में बीच में जो बातें घरेलू बातें की जाती है ना वो ज्ञानवर तक है।
0: वाह जी वाह बहुत अच्छी बात है।
1: दूसरे प्रोग्राम है उसमें मेल वगैरह ज्यादा आते रहते हैं तो लोग गीत कम पेश होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और नाम ना भी बोले जाते हैं।
0: चाओ सच्ची बात है सा थारी। सुनो सा।

तोसा आज रो हेलो गौरबंद कार्यक्रम किशोक लाग्यो थारे कागदिया में थारी मेल में जरूर लिखियो। कार्यक्रम रा संयोजक हा नवीन सिसोदिया एर अबे श्रीपाल ने ई बात रह सके सीख दियो सा के गोरी उडी के पीव ने ढलती मांझल रात, गोरी उडी के पीव ने ढलती मांझल रात, बिरखा बरसे सादरी सिसके सगलो गात। के जे तो पीव जी आवजो घणी करूं फरियाद, जे तो पीव जी आवजो घणी करूं फरियाद, नैणा नीर ढल एक होयो जूं बिरखारो नीर, नैणा नीर ढल एक होयो जूं बिरखारो नीर, मन निवलो थारी याद में अर निवलो हुयो शरीर। राम राम सा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे आपके फोन कॉल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीत और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो गोरबंद। कार्यक्रम के प्रस्तोता श्रीपाल शर्मा और संयोजक नवीन सिसोदिया। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे लीजिए गीत गंगा सुनिए।

गीत गंगा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज विकास पारिक का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में याद करें उस मखमली आवाज़ के जादूगर को जिनकी गायकी में गहराई थी, सादगी थी और दिल को छू लेने वाली मिठास थी। वह आवाज़ जो कभी प्रेम का संदेश बनकर आई, कभी विरह की पीड़ा बनकर तो कभी जीवन का दर्शन बनकर आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमंत कुमार की, जिनका आज जन्मदिवस है। आपका जन्म आज ही के दिन 1920 को वाराणसी में हुआ। आपके गाए और संगीतबद्ध गीत आज भी

0: श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बंगला और हिंदी फिल्म संगीत की जानी मानी शख्सियत हेमंत कुमार न सिर्फ मौसीकी के माहिर थे बल्कि बेहतरीन फिल्म निर्माता और पार्श्व गायक भी थे। जब भी भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास लिखा जाएगा, हेमंत कुमार का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। कहते हैं ना कि कुछ नगमे वक्त के साथ पुराने नहीं होते, कुछ नगमे वक्त के साथ पुराने नहीं होते, कुछ सुर दिलों से कभी बेगाने नहीं होते।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी पसंद।

अभी आपने 20 साल बाद फिल्म का गीत सुना हेमंत कुमार की आवाज़ में। गीत रचना कैफी आज़मी की, संगीत हेमंत कुमार का। आपके मेल, आपके व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचे हुए हैं और लगातार पहुंच रहे हैं। शुरुआत करें व्हाट्सएप संदेशों से। सबसे पहला संदेश हम तक पहुंचा गांव खोखरावाली से विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा और शगुन बरासा का। लिखते हैं कि कोई भी हेमंत कुमार का गीत आप हमें सुनवा दें। बिल्कुल, आप कार्यक्रम सुनते रहें, आपको गीत जरूर सुनने को मिलेंगे। गांव हाडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा हमें व्हाट्सएप संदेश करते हैं। ये संदेश हमें किया वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। संदेश हमें किया पद्मा टाकिस नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बैन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। लिखते हैं कि हेमंत कुमार का गाया गीत बेकरार करके हमें यूं न जाइए ये सुनवा दें। तो हमने कार्यक्रम की शुरुआत इसी गीत से की है, आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें किया नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी ने। लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत हमें सुनवाएं। बिल्कुल, आप कार्यक्रम सुनते रहें, हम आपको आपकी पसंद के गीत जरूर सुनवाएंगे। संदेश हमें जो अगला हम तक पहुंचा है वो हमें किया है रमन वर्मा, अमन वर्मा और दिव्यांश वर्मा ने, इनके साथ डॉक्टर मदन वर्मा ने। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से ये संदेश करते हैं। साथ में कीर्ति वर्मा, सिद्धक वर्मा, प्रियांशी वर्मा और पूरे परिवार के लोग। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 ग्राम पंचायत सिरसिला जिला चूरू से

संदीप सोनग्रा, प्राची सोनग्रा, सोमल सोनग्रा, कार्तिक सोनग्रा और पूरा परिवार हमें संदेश करता है। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नौखेलाल वर्मा का संदेश हम तक पहुंच गया है। ये संदेश हमें किया कंवर कॉलोनी बड़वाह से, खारगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने। संदेश हमें किया सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले ने। कहते हैं कि कोई भी सदाबहार गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, आपको यकीनन हमारे श्रोताओं की पसंद के बेहतरीन गीत सुनने को मिलेंगे। ये संदेश हमें किया दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू ने। कहते हैं कि सदाबहार सुरीले गीत में हमें शामिल करें, बिल्कुल हम आपके संदेश शामिल कर रहे हैं। और एक बात लिखते हैं कि जल ही जीवन है, आओ हम सब मिलकर इसकी बर्बादी को रोकें। बिल्कुल सही बात आपने कही, जल एक ऐसा संसाधन है जिसकी बचत करना हर व्यक्ति का दायित्व है। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन ने हमें संदेश किया। संदेश हमें किया ग्राम पनोचिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया ने। ये संदेश हमें किया बिरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुणत ने। लिखते हैं कि गीत गंगा के सभी गीत हमें बेहद पसंद आते हैं। गांव हिपरसोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख का ये संदेश हम तक पहुंचा। आइए आप सभी को सुनवाते हैं हेमंत कुमार का ही एक और गीत।

16 साल फिल्म में भी आपने हेमंत कुमार को सुना, गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत एसटी बर्मन का। कुछ मेल हम शामिल करें, गांव बणवंता हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा लक्षिता याशिका माताजी विद्या देवी और पूरा मायल परिवार हमें मेल करता है। यह मेल हमें किया दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने। मेल हमें किया एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम ने गुमला झारखंड से। मेल हमें किया काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे सुषमा परिधि मायरा सुरेशे ने। लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेल हमें किया रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। ये मेल हमें किया बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। लिखते हैं कि गीत गंगा हमें बेहद पसंद आता है, कोई भी गीत में आप हमें शामिल करें, बिल्कुल आप शामिल हैं। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राज जाधव का ये मेल हम तक पहुंच गया है। मेल हमें किया जो संदेश हम तक पहुंचे हैं मेल से डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, ये संदेश हम तक पहुंचा है। गांव चैसला फलोदी से राजा राम जवर बिश्नोई का। लिखते हैं कि गीत गंगा में हमें शामिल करें, कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, अभय कुमार, बड़ी बहू रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और नन्हे मुन्ने अविका, अजय और तनु। इनके साथ पिहरा बाजार झुमरी तलैया से शिवानी, प्रियंका, प्रियंका कुमारी, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, हीरा मोती, पन्ना, बसंत लाल और इनके परिवार के लोग हमें संदेश करते हैं। ये संदेश हमें मिला है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा के साथ सुच्चा पाठक का। लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम सुनते रहें। ये मेल हमें किया रघुनाथपुरा जिला गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। लिखते हैं कि गीत गंगा पेशकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये कार्यक्रम सुनते हैं। लिखते हैं कि पिछला कार्यक्रम रोहिताश जी ने पेश किया, बहुत अच्छा।

बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें। ये संदेश जो हमें किया है वो किया है कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव इनके साथ श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। लिखते हैं कि आज महान गायक और संगीतकार हेमंत कुमार साहब का जन्मदिवस है। उनसे आज का जो कार्यक्रम शुरू किया गया वो हमें बेहद अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि उनके बारे में जो जानकारी दी गई वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। भारतीय संगीत जगत के एक महान पार्श्व गायक और संगीतकार, फिल्म निर्माता थे जिनका जन्म 16 जून 1920 को हुआ। उन्होंने अपनी गहरी और रूहानी आवाज़ हिंदी और बंगाली फिल्मों को दी और फिल्मी दुनिया को एक बेहतरीन आवाज़ मिली। ऐसी महान हस्ती को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत यदि संभव हो तो सुनवाएं। बिल्कुल, आप कार्यक्रम सुने, हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का गीत भी आपको सुनवा सकें। बहरहाल, कार्यक्रम का अगला गीत पहले हम आपको सुनवाएं, फिर कुछ और संदेश शामिल करेंगे।

अभी आपने साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत सुना आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल शंकर बदायूनी के थे, संगीत हेमंत कुमार का था। कुछ व्हाट्सएप संदेश हम शामिल करें। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा हमें संदेश करते हैं। यह संदेश हमें लिखा मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने। संदेश में लिखा आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा ने, इनके साथ निवान शर्मा। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल लिखते हैं कि गीत गंगा प्रस्तुत करने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनुरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का संदेश हम तक पहुंच गया है। दादरी गेट भिवानी से संदेश हमें किया कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। यह संदेश हमें किया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराब जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार ने हमें संदेश किया, लिखते हैं कि मैसेज जरूर शामिल करें। बिल्कुल हमारी कोशिश रहती है कि हम अधिक से अधिक संदेशों को शामिल कर सकें, अधिक से अधिक मेल शामिल कर सकें और आप श्रोताओं की ही पसंद के गीत आपको सुनवा सकें। फिर भी आपका प्रेम इस केंद्र से इतना है कि इतने संदेश आपके आते हैं, इतनी मेल आती हैं कि एक नियमित समय में इन सबको शामिल करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल आप कार्यक्रम सुने, आपकी पसंद का गीत या आपके किसी श्रोता साथी की पसंद का गीत ही आपको सुनने को मिलेगा। गांव अरायन से डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, श्रीमती विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडनी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वानी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन बुक लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत आप हमें सुनवाएं, जरूर हम कोशिश करेंगे। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शमीर खान और अजलान का ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश हमें किया गगनदीप थांदी ने, गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका वाणी। संदेश हमें किया चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक गोहर, तानवी गोहर और जयपाल यादव ने, विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से। ये संदेश हमें किया चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क लिखते हैं कि आज मौसम बहुत सुहावना है, कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें। गांव घमंडिया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमना, सायना, विष्णु ढोकिया, दोहिता, ईवा धारणिया लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत हमें सुनवाएं। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, आपकी या आपके श्रोताओं की पसंद का ही गीत आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर का संदेश हम तक पहुंचना है। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का संदेश हम तक पहुंच गया है। ये संदेश हमें लिखा व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही, राजश्री गौरव शाही लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत हमें सुनवाएं। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें। चक 15 PS से सरजीत सिंह जोशन, सरजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन, मेलबर्न से रोबिन सिंह जोशन का ये संदेश

तक पहुंचा है। ये संदेश पहुंचा हम तक गांव नाईवाला से, हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा का, नई बस्ती गजडुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद लतीफ़ हाशमी, मोहम्मद तमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। गांव न्योला रामपुरा से सुरेंद्र डीडन, साकिला डीडन, संदीप अनवर, अक्कू बावरा लिखते हैं, कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, याशिका युवराज गांधी, कुलदीप गांधी लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें, हम आपकी पसंद का गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। बहरहाल पहले आप ये गीत सुनें।

जनक जनक पायल बाजे। इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में सुना। इस गीत के बोल भी हजरत जयपुरी की और संगीत वसंत देसाई का था। बहरहाल कुछ मेल हम शामिल करें। ये मेल हमें लिखा राम सिंहपुर से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मन्नू ने। लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संगरिया से श्याम मिड्डा लिखते हैं कि कोई भी कलाकार, गीतकार, गायककार या संगीतकार शारीरिक रूप से भले ही हमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाए, मगर अपनी कला के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं। गीत गंगा के माध्यम से हम सब गीत संगीत से आत्मीयता से जुड़े रहते हैं। कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आज इसी परंपरा में हमने आपको हेमंत कुमार के कुछ गीत सुनवाए। बाकी जो गीत हैं वो हम हमारे श्रोताओं की पसंद के भी आपको सुनवाएंगे। चक 5 MD पत्रोड़ा से, गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल ने हमें ये मेल किया। लिखते हैं कि आज हेमंत कुमार स्पेशल कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये संदेश हमें किया लखवाली हेड से मास्टर।

भवनलाल, कृष्णा सौरभ, विशाल राजबाला, ममता नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक, संगरिया से मुकना राम लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग का ये मेल हम तक पहुंच गया है। मेल हमें किया कर्णपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया ने, लिखते हैं कि सब मनपसंद हैं तो वो है गीत गंगा, यानी थकान दूर की पूरी गारंटी, शानदार प्रस्तुतिकरण, शानदार गीतों का संगम गीत गंगा, तारीफ भी कम है गीत गंगा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कटारिया साहब, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शास्त्री नगर बीड से ये मेल हमें किया किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल ने, लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें, हम आपको आपकी पसंद के गीत जरूर सुनवाएंगे। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पोरुष का ये मेल हम तक पहुंचा है। मेल हमें किया बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान ने, लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें, हम आपकी पसंद के गीत आपको सुनवाते रहेंगे। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा का मेल हम तक पहुंच गया है। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब सिंह राहुल का ये संदेश हम तक पहुंचा है। सब्जी मंडी बुलडाना से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मजू बाबा, आयजा अनम और मुदसिर हुसैन का ये मेल हम तक पहुंचा है। मेल हम तक पहुंचा चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, पुनीत पंचारिया का, लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेल आपके बहुत से हम तक पहुंचे हुए हैं, बहुत से संदेश आपके हम तक पहुंचे हैं, संभव नहीं कि पूरे कार्यक्रम में सभी संदेश शामिल हों, लेकिन कोशिश हमारी कि अधिक से अधिक संदेश हम शामिल करें। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा। विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश सनी और जमीन भावसार का ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंच गया है। गुजरात गांधीधाम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जूली और जगदीश जौहर का ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा। गांव पंचायत बैठना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद वर्मा का संदेश हम तक पहुंचा है। आइए आप सभी को सुनवाते हैं हमारे श्रोताओं की ही पसंद का ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अनोखी अदा से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

गीत हम भले ही आपको थोड़े सुनवा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश कि अधिक से अधिक श्रोताओं के संदेश हम शामिल कर पाएँ। ये मेल हमें किया बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव ने। लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया। गांव टूंकिया, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा तंवर, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाबी ने हमें संदेश किया। कहते हैं कि गीत गंगा के किसी भी गीत में आप हमें शामिल करें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने। और ये अगला जो संदेश आया उसमें आपने नाम नहीं लिखा, ये संदेश जो मेल हमें किया साधु शहर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ ने। लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम पेश करता हरदिल अजीज़ विकास जी को नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार रेवाड़ साहब। कहते हैं कि आकाशवाणी के गौरवशाली 90 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा वजूद आपसे ही है। आगे लिखते हैं कि दीवारों से मत पूछो मेरा हाल, दीवारों से मत पूछो हाल मेरा, मैं दीवारों में नहीं किसी के दिल में रहता हूँ। बिल्कुल रेवाड़ साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, किसी के नहीं, आप हम सभी के दिलों में रहते हैं और यूं ही आप दिल में बने रहें। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार और यश सुथार का संदेश हमें मिला। कहते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, संभव हो तो हमारी पसंद का गीत हमें सुनवाएं, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने। गोविंदगढ़ माझीवाला कर्णपुर से राजू टुटेजा, खुश दिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, चीनू, मन्नू, शिव सेठी कर्णपुरी, पाल मिस्त्री कर्णपुरी, स्माइल टुटेजा और पवन गुज्जर का ये संदेश हम तक पहुंचा है। इस अगला जो मेल हम तक पहुंचा वो हमें किया अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्रजक्ता, वैष्णवी गायत्री और यकेश घोड़के ने, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से। लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बाय और हिमांश की ये मेल हम तक पहुंची है। ये मेल हमें लिखा करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत ने। लिखते हैं कि कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। लिखते हैं कोई भी अपनी पसंद का गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू। लिखते हैं कि गीत गंगा हमें बेहद पसंद आता है, किसी भी गीत में आप हमें शामिल करें, बिल्कुल आप शामिल हैं। मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून की मेल हम तक पहुंच गई है। ये मेल हमें की टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने। लिखते हैं

कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विकास इंदौरा, गैरी इंदौरा, बेबी दिव्या इंदौरा की मेल हम तक पहुंच गई है। ये मेल हमें लिख करके भेजी है। कई बार मेल खुलने में समय लग सकता है। गांव जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम सुनते रहें, हम आपकी, आप जैसे श्रोताओं की पसंद के गीत आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये मेल हमें किया बीकानेर से रानी झाम और बिट्टू झाम ने, लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें, हम आपकी पसंद के गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे। कुछ व्हाट्सएप संदेश हम शामिल करें। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, किशन मायल और हनुमान सारण, कीड़ूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा का व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुँच गया है। ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुद्धेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका राघव यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक का व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा। अलीका तहसील डब्वाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरजीत लखोत्रा, रानी, सोनू, रजनी लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुना दें। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी का व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुँच गया है। ये संदेश हमें किया कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर। मैन बाजार कुडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमकर, प्रमोद यमकर और प्रदीप यमकर का व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुँच चुका है। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दादार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये व्हाट्सएप संदेश हमें किया। सागली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबादत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने संदेश हमें किया। मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी और विश्वजीत ने, गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्रान सद्दाम आदि लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुना दें। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया का संदेश हम तक पहुंचा है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका भानु का संदेश हम तक पहुँच चुका है। आइए हम आपको सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

जाल फिल्म में भी आपने हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को सुना। व्हाट्सएप संदेश हम आपके शामिल करें, ये संदेश हमें मिला हितेंद्र दास का आसाम से, जिला मुरादाबाद तुलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, तन्वी, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंच गया है। ये संदेश हमें लिखा जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने। गज डुटवारा से मोहम्मद सलीम अंसारी, जहरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और मोहम्मद यासिन हाशमी का। अनिल गौरव अरोरा नई दिल्ली से, मोतीनगर से हमें ये व्हाट्सएप संदेश करते हैं। करणवीर हाउस से हमें ये व्हाट्सएप संदेश किया, लेकिन चूंकि हम ये मेल इनकी शामिल कर चुके हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर का ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा। कोली नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ का ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश हमें लिखा जिला बलोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत, मानक उषा, बाला देवी प्रजापत लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन का ये संदेश हम तक पहुंचा। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महित्रे, अंजलि कारवा, बाला साहेब कारवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूल और पीबी कुलथे ने यह संदेश हमें किया। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरवा खुराना, एसके पप्पी। केसी सिंहपुर से राजकुमार ठटई, कमल ठटई, मगन सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्रा, हीरा लाल गजरा, अशोक मित्तल और ताराचंद ताइमा का ये संदेश हम तक पहुँचा। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र तरड़, कपिल देव, कांता चौधरी लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ का संदेश हम तक पहुंचा। विजय पाटिल ओल्ड लिसनर ग्रुप जालना महाराष्ट्र से हमें संदेश करते हैं। कस्बा बराड़ा जिला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजित

कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल, धनी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा विनोद खां, ये संदेश हमें किया। रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवानी धाकड़, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, श्रीमती नंदा बोखड़े, हनुमान बोखड़े और उत्तम बोखड़े ने, लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत आप हमें सुनवा दें। बिल्कुल, हम आपको आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएंगे, आप कार्यक्रम सुनते रहें। कुछ मेल भी हम शामिल कर लें। ये मेल हमें लिखा गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी से जिला हिसार से सज्जन जागड़ा, राजबाला, नवीन, मनदीप, प्रियंका, सपना, नीतू, कार्तिक और नन्हा वेदांश, लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हम सभी मिलकर सुनते हैं, कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका का ये मेल हम तक पहुंचा है, लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का ये मेल हम तक पहुंचा है। ये मेल हमें लिखा नई बस्ती गजडुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी और कालीन अंसारी ने, सुनाते हैं आप सभी को आपकी पसंद का ये गीत।

व्हाट्सएप संदेश हमें किया जोरडढाणी गांव बहलो नगर से नरेंद्र चौहड़, भीमसेन चौहड़, लोकेश चौहड़, गौरव चौहड़, पुनीता चौहड़ और आरवी चौहड़ ने। हमारे बहुत से श्रोता व्हाट्सएप संदेश भी करते हैं और साथ ही साथ मेल भी कर देते हैं, जिसकी वजह से दो दो जगह शामिल होने से हमारे कुछ श्रोता रह जाते हैं। हालांकि हमारे साथी नरेश जी लगातार नज़र लगाए हुए हैं, उनके प्रयास सराहनीय हैं, फिर भी आप कोशिश करें कि एक ही संदेश आप करें या आप मेल करें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश करें।

नर्मदा पार्क, मंगल डवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजादे पटेल और नदीम पटेल का ये संदेश, ये मेल हम तक पहुंचा है। ये मेल हमें किया गांव कल्याणा मलका, जिला बठिंडा, पंजाब से अमृत सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर ने। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें।

0: इसी गीत के साथ अपने साथी विकास पारिक को गीत गंगा कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दें। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी

0: और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark in Arm campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development.